ऊपर वाले का तो जवाब ही नहीं है। और हम उस बात के लिए ईश्वर का शुक्र नहीं करते जो हमारे पास होती हैं। हमारा ध्यान केवल कमियों की तरफ ही जाता है। दोस्तों, बीते पल कभी वापस नहीं आते, ये बात सभी जानते हैं। लेकिन जहां हम रह रहे हैं या किसी के साथ रह रहे हैं, खिलते और महकते फूलों की तरह अगर हम रह लें तो कितना

आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है। सुप्रभात।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिए गए निर्णय और कार्रवाई सदियों तक देश के भविष्य की आधारशिला रहेंगी।
1: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले 1000 वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम लेने पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर विनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप 1 के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं, समय हुआ है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। आइए शुरुआत करते हैं मातृ वंदना से। सर्वप्रथम हम नमन करते हैं हम अपनी मातृभूमि को। सुनते हैं ये मातृ वंदना।

अभी आप सुन रहे थे ये मातृवंदना। आइए नमन करते हैं हम अपने परमपिता परमात्मा को, सुनते हैं ये भक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे मुनि श्री विमर्श सागर महाराज जी द्वारा गाया हुआ ये भक्ति गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में।

लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ ये भक्ति गीत आप सुन रहे थे। कार्यक्रम चल रहा है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत तापसी नागराज की आवाज़ में।

तापसी नागराज के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में सुनिएगा

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग।

0: और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आज सुनिए पर्यटन विषय पर डॉक्टर केशव सिंह राठौर के ये विचार।
2: किसी शायर ने कहा है, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगानी गर रही तो ये जवानी फिर कहाँ। पर्यटन मानव को मानव से जोड़ने की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है। यह एक मानसिक तृप्ति है, मेरा तेरा को हमारा में परिणित करने की सुंदर युक्ति है। पर्यटन अनेकता में एकता का संचार कर समन्वय की भावना जागृत करता है, जो विश्व का सुखदायी स्वरूप है। पर्यटन द्वारा विश्व की भाषाओं, भावों, संस्कृतियों आदि का अनूठा संगम देखने को मिलता है। पारस्परिक मिलन से आत्मीयता जागृत होती है और मानव की ईर्ष्या, द्वेष आदि घातक संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती है। स्नेह मिलन द्वारा ध्वंसात्मक प्रवृत्तियों का अंत होकर सृजनात्मक प्रवृत्तियों का उदय होता है। हमारे हृदय में जीवंतता और ऊर्जा की नई धारा का संचार होता है। स्थान विशेष का एक अनोखा प्रभाव होता है। नेपाल का पशुपतिनाथ का मंदिर, मलेशिया का कार्तिकेय मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ग्वालियर किले का वैभव, आगरा का ताजमहल, दिल्ली की विभिन्न ऐतिहासिक एवं धार्मिक इमारतें, कश्मीर की डल झील, अजंता की गुफाएं, देश विदेश की गगनचुंबी अट्टालिकाएं तत्कालीन संस्कृति की प्रतिनिधित्व करती हैं। वे अपने गौरवशाली अतीत का प्रतिनिधित्व करते हुए जन जन को एकत्व एवं प्रेम का संदेश दे रही है। संसार में अनेक विचित्रताएं देखने हेतु पर्यटन के एकमात्र माध्यम माना गया है और ये विचित्रताएं हमारे मानस को स्पंदित एवं आलोकित कर विश्व एकत्व एवं विश्व कल्याण की भावना को बल प्रदान करती है। महापुरुषों की पदयात्राओं ने जन जन में करुणा, संवेदनशीलता एवं मैत्री भाव जैसे मानवीय गुणों को जागृत किया है। विश्व हित चिंतकों ने प्रज्वलित मशाल लेकर जन जन में प्रेम और एकत्व की अलख जगाई है। विश्व गुरु भारत की ऐसी ही विशेषताओं के कारण प्रतिवर्ष विश्व के अनेक देशों से पर्यटक बड़ी संख्या में भारत में आते हैं। पर्यटन हमारी चिंताओं को चिंतन में परिणित कर देता है, फलतः हमारे जीवन में नवस्फूर्ति, स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन, अनुभव का खजाना एवं विश्व मैत्री की उत्कट भावना की उपलब्धि होती है। पर्यटन की अवधि में सावधानी, जागरूकता, सहिष्णुता और दूरदर्शिता की महत आवश्यकता है। पर्यटन द्वारा विश्व मैत्री के साथ साथ सर्वत्र प्रेम की गंगा निरंतर प्रवाहित होती रहे और नवजीवन

0: मानवीय मूल्यों के उन्नयन एवं संस्कृतियों को नजदीक लाने के अतिरिक्त पर्यटन की आज के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण विशेषता है। आज पर्यटन के माध्यम से पूरी दुनिया के लोग अनेक अनेक देशों में यात्राएं करते हैं। इससे एक नए अर्थतंत्र का विकास हुआ है। यात्राओं के माध्यम होटल व्यवसाय, गाइड एवं अन्य जुड़े हुए क्षेत्रों में प्रगति की नित नई संभावनाएं जुड़ती जा रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दुनिया की तमाम सरकारें पर्यटन स्थलों को विकसित और सुविधाजनक बनाने का भरसक प्रयास कर रही हैं। यही कारण है कि पर्यटन आज कई देशों में एक महत्वपूर्ण उद्योग का स्थान ले चुका है और दुनिया के करोड़ों लोगों की आजीविका इससे जुड़ी हुई है। पर्यटन हमारे अर्थतंत्र को मजबूत करके साथ साथ हमारे चिंतन को और प्रखर करे, ऐसी हमारी अभिलाषा है।
1: अभी आप सुन रहे थे पर्यटन विषय पर डॉक्टर केशव सिंह राठौर की।

ये विचार कार्यक्रम था चिंतन, आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ।

संतों के समाज को आनंदमय और कल्याणकारी बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने उनकी तुलना तीर्थराज प्रयाग से की है, जहां राम भक्त रूपी गंगा तथा ब्रह्म विचार रूपी सरस्वती की धाराएं प्रवाहित होती हैं। मात्र कवियों तथा पंडितों की ही नहीं, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय प्रसारण। गायक स्वर थे सुरेश पाटकर के। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि सामयिकी। आज सुनिए धान की उन्नत प्रजातियां विषय पर डॉक्टर जीएस रावत से ये जानकारी।
1: धान हमारी एक महत्वपूर्ण फसल है चंबल और ग्वालियर संभाग की। इसमें विपुल उत्पादन देने वाली जातियों में एक तो अतिशीघ्र पकने वाली जातियां होती हैं, जिनमें हीरा जाति है जो कि 70 से 75 दिन में पक के तैयार हो जाती है। उपज इसकी 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर होती है और इसमें विशेष गुण ये है कि असिंचित क्षेत्रों के लिए खेतों के लिए बहुत अच्छी पाई गई है। और इसके साथ ही JR 75 है जो 80 से 85 दिन में पक के तैयार होती है। 20 से 25 क्विंटल इसकी पैदावार है और जो कि वर्षा निर्भर खेती के लिए अच्छी पाई गई है। इसके साथ ही अतिशीघ्र पकने वाली जाति में पूर्वा जाति भी है जो 85 से 90 दिन में पक के तैयार होती है। इसकी प्रति हेक्टर 20 से 25 क्विंटल पैदावार होती है जो सूखा रोधी तथा वर्षा निर्भर खेती होती है। जो किसान भाई ऐसे क्षेत्र में धान की खेती करना चाहे उनके लिए बहुत अच्छी पाई गई है। शीघ्र पकने वाली जातियों में विपुल उत्पादन देने वाली में JR 343 जाति है जिसकी पकने की अवधि 90 से 95 दिन है, जो कि असिंचित क्षेत्र में लगभग 22 से 23 क्विंटल प्रति हेक्टर पैदावार देती है और सिंचित क्षेत्र में 50 क्विंटल प्रति हेक्टर पैदावार देती है। सूखा रोधी है और ब्लास्ट के लिए मध्यम निरोधी जाति के रूप में ये मतलब परीक्षित की गई है। और इसके साथ ही JR 345 जाति भी है जो 100 से 105 दिन में पक के तैयार होती है। 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टर जो पैदावार देती है और जो सूखा रोधी है वो मतलब कम वर्षा होती है ऐसे क्षेत्रों में किसान भाई इसको ले सकते हैं। एक दूसरी जाति JR 201 है जो 100 से 105 दिन में पक के तैयार होती है। 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टर पैदावार देती है। ये भी सूखा रोधी किस्म है। और इसके साथ ही एक और जाति है जो इस क्षेत्र में किसान भाई लगाते हैं JR 353 जो 110 से 115 दिन में पक के तैयार होती है और इसकी उपज 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टर है और वर्षा पर निर्भर जो किसान है उनकी खेती के लिए धान की खेती के लिए अच्छी पाई गई है। और क्रांति जो धान है वो आपके अर्सी कमांड एरिया में तो बहुत ज़्यादा इसकी खेती किसान भाई कर रहे हैं जो 130 से 135 दिन में पक के तैयार होती है। 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टर पैदावार है और इसमें खासियत है कि पुआ निर्माण के लिए ये सबसे उपयुक्त किस्म पाई गई है। इसके साथ ही पूसा सुगंधा 3 जाति है जो 120 से 125 दिन में पक के तैयार होती है। इसकी औसत पैदावार 42 से 45 क्विंटल है जो सिंचित बंधानुक्त क्षेत्र हैं उनके लिए बहुत अच्छी पाई गई है। अब एक महामाया प्रजाति है जो छत्तीसगढ़ से निकाली हुई है जो कि अपने क्षेत्र में भी बहुत अच्छी पैदावार दे रही है। क्रांति के बिल्कुल समकक्ष है और 125 से 130 दिन में पक के तैयार होती है। 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टर पैदावार है जो गंगई कीट निरोधी है जो उसके लिए बहुत अच्छी पाई गई है। देर से पकने वाली जातियों में स्वर्णा जाति है जो 145 से 50 दिन में पक के तैयार होती है। उपज 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टर जो अधिक जल भराव वाली स्थिति आती है ऐसे क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छी पाई गई है। श्यामला जाति भी है वो भी लगभग 140 से 145 दिन में पक के तैयार होती है। 55 क्विंटल प्रति हेक्टर इसकी औसत पैदावार है। ये भी अधिक जल भराव वाली स्थिति जिन खेतों में है उन खेतों के लिए बहुत अच्छी पाई गई है। एक मासूरी है तो पुरानी जाति लेकिन इस समय भी बहुत किसान भाई कर रहे हैं इसको 145 से 50 दिन में और 45 से 50 क्विंटल अच्छी पैदावार देती है। धान फसल में बोने के लिए बीज की मात्रा अलग अलग बुवाई की पद्धति के अनुसार अलग अलग किसान भाइयों को इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे जहाँ जो किसान भाई छिटकवा विधि से धान की खेती कर रहे हों उनको 100 किलोग्राम से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टर बीज की मात्रा इस्तेमाल करें और कतार बोनी जो कर रहे हैं वो 90 से 100 किलोग्राम। परंपरागत रोपा तो जो सबसे पहले नर्सरी अपन लोग तैयार करते हैं उसके बाद में फिर उसकी रोपाई करते हैं वो परंपरागत रोपा के लिए 35 से 40 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है और ब्यासी पद्धति इसके लिए 125 से 150 किलोग्राम। अच्छे बीज के चुनाव के लिए किसान भाइयों के लिए हमारी समझाश है कि जो अपना सादा नमक है खाने वाला 1 किलो 650 ग्राम को ले लें और 10 लीटर पानी में उसका घोल बना लें, घोल दें उसको, तब बीज को उस घोल में डाल दें और घोल के ऊपर जो हल्का थोता बीज होता है वो ऊपर तैर के पोचे वाले बीज होते हैं वो ऊपर तैर के आ जाते हैं उनको अलग

0: से फेंक दें और जो नीचे तली में जो बीज बैठ जाते हैं उनको अच्छे साफ पानी में धो के और छाया में सुखा करके और बीज उपचार करके अपन अच्छे उनका इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे धान की उन्नत प्रजातियां विषय पर डॉक्टर जीएस रावत से ये जानकारी। कार्यक्रम था कृषि सामायिकी, आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत हम आपको जानकारी देते हैं हमारी स्टूडियो से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाली कार्यक्रमों की। कुछ ही पलों में सुनिएगा संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। हिंदी समाचार सुनिएगा प्रातः 7 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। वसुंधरा विषय पर लघु वार्ता होगी प्रातः 7:05 पर हमारे स्टूडियो से। प्रादेशिक समाचारों का समय रहेगा रोजाना की तरह प्रातः 7:10 का, जिसे हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा प्रातः 7:20 पर। सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवप्री हम आपके लिए लेकर आएंगे रोजाना की तरह प्रातः 7:45 पर। समाचार प्रभात सुनिएगा प्रातः 8 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। साथ ही सुनिएगा प्रातः 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। आपकी फरमाइश। ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं हमारी स्टूडियो से प्रातः 8:30 पर, 9:30 पर और 10:30 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग आपके लिए लेकर आएंगे प्रातः 9:00। जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण हमारे भोपाल केंद्र से होगा प्रातः 10:05। सुगम संगीत कार्यक्रम सुनिएगा प्रातः 10:05 पर और 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। प्रातः 11:00 से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम हमारे भोपाल केंद्र से जारी रहेंगे।

दोपहर 1 बजे सुनिएगा कार्यक्रम महिला कार्यक्रम। प्रस्तुति रहेगी इंदौर केंद्र की, जिसे हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। लोक संगीत कार्यक्रम सुनिएगा दोपहर 1:30 पर और सुगम संगीत कार्यक्रम सुनिएगा दोपहर 1:45 पर। प्रस्तुति रहेगी इंदौर केंद्र की और भोपाल केंद्र से ये रिले होंगे। संध्या की शुरुआत होगी कार्यक्रम युवाणी के साथ संध्या 5 बजे, जिसे हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। 5:33 से आकाशवाणी मध्य प्रदेश की कार्यक्रम भोपाल केंद्र से जारी रहेंगे। संध्या 7:21 पर सुनिएगा कार्यक्रम चौपाल, जिसके अंतर्गत चर्चा होगी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, डेंगू मलेरिया से बचाव हेतु सावधानियां विषय पर। ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं हमारी स्टूडियो से संध्या 7:21 पर। साथ ही सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, जिसके अंतर्गत चर्चा होगी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, मृदा परीक्षण अवश्य कराएं विषय पर। साथ ही होगी एक भेंट वार्ता और सुनिएगा

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और

0: वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की और सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। भारत और मोरक्को के बीच आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण तथा बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। यह पोर्टल नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि यह पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों तथा हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई थी और 9 अन्य घायल हो गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 7:05 हुए हैं, समय हुआ है कार्यक्रम लघु वार्ता का। आज सुनिए वसुंधरा विषय पर ये लघु वार्ता। वसुंधरा जो हमारी धरती माँ है, जो हमें अपने आंचल में समेटे हुए है, क्या हम अपनी माँ की तरह इस

0: धरती माँ की भी उतनी ही रक्षा कर पा रहे हैं जितना हमें करना चाहिए? शायद नहीं। हम अपने घरों को तो साफ सुथरा कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर के बाहर हम कूड़ा कचरा ऐसे ही फेंक देते हैं। क्या ये सही है? ये कूड़ा कचरा आखिर जा कहाँ रहा है? यह आप सब जानते हैं, ये वापस आपके घरों में ही आ रहा है। जी हाँ, बारिश की धूमक के जरिए आपकी नालियों में जाता है, और जब तेज हवाएं चलती हैं तब आपके घरों में जाता है, और जब ये पानी में मिलता है तो पानी को भी दूषित करता है। इसलिए हमें अपने घर के साथ अपने आस पड़ोस को भी साफ सुथरा रखना हमारा कर्तव्य बनता है। वसुंधरा को साफ सुथरा रखना ये हमारा कर्तव्य है। जैसे हम अपने घर के बच्चों को साफ सुथरा रखते हैं, हम अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं, वैसे हमें अपनी वसुंधरा को भी साफ सुथरा रखना आवश्यक है। वसुंधरा सिर्फ पृथ्वी नहीं है, जल, वायु, आकाश, ये सब वसुंधरा के ही अंग हैं। जल का संरक्षण कीजिए, उसे प्रदूषित होने से रोकिए, वायु को प्रदूषित होने से रोकिए, तेज ध्वनि ये हमारे कानों को तो नुकसान करती ही है, हमारे पूरे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती है। कारखानों से निकलने वाला ये गंदा धुआं ये पूरे पर्यावरण को प्रदूषित करता है, जो हमारी सांसों में जाता है और जो हमारे शरीर की विभिन्न बीमारियों को बढ़ाता है। जल, थल और नभ, इन तीनों से मिलकर हमारा पर्यावरण बनता है। पर्यावरण को अगर हम आज नहीं सहेजेंगे तो कल यही पर्यावरण हमारे लिए हानिकारक बनता जाएगा, और धीरे धीरे बन भी रहा है। आज जरा जरा सी उम्र में भी लोग बीमार पड़ रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां हमें ग्रसित कर रही हैं। क्यों? इसका कारण हम आज नहीं जानेंगे तो फिर कब जानेंगे? क्या आप सोच सकते हैं कि पहले इतनी बीमारियां क्यों नहीं होती थी? पहले शुद्ध वायु थी, शुद्ध जल था, सब कुछ हमारा इतना शुद्ध था, बिल्कुल नेचुरल था। अब सब कुछ कृत्रिम होता जा रहा है। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निस्दिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, और ये नुकसान हम कुछ पलों के लिए तो हमें सुख देता है, हम अपने घरों को सुख सुविधाओं से भर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं, एक घर में दो दो तीन तीन गाड़ियां चल रही हैं। क्यों? जब एक घर के चार सदस्य एक ही वाहन से जा सकते हैं तो फिर चार वाहनों की क्या जरूरत है? क्या ये धुआं आपको नुकसान नहीं करेगा? आज हम सोच रहे हैं कि इससे कुछ नहीं हो रहा है, सब चला रहे हैं, लेकिन ये सब के चक्कर में हम खुद भी तो उस गलत चीज के आदि हो रहे हैं। यह हमें स्वयं सोचना है। इसलिए अपने जल को संरक्षित कीजिए, उसे प्रदूषित होने से रोकिए, वायु को प्रदूषित होने से रोकिए, नदियों को प्रदूषित होने से रोकिए। छोटे छोटे प्रयास कीजिए और अपने घर के बच्चों को।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान अपना।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था वाला देश बना। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रभारी मंत्रियों को दिए निर्देश, स्वतंत्रता दिवस पर जिला मुख्यालयों पर विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आज से शुरू होगा विशेष पखवाड़ा, प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे विभिन्न कार्यक्रम। और राज्य में मॉनसून के 25 जून के बाद प्रवेश के आसार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही हैं, उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे, हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले हजार वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे।
1: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है। ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है, हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे। और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस पर जिला मुख्यालयों पर होने वाले कार्यक्रमों में जिलों के प्रभारी मंत्री जिलों में हुए विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करेंगे। समारोह स्थल पर विकास कार्यों और योजनाओं को जन सामान्य के सामने रखने के लिए प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल मंत्रालय में योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला विकास समितियों का राजधानी भोपाल में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला विकास समितियां विकास गतिविधियों के लिए शासकीय योजनाओं में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन आज देवास जिले के कन्नौद तहसील के डोकाकुई गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान डॉ. मुरुगन सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत स्वीकृत विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कल भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से सौजन्य भेंट की। इस दौरान प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों ने कल भोपाल में राज्य स्तरीय बैठक में व्यक्तियों, संस्थाओं, शासकीय विभागों, राजनीतिक दल, धर्मगुरुओं सहित विभिन्न आयोगों के प्रतिनिधियों की राय जानी। इस अवसर पर उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने प्रमुख रूप से विवाह, विवाह विच्छेद, संतान, दत्तक नियम जैसे विभिन्न विषयों पर राय दी। इस उच्च स्तरीय समिति में सदस्य और उत्तराखंड के सेवानिवृत्त मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिन्हा, शिक्षाविद गोपाल शर्मा और डॉ. शोभा वेथनकर, वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप नायर, समाजसेवी बुद्धपाल सिंह ने सुझाव रखे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।

ब्रेकिंग बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि आज से उनकी जयंती 6 जुलाई तक विशेष पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल महापौर और नगर पालिका अध्यक्षों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का मानना था कि युवा राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने युवाओं को नेतृत्व, शिक्षा और सामाजिक दायित्व के लिए प्रेरित किया। इस पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि पखवाड़े के दौरान युवा सम्मेलन, निबंध प्रतियोगिता और संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएं। इससे नई पीढ़ी को राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल आचारपुरा में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान मध्यप्रदेश और वन्या जनजाति कार्य विभाग द्वारा आयोजित आदिरंग शिल्पकार महोत्सव 2026 का समापन समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव महोत्सव के दौरान जनजातीय शिल्पकारों द्वारा विकसित नवाचारपूर्ण उत्पादों, डिजाइन हस्तशिल्पों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। साथ ही शिल्पकारों, डिजाइन विशेषज्ञों और प्रतिभागियों से वो संवाद करेंगे। नरसिंहपुर पुलिस द्वारा शुरू की गई गोल्डन आवर हीरो अभिनव पहल ने जिले में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिणाम दिए हैं। इस अभियान के प्रभाव से जनवरी से मई 2026 की अवधि में सड़क दुर्घटनाओं में 33%, मृत्युदर में 23% और तथा गंभीर घायलों की संख्या में 52% की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। पुलिस मुख्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सड़क दुर्घटना के बाद का पहला आधा घंटा गोल्डन आवर घायल व्यक्ति के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए नरसिंहपुर पुलिस द्वारा राष्ट्रीय और राजमार्ग, राज्य राजमार्गों के किनारे स्थित ढाबों, पेट्रोल पंप संचालकों, स्थानीय ग्रामीणों को चिन्हित कर उन्हें CPR और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उज्जैन में अगले वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ महापर्व को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए मध्यप्रदेश पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में सागर पुलिस लाइन सभागार में पुलिस कर्मियों के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के चौथे बैच का कल शुभारंभ किया गया। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। 2024 में चीन ने खुलुनबुईर में आयोजित एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ये भारत और पाकिस्तान के बीच पहला मुकाबला है। 2024 में हुए मुकाबले में भारत ने 2-1 से जीत हासिल की थी। प्रदेश में मॉनसून के 25 जून के बाद प्रवेश करने के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज जबलपुर, मंडला, दमोह, उमरिया में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं ग्वालियर, जयपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी, भोपाल, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, इंदौर, धार, बड़वानी, अलीराजपुर और झाबुआ जिले में तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले में रबी मौसम में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली और एक जिला एक उत्पाद में चयनित इंदौर के मालवी आलू को अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान मिल गई है। खंडवा में आगामी मुहर्रम पर्व के दौरान कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन तथा पुलिस विभाग की पूरी टीम मुस्तैद है। तंबाकू नियंत्रण और तंबाकू मुक्त युवा अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आगरमालवा में कल कार्यशाला हुई, जिसमें तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों पर चर्चा हुई। झाबुआ कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने संभागीय चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से बामनिया क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया। कटनी में राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता पर आम नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें कटनी के 17,000 नागरिकों ने ऑनलाइन लिखित रूप से अपने सुझाव शासन को प्रेषित किए। निंडौरी में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले में जल संचय और जन भागीदारी के माध्यम से किए गए कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत।

0: दुनिया को जिन्होंने अहिंसा का मंत्र दिया वो थे महात्मा गांधी।
1: ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान।
0: आइए चलें उस राह जो राह दिखाई बापू ने।

आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 7:20 हुए हैं। समय हुआ है कार्यक्रम फिल्म संगीत का।

कार्यक्रम का ये पहला गीत आपने सुना फिल्म आबरू से। आवाज थी आशा भोसले की, गीत जीएल रावल का था और संगीत सोनिक ओमी का। कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। लीजिए प्रस्तुति कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म आदमी और इंसान से।

0: कार्यक्रम का ये गीत आप सुन रहे थे, फिल्म आदमी और इंसान से लिया गया। आवाज़ें थी आशा भोसले और महेंद्र कपूर की, गीत साहिर का था, संगीत रवि का। कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत और आप इसे सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के पश्चात।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से।

आज अभी इसी वक्त ये, आज अभी इसी वक्त ये मुझको पता चला।

आशिक आवारा। इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म आनंद।

0: सभी को हंसाए।
1: जिंदगी कैसी ये पहेली हाय, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म आनंद से। आवाजें थी मन्ना डे और साथियों की, गीत गुलजार साहब का था और संगीत सलील चौधरी का। कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शुभप्री केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म जो जीता वही सिकंदर।

गीत मजरू सुल्तानपुरी का था, संगीत जतिन ललित का। कार्यक्रम के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार।

नमस्कार शिवप्री। नमस्कार शिवप्री, कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार शिवप्री में। और आज के इस अंक के साथ मैं हाजिर हूँ आपकी रेडियो सखी ज्योति तोमर। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम एक सुविचार के साथ। आज का सुविचार है, अनुशासन ही सफलता है। जी हाँ, सफलता सिर्फ विचारों से नहीं बल्कि रोज किए गए छोटे छोटे अनुशासित प्रयासों से मिलती है। बिना अपना हाथ हिलाए तो भोजन भी मुंह तक नहीं पहुंचता। इसलिए भाग्य के भरोसे बैठने की बजाय कर्म पर विश्वास करें। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं। जन्म से तो हर इंसान शून्य ही होता है। आप आज क्या करते हैं वही आपका कल तय करेगा। सफलता आपके मूड की मोहताज नहीं है, वह आपके अनुशासन और निरंतरता की दीवानी है। अपने लक्ष्यों को भावनाओं से नहीं बल्कि पक्के इरादे और प्रक्रिया से हासिल करें। इसी विचार के साथ आगे बढ़ते रहिए और अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने देश को आगे बढ़ाते रहिए। श्रोताओं, आज है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि। 6 जुलाई 1901 को 1901 को कलकत्ता के अत्यंत प्रतिष्ठित परिवार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे एवं विद्याविद, शिक्षाविद के रूप में विख्यात थे। डॉक्टर मुखर्जी ने 1917 में मैट्रिक किया तथा 1921 में बीए की उपाधि प्राप्त की। 1923 में लॉ की उपाधि अर्जित करने के पश्चात वे विदेश चले गए और 1926 में इंग्लैंड में बैरिस्टर बनकर स्वदेश लौटे। अपने पिता का अनुसरण करते हुए उन्होंने भी अल्पायु में ही विद्या अध्ययन के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलताएं अर्जित कर ली थी। 33 वर्ष की अल्पायु में ही वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने। इस पद पर नियुक्ति पाने वाले वे सबसे कम आयु के कुलपति थे। एक विचारक तथा प्रखर शिक्षाविद के रूप में उनकी उपलब्धि तथा ख्याति निरंतर आगे बढ़ती रही। ऐसे प्रख्यात शिक्षाविद और विचारक को हमारा शत शत नमन। श्रोताओं, आज है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। जी हाँ, 23 जून को भारतीय और विश्व इतिहास में सबसे कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जिसमें 1757 का प्लासी का युद्ध, 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस, 1980 में संजय गांधी का निधन और हर साल मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है। यह दिन खेल, स्वास्थ्य

0: और एकजुटता का जश्न मनाने का दिन है। यह अवसर पूरी दुनिया के लोगों को क्रियाशील बनने और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसी दिन पेरिस के सोर वॉन में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी। पियरे डी कोवर्टिन ने प्राचीन ओलंपिक खेलों को फिर से जीवंत करने के लिए 23 जून 1894 को रैली निकाली थी। इसी की याद में हर साल इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरी दुनिया में हर साल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों के जीवन में खेल और खेलों के महत्व को चिन्हित करने और उम्र, लिंग, जाति और धर्म के बावजूद दुनिया भर में खेलों और खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ये दिन हर साल 23 जून को मनाया जाता है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको देते हैं समाचार पत्रों से जुड़ी कुछ जानकारियां। समसामयिक घटनाएं हम आपको बताएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
2: So easy.
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आइए ले चलते हैं आपको समाचार पत्रों से कुछ खास खबरों की ओर। कूनो के चीता मित्रों से रूबरू हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, संरक्षण कार्यों की सराहना की। 2 दिवसीय कूनो नेशनल पार्क प्रवास के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को ग्वालियर रवाना होने से पूर्व चीता मित्रों से मुलाकात कर चीता संरक्षण और जन जागरूकता गतिविधियों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने चीतों की सुरक्षा और ग्रामीणों को जागरूक करने में निभाई जा रही भूमिका के लिए चीता मित्रों की सराहना की। राष्ट्रपति ने चीता मित्रों से चर्चा करते हुए जाना कि कूनो नेशनल पार्क में लगे गांव में किस प्रकार लोगों को चीतों से व्यवहार, संरक्षण और उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है, इसकी उन्हें जानकारी ली। चीता मित्रों ने बताया कि ग्रामीणों को लगातार समझाइश दी जा रही है कि चीते सामान्य रूप से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और उनके दिखाई देने पर तत्काल वन विभाग को सूचना दी जाए। राष्ट्रपति ने चीता मित्रों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर उनके अनुभव सुने और इस महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में जानकारी ली। श्रोताओं, बदरवास में 25 जून को जिला स्त्री रोजगार मेला लगेगा। युवा संगम कार्यक्रम तहत 25 जून को सुबह 11 बजे से श्री कृष्ण महाविद्यालय तिलातिली रोड पर जिला स्त्री रोजगार मेले का आयोजन होगा। न्यू मैक्स स्किल, मदरसन, पुष्कल एग्रोटेक और चेकमेट सर्विसेज सहित कई निजी कंपनियां साक्षात्कार के लिए के माध्यम से भर्ती करेंगी। 18 से 35 वर्ष आयु के 10वीं और 12वीं स्नातक और ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थी दस्तावेजों के सहित शामिल हो सकेंगे। पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए दी जाएगी विशेष कोचिंग। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के पात्र उम्मीदवारों के लिए विशेष कक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। प्रशिक्षण 6 जुलाई से प्रस्तावित है। अभ्यर्थी 2 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज इन क्षेत्रों में बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी।

बिजली कंपनी द्वारा मेंटेनेंस कार्य के चलते आज विभिन्न क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। 33 केवी गोवर्धन फीडर पर सुबह 7 बजे से 11 बजे तक कार्य होने से गोवर्धन और खटका उपकेंद्रों से जुड़े क्षेत्रों में

राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर आप सभी को इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और खेलों का महत्व जानिए और अपने बच्चों को खेलों के लिए प्रेरित कीजिए। वो जमाना गया तब लोग कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे बनोगे गवार। जी हाँ, अब ये उदाहरण अब नहीं रहे हैं। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ खेलों के ज़रिए भी आप अपना करियर बना सकते हैं, इसलिए अपने बच्चों को खेलों की तरफ प्रेरित कीजिए। आज के मौसम की जानकारी हम आपको बताएंगे इस छोटे से गीत के बाद।

अभी आपने सुना ये योग गीत। कल 21 जून को हमने योग दिवस मनाया और आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मना रहे हैं। इन दिवस को मनाने का एकमात्र उद्देश्य हमारा सिर्फ यही है कि हम अपने आप को, अपने देश को, अपनी जनता को, अपने परिवार को स्वस्थ रखें। जी हाँ, जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम दूसरों को स्वस्थ रख पाएंगे और अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। तो इसी भावना से अपने आप को स्वस्थ रखिए और मस्त रखिए। श्रोताओं, आज के मौसम की जानकारी इस प्रकार है। आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गर्मी के चलते आंधी और लू चलने के आसार हैं। इसी के साथ दीजिए हमें कार्यक्रम से यही अनुमति। कल फिर हम मिलेंगे आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी को लेकर प्रातः 7:45 पर। तब तक आज्ञा दीजिए।

0: आकाशवाणी का ऊपरी केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान LNG विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति

0: बनने में राष्ट्रप्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां, विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1 करोड़ 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
1: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूति, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: नैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूड़ी का ही होता है, तो मरूड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NEFED के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में NEFED की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, उड़ीसा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल है। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
6: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदांबी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय

0: पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
1: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक शॉर्ट में घंटों चली वार्ता। बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया। बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले 6ठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए एसआईटी गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अलंकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज प्रिंसिपल ऑफ नेशन फर्स्ट has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends 4 officials in connection with Lucknow fire incident. 4 accused arrested. 4 ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirmed death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation.

कार्यक्रम का ये पहला गीत आपने सुना फिल्म बंधन कच्चे धागों का, फिल्म से लिया गया। आवाजें थी आशा भोसले और किशोर कुमार की। गीत अनजान का था, संगीत हेमंत भोसले का। इस गीत की फरमाइश की थी रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलडाड़ा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार ने। कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली फरमाइश, फिल्म 20 साल बाद से ली गई।

20 साल बाद इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी मोहम्मद अजीज और अनुराधा पूर्वाल की, गीत आनंद बख्शी का था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत की हमें फरमाइश लिख भेजी थी नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा था विवेकानंदपुरम कॉलोनी से राजेंद्र सिंह तोमर, शिवांगी तोमर, अभिजीत सिंह तोमर और अभिषेक दीक्षित ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली फरमाइश, फिल्म बेटा से।

0: बेटा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे अनुराधा पोडवाल की आवाज़ में। गीत समीर का था, संगीत आनंद मिलिंद का। इस गीत की फरमाइश हमें की थी फतेहपुर रोड शिवपुरी से शिवांगी तोमर, हर्षिता मिश्रा, पलक बैश, विपनदीप गिल, दीपाली तृप्ति, नंदिनी, रितु, इंद्रा, मनीषा, संदीप, अंजना, सोनल और उनकी सखियों ने। कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधा

कथाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

दिया गया। आवाज़ है आशा भोसले की, गीत सावन कुमार का और संगीत उषा खन्ना का। इस गीत की फरमाइश की थी छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जामेंद्र कुमार वर्मा। महादेव घाट अमलेश्वर से डूमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर। कार्यक्रम के इस फरमाइशी गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आपकी फरमाइश कार्यक्रम लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे आपके समक्ष प्रातः 9:30 पर। तब तक बनी रही हमारे साथ और अभी हमें दीजिए इस कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार। आकाशवाणी का यह शुभ प्रिय केंद्र है। कुछ ही पलों में सुनिएगा हमारा अगला प्रसारण।

आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। आज सुनिए सावित्री दीक्षित और राकेश कुमार सिंह के गाए चुनिंदा लोकगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सावित्री दीक्षित के गाए हुए इन लोकगीतों से।

कार्यक्रम लोक रंग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। अभी आप सुन रहे हैं सावित्री दीक्षित के गाए हुए कुछ चुनिंदा लोकगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला लोक।

अभी आप सुन रहे थे सावित्री दीक्षित के गाए हुए ये लोकगीत। कार्यक्रम चल रहा है आपका लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग, और आप सुन रहे हैं इसे आकाशवाणी के शुभप्री केंद्र से। आइए अब सुनवा रहे हैं आपको राकेश कुमार सिंह के गाए हुए लोकगीत।

राकेश कुमार सिंह के गाए इस लोकगीत के साथ ही कार्यक्रम लोकरंग अब यहीं संपन्न हुआ। आज आपने सुनी सावित्री दीक्षित और राकेश कुमार सिंह के गाए हुए चुनिंदा लोकगीत। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का पुनः स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली

0: कार्यक्रम का ये पहला गीत आपने सुना
1: फिल्म
0: आग से। आवाजें थी शमशाद बेगम और शैलिस की। गीत दीपक का था, संगीत राम गंगुली का। इस गीत की फरमाइश की थी पिछोर से शकुंतला देवी, स्नेहलता गौर, नीतू गौर, शालिनी, सुनील, संजीव, शिवराज, छोटू, गोलू, चंचल और उनके परिवारजनों ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहता मोहनी सागर कॉलोनी शिवपुरी से धर्मेंद्र सिसोदिया, प्रीति सिसोदिया, शिवानी पारुल और युवराज ने। कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in।

लता मंगेशकर के स्वर में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म आहा से। गीत शैलेंद्र का था, संगीत शंकर जय किशन का। इस गीत की फरमाइश की थी विवेकानंदपुरम शिवपुरी से प्रीति राजे, पिंकी राजे, सोनू, सुषमा, आशीष और समस्त राजे परिवार ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा था इंदिरा कॉलोनी शिवपुरी से सुरेंद्र राजपूत, प्रीति राजपूत, स्नेहा, अंशुमन, निधि, खुशबू, राहुल, रोहित, गीतेश, सोनिया, तानिया और समस्त राजपूत परिवार ने। कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली फरमाइश फिल्म आजा सनम से।

अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म आजा सनम से। गीत हसरत जयपुरी का था, संगीत अरुण पौडवाल का। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें लिख भेजी थी चिरमरी कुरासिया कॉलरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से

इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह और राम सहोदर। साथी इस गीत को सुनना चाहता लाल माटी शिवपुरी से अर्चना जादौन, रचना जादौन, शिवा, श्वेता, सलोनी, सौम्या, रुद्र और समस्त जादौन परिवार ने। कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। कार्यक्रम की अगली फरमाइश सुनिए फिल्म बोल राधा बोल से।

फिल्म भूल राधा भूल से। गीत समीर का था, संगीत आनंद मिलिंद का। इस गीत की फरमाइश की थी कमल सिंह कुशवाहा, पुरानी छावनी सकतपुर रोड जिला गुना से। कमल सिंह कुशवाहा, राजकुमार कुशवाहा, गोलू, कृष्णा, शिवा, वर्षाबाई, पूनमबाई, सुमन, निकिता और मोहिनी कुशवाहा। कार्यक्रम आपकी फरमाइश के अंतर्गत आप भी हमें अपनी फरमाइश लिखकर भेज सकते हैं। जिन श्रोताओं ने हमें आज तक फरमाइश लिखकर नहीं भेजी है, हमारा पता नोट करें। कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र शिवपुरी मध्य प्रदेश 4735551 पर। ये पता हम आपको पुनः नोट जरूर करवाएंगे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म बॉम्बे।

बॉम्बे फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे चित्रा और साथियों की आवाज़ में। गीत महबूब का है और संगीत एआर रहमान का। इस गीत को सुनना चाहता एरोड्रम थाने के पास वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा बिक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती प्रयाग चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे ने। कार्यक्रम के इस फरमाइशी गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये शुभप्री केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। कुछ ही पलों में सुनिएगा जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण हमारे भोपाल केंद्र से।

भोपाल से प्रस्तुत है श्योपुर जिले की चिट्ठी। आलेख अश्विनी बालोठिया, वाचन स्वर दीपा सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल कुनो नेशनल उद्यान के चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का अवलोकन किया। इस अवसर पर लगाई गई चीता प्रदर्शनी के दौरान राष्ट्रपति ने अवगत कराया कि 49 चीते कुनो में मौजूद हैं। 3 चीते गांधी सागर अभयारण्य मंदसौर भेजे गए हैं। उन्हें बोत्सवाना से लाए गए चीतों की गतिविधियों की भी जानकारी दी गई। गौरतलब है कि राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा अपनी बोत्सवाना यात्रा के दौरान 8 चीते रिसीव किए गए थे, जिन्हें कुनो लाया गया है। चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के अवलोकन के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू को चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग प्रक्रिया के संबंध में भी जानकारी प्रदान की गई। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने 2 दिवसीय कुनो प्रवास के दौरान चीता मित्रों से संवाद कर चीता संरक्षण के प्रयासों की जानकारी ली। राष्ट्रपति ने चीता मित्रों से चर्चा करते हुए उनके द्वारा चीतों की सुरक्षा और आमजन के बीच चीतों के व्यवहार को लेकर किए जा रहे जन जागरूकता के प्रयासों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। राष्ट्रपति मुर्मू को चीता मित्रों ने बताया कि कुनो नेशनल पार्क से लगे सभी गांवों में चीता मित्र मौजूद हैं, जिनके द्वारा चीतों की सुरक्षा के संबंध में ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। गौरतलब है कि कुनो नेशनल पार्क में चीतों की पुनर्स्थापना योजना को लगभग 3.5 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। नेशनल पार्क में नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से चीतों को लाया गया है। जिले में साल 1 जून से अभी तक कुल 8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। गत वर्ष इस अवधि तक 336.2 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई थी। जिले की औसत वर्षा 822 मिलीमीटर है। जिला प्रशासन द्वारा बारिश को ध्यान में रखते हुए जिले भर के पिकनिक स्थलों पर लोगों को पानी से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सुरक्षा के भी उचित प्रबंध किए गए हैं। इसके तहत एसडीआरएफ के जवानों को सभी पिकनिक स्थलों पर तैनात किया गया है। जल गंगा संवर्धन अभियान इस साल सभी शासकीय भवनों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का कार्य किया जा रहा है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम नगर पालिका के शिवपुरी रोड स्थित ऑडिटोरियम में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री तथा प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला उपस्थित थे। जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की गरिमामय उपस्थिति में पश्चिम बंगाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा सागर जिले के देवरी में आयोजित राज्य स्तरीय लाडली बहना योजना कार्यक्रम के माध्यम से 37वीं किस्त के रूप में प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनों को 1835 करोड़ राशि का अंतरण किया गया। मध्य प्रदेश

में समान नागरिक संहिता के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की सदस्य डॉ. शोभा पैठणकर ने कहा है कि अनेकता में एकता भारत की पहचान है। किसी भी बड़े नीतिगत परिवर्तन के लिए जन समर्थन अनिवार्य है। समिति प्रदेश के सभी जिलों में भ्रमण कर नागरिकों से संवाद कर रही है। प्राप्त सुझावों के आधार पर ही अंतिम प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। नागरिकों को अपने महत्वपूर्ण सुझाव आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज कराए जा सकते हैं। कानूनों में सुधार पर विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप जैसे विषयों पर अपने सुझाव दिए जा सकते हैं। श्योपुर जिले के विजयपुर में पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन श्योपुर द्वारा की गई पहल पर मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की टीम श्योपुर जिले के दो दिवसीय भ्रमण पर पहुंची, जहां विभिन्न पर्यटन स्थलों का अवलोकन कर पर्यटन गतिविधियों की संभावनाएं तलाशी। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी, श्योपुर जिले की चिट्ठी अभी आपने सुनी। आलेख था अश्विनी बालूठिया का और वाचन स्वर था दीपा सिंह का। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया गया।
1: आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज सुनिए नरेंद्र शर्मा के गाए हुए कुछ भजन और गीत।

कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शुभप्री केंद्र से। अभी हम आपको सुनवा रहे हैं नरेंद्र शर्मा के गाए हुए चुनिंदा भजन और गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत नरेंद्र शर्मा के गाए हुए भजन। आइए अब सुनते हैं उन्हीं के द्वारा गाए हुए कुछ गीत।

कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। आज हम आपको सुनवा रहे हैं नरेंद्र शर्मा के गाए हुए कुछ भजन और गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिएगा इस अंतराल के पश्चात।

कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से।

कार्यक्रम के इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए फिल्म सड़क से।

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पोडवाल और कुमार सानू की आवाज में फिल्म सड़क का ये गीत। आवाज गीत समीर का था, संगीत नदीम श्रवण का। कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म सच्चा।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म सच्चा झूठा से। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए फिल्म सलामी से।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म सलामी से। गीत समीर का था, संगीत नदीम श्रवण का। कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म संगम से।

जो मिलके नहीं मिलते वो याद बहुत याद।

0: फिल्म प्रेम रोग का ये गीत आप सुन रहे हैं सुधा मल्होत्रा और अनवर की आवाज में। गीत संतोष आनंद का है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। कार्यक्रम के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है। प्रातः के 11 बजने को है, कुछ ही पलों में आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम हमारी भोपाल केंद्र से रिले होंगे।
1: मध्य प्रदेश का प्रसारण कुछ ही देर में करेंगे।

दिन के 11 बजे हैं। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। रवि के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा यह गीत है, मोहम्मद रफी ने गाया है। फिल्म का नाम आज और कल।

फूल बने अंगारे फिल्म का ये गीत था, मुकेश ने गाया था। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। कार्यक्रम में अगला गीत बम्बई का बाबू फिल्म से आशा भोसले ने गाया है। गीत लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने, तर्ज एस डी बर्मन की।

आरजू फिल्म का ये गीत था, मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। हसरत जयपुरी ने गीत लिखा था, शंकर जयकिशन की धुन थी। और अब असली नकली फिल्म का ये गीत है, लता मंगेशकर ने इसे गाया है। शंकर जयकिशन ने धुन बनाई है, हसरत जयपुरी के बोल।

हसन जयपुरी का लिखा गीत सुनवाते हैं आपको, बेटी बेटे फिल्म का गीत। मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर ने इसे गाया है, धुन शंकर जयकिशन की।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म का यह गीत था। आनंद बख्शी ने गीत लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन थी। नीला आकाश फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं, मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ। मदन मोहन ने धुन बनाई है और बोल लिखे हैं राजा मेहंदी अली खान ने।

0: मोहिनी मूर्ति अपने हृदय मंदिर में आसीन कर बड़ी गोपनीयता के साथ उस प्रेम देवता की आराधना में लीन हो जाता है। वह आवरण में नारी हृदय ज्यों का त्यों कौतूहलहीन रहता है, परंतु अंदर ही अंदर प्रेमानुभूतियों के उत्तप्त आंसुओं से रोता है, सुलगता है। अवश्य अश्रुओं की धारा में नारी हृदय चलते हुए भी शांति का अनुभव करता है। उत्पीड़ित और प्रताड़ित होकर भी वो बाहर से मुस्कुराता है। सखी, तुम्हें भी ये सब ज्ञात है। अस्तु, राजपुत्री होकर भी भिखारिणी की भांति तुमसे तुम्हारे प्रियतम की भीख मांगती हूं। बोलो बोलो, मुझे निराश तो ना करोगी?
1: नहीं राजकुमारी, यदि वे तुम्हें स्नेह और आदर प्रदान कर सकें तो मैं अपने को धन्य समझूंगी और चाहूंगी कि वो तुम्हें अपने नेत्रों की पुतली बनाकर तुम्हारी दृष्टि से देखें, तुम्हारे कानों से सुने, तुम्हारे हृदय से बात करें। तुम्हारे अस्तित्व में उनके प्रेम की लय हो और वो पूरी तरह से तुममय हो जाएं। मैं अपने को भाग्यशालिनी समझूंगी। भारत साम्राज्य का गौरवमय पद तुम्हारी प्रतिष्ठित होने पर ही उज्जवल रहेगा, अन्यथा मुझ नर्तकी की छाया परंपरागत महानता की सीमा का अतिक्रमण कर उसे तुच्छ बना देगी।
0: ओह भुवन मोहिनी,
1: जाइए राजकुमारी। राजकुमार विजय श्रवा की गौरवमयी प्रेसी और जीवन संगनी बनिए। मैं आप दोनों के प्रेम संबंधों में कभी भी ईर्ष्या का विष सम्मिलित नहीं करूंगी। मैं भूल जाऊंगी कि इस अभागिनी नर्तकी ने भी कभी भावी सम्राट की प्रेमिका होने का गौरव प्राप्त किया था। मैं अपना अहोभाग्य यही समझूंगी कि विजय श्रवा की जीवन संगनी खोजने के श्रेय का एक अंश मुझे भी प्राप्त हुआ था। राजकुमारी, जिस दिन सम्राट द्युमत सेन ने मुझे धारा नगरी से निर्वासित किया था, उसी समय मैंने निश्चित किया था कि मैं राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी राजकन्या का परिणय विजय श्रवा से कराऊंगी और अपनी खोज में लगी हुई ही इंद्रप्रस्थ नगरी में आई थी। इसके पूर्व भी अनेक बार मुझे नरेशों से ज्ञात हुआ था कि महाराज आदित्य सेन की एकमात्र कन्या ही राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है। इसीलिए मेरी रानी, अपने विजय श्रवा के लिए मैंने आपको चुना है। मुझसे भय मत खाइएगा, मैं आपकी अमृत प्रेम प्याली में अपने द्वेष की विषैली घृणा कभी नहीं भरूंगी।
0: इसी विश्वास और इसी पवित्र देन के कारण तुम मुझसे बहुत ऊंची हो। मैं आज तुम्हारे प्रदान किए हुए प्रेम और प्रीतम द्वारा अपने स्नेह का संसार बसाने का कौतूहल में स्वप्न देख रही हूं। देखो देखो, कभी मुझे भी पुरस्कृत करेगा या नहीं मेरे रूप का देवता?
1: तो चलिए।
0: कहाँ?
1: राजकुमार विजय श्रवा से मिलनी।
0: लेकिन उन्होंने तुम्हें बुलाया है, मुझे नहीं।
1: तो क्या हुआ, क्या अभी भी आपको मुझ पर शंका है?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं भी चलती हूँ, क्योंकि मैं उनके दर्शन की बेचैनी को कुछ पलों के लिए शांत करना चाहती हूँ।
1: ये मेरे लिए भी सुखद होगा राजकुमारी।

ओहो, मित्र विजय शर्मा से मिलने भुवन मोहिनी देवी अभी तक नहीं आई। अब मुझे तो भय लग रहा है कि उन्हें बुलाने के लिए युवराज मुझे कहीं फिर से ना भेज दें। अरे ये क्या, लगता है कि भुवन मोहिनी आ गई परंतु राजसी रथ में।

0: प्रतीत हो रहा है कि भुवन मोहिनी के संग राजकुमारी भी पधार गई। अब क्या होगा? आइए आइए, राजकुमारी जी को अरण्यक का अंजुलिबद्ध सादर प्रणाम।
1: शुभ हो अरण्यक, जाओ देव से निवेदन करो कि भुवन मोहिनी के साथ राजकन्या चंद्रहासिनी भी दर्शन के लिए उपस्थित हैं।
0: अवश्य देवी। अरे मित्र मित्र, मित्र अचंभा हो गया।
2: क्या हुआ अरण्यक?
0: भुवन मोहिनी आ गई हैं।
2: इसमें अचंभा क्या, उन्हें तो हमने ही बुलवाया था।
0: उनके साथ राजकुमारी जी भी हैं।
2: क्या?
0: हाँ
2: चलो।

0: राजकुमारी और भुवन मोहिनी का। देवी कुटिया के अंदर पधारिए। मैं अतिथि सेवा द्वारा अपने को सौभाग्यशाली और कृतार्थ समझूंगा। ओह भुवन मोहिनी, हम लोग दीर्घ वियोग के पश्चात आज मिले हैं। तुम्हारे साथ राजपुत्री चंद्रहासिनी भी हैं। बोलो, इस शुभागमन के अवसर पर मुझे किस प्रकार अतिथि पूजा और सत्कार करनी चाहिए?
1: सर्वप्रथम भावी सम्राट को वचनबद्ध होना पड़ेगा कि मैं जिस प्रकार चाहूंगी वो पालन करेंगे।
0: एवमस्तु।
1: तो सुनिए देव, राजकुमारी चंद्रहासिनी आपका आतिथ्य ग्रहण करने से पूर्व ये जानना चाहती है कि आपके जीवन में उन्हें कोई स्थान प्राप्त होगा या नहीं।

संग्रहालय से इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे थे धारावाहिक भुवन मोहिनी की 5वीं कड़ी। ये प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया जा रहा है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल अचारपुरा में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान मध्य प्रदेश और वन्य जनजाति कार्य विभाग द्वारा आयोजित आदिरंग शिल्पकार महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। उज्जैन में अगले वर्ष आयोजित होने वाले सिंहस्थ महापर्व को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों ने कल भोपाल में राज्य स्तरीय बैठक में व्यक्तियों, संस्थाओं, शासकीय

हौसलों के पंख तैरते हैं खुली उड़ान में, आज की नारी कम नहीं किसी आसमान में। समेटे है खुद में वो हर रंग कायनात का, वजूद उसका गूंज रहा पूरे जहान में। इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ आगाज करते हैं आज के महिला सभा कार्यक्रम का। आज आपके साथ हूँ मैं शालिनी सोनी, स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, ये महिला सभा सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक सुकून है, एक रिश्ता है हमारा और आपका। एहसास है हमारी ताकत का, हमारी ममता का, हमारी समझ सूझबूझ का और हमारे हौसले का, जिससे हम हर रोज अपने घर और समाज को संवारती हैं। सखियों, कहा गया है ना, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ खुशियाँ खुद ब खुद चली आती हैं और हम सभी के खिलखिलाते मुस्कुराते चेहरे इस बात का गवाह हैं कि जब हम सब एक साथ मिलती हैं तो सकारात्मकता की एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। आज की इस महिला सभा में हम खुलकर बातें करेंगे, मुस्कुराएंगे, कुछ नया सीखेंगे और जिंदगी के सफर को और हसीन बनाने के लिए संकल्प लेंगे, क्योंकि कार्यक्रम है हमारा और आपका। सखियों, ये बात एकदम सही है कि किसी भी देश का विकास उसकी इमारतों से नहीं, बल्कि वहाँ के नागरिकों की सेवा में लगे कर्मचारियों से होता है। इसी सेवा भाव को दर्शाता है हमारा आज का विशेष दिन। जी हाँ सखियों, आज हम मना रहे हैं संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। आज का ये दिन सखियों उन अनगिनत लोक सेवकों को समर्पित है जो बिना थके पर्दे के पीछे रहकर समाज के हर व्यक्ति तक विकास और न्याय पहुंचाने का काम करते हैं। इस दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य केवल एकमात्र यही है सखियों, समाज के लोक सेवकों को पहचानना और युवाओं को इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना। सखियों, संयुक्त लोक सेवा दिवस पर हम सब मिलकर अपने लोक सेवकों के निस्वार्थ योगदान को सलाम करें, उनका सम्मान करें और एक बेहतर समाज के निर्माण में उनका सहयोग करें, क्योंकि उनकी सेवा में ही छुपा है हमारा सुरक्षित कल। सखियों, किसी ने सच ही कहा है कि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अकेले चलना है। आज 23 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस सिर्फ कैलेंडर में एक तारीख नहीं, यह एक दिन है उन करोड़ों महिलाओं के संघर्ष को पहचानने का जिन्होंने अपने जीवन साथी को खो दिया। जब एक घर का मुखिया चला जाता है ना, तो पीछे छूट जाती है एक महिला। समाज अक्सर उसे सहानुभूति तो देता है लेकिन अधिकार नहीं। ताने, आर्थिक तंगी और अकेलेपन के साए में वह अपने और अपने बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए जूझती रहती है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ दर्द की नहीं है, कहानी है हौसलों की भी। हमारे समाज में कई ऐसी प्रेरणादायक महिलाएं हैं जिन्होंने रूढ़ियों को तोड़ा, पति के जाने के बाद न केवल खुद को संभाला बल्कि अपने बच्चों को भी पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस का यही असल मकसद है सखियों, कि इन महिलाओं को दया की नजरों से नहीं देखना है बल्कि उन्हें सम्मान और समानता देनी है। उन्हें शिक्षा, रोजगार और संपत्ति के अधिकार मिलने चाहिए। आज के इस विशेष दिन पर आइए हम सब मिलकर एक वादा करें, अपने आसपास, हमारे परिवार में या पड़ोस में अगर कोई ऐसी बहन या माँ है तो उनका संबल बने, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ें, उन्हें यह एहसास दिलाएं कि वे अकेली नहीं हैं। सरकार की कई कल्याणकारी योजनाएं उन तक पहुंचाएं और उनकी मदद करें, क्योंकि जब एक महिला सशक्त होती है पूरा परिवार समाज मजबूत होता है। चलिए आज से रूढ़िवादिता को पीछे छोड़ते हैं और सम्मान की एक नई शुरुआत करते हैं।

सखियो, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र सेवा के शानदार 12 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस स्वर्णिम यात्रा में सबका साथ सबका विकास मंत्र के साथ देश ने अभूतपूर्व प्रगति, डिजिटल क्रांति और वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान हासिल की है। डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत, कई योजनाएं ऐसी ऐतिहासिक पहल की है कि जिससे करोड़ों लोगों का जीवन स्तर बदल गया है। मोदी जी के मजबूत इरादों ने हर क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है। आज का आत्मनिर्भर भारत उनके अद्वितीय समर्पण और निर्णायक नेतृत्व की जीती जागती मिसाल है सखियो। और अब बात प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही एक योजना की। आज सखियो हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की। प्रधानमंत्री आवास योजना सखियो भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य 2029 तक देश के सभी गरीबों और बेघरों को पक्का घर प्रदान करना है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1,30,000 तक की सहायता और शहरी क्षेत्रों में लगभग 2.75 लाख की ब्याज सब्सिडी शामिल है। सखियों, इसके लिए जो भी आवेदक हैं, उनका भारत में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए, साथ ही वो गरीबी रेखा के नीचे हों। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं ना सखियों, तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना बहनों न केवल छत प्रदान कर रही है, बल्कि हमारा जीवन स्तर भी सुधार रही है। सामाजिक सुरक्षा और महिलाओं को सशक्त बनाकर सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान कर रही है। सचमुच सखियो, ये योजना सभी के लिए आवास के सपने को साकार करने का एक मील का पत्थर है। तो सखियो, अगर आपका सपना भी है अपना घर बनाने का, तो जरूर जुड़िए प्रधानमंत्री आवास योजना से और इस योजना का लाभ लेकर इसे सफल बनाइए। सखियो, अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, क्रम मेरी उड़ान के साथ। आज क्रम मेरी उड़ान में है हमारे साथ गेम्स टीचर, खेल शिक्षिका अन्नू झारिया। आइए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी, क्रम मेरी उड़ान में।

0: सखियों, आज के क्रम मेरी उड़ान में मेरे साथ हैं खेल प्रशिक्षिका या कहूँ गेम्स टीचर अन्नू झारिया। ये एक प्रतिष्ठित संस्थान में बच्चों को विभिन्न प्रकार के खेलों का प्रशिक्षण देती हैं। बतौर गेम्स टीचर सफल और आत्मनिर्भर हैं। आइए मिलते हैं अन्नू झारिया से और जानते हैं उनसे उन्हीं के बारे में। अन्नू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम मेरी उड़ान में। सबसे पहले अनु जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका रुझान इस फील्ड में कैसे आया।
1: धन्यवाद शालिनी जी, मुझे आपने मेरे बारे में बताने का मौका दिया। जैसे कि बच्चे बूढ़े सभी को ही खेलों में इंटरेस्ट होता है, उसी प्रकार मुझे भी खेलों में बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए मैंने गेम्स में जाने का फैसला किया और मैं 8 साल की एज से जिमनास्टिक खेलने लगी थी। मेरे सर है जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनकी वजह से आज मैं एक स्पोर्ट टीचर भी बनी हूँ और एक अच्छा प्लेयर बनी हूँ।
0: अनु जी, आप हमारी सखियों को ये बताइए कि आप किस प्रकार के खेल में आप माहिर हैं और आपका पसंदीदा खेल कौन सा है।
1: मेरा फेवरेट गेम जिमनास्टिक है, जिसमें मैंने बहुत नेशनल भी खेला है, स्टेट लेवल चैंपियन रह चुकी हूँ। मैं 8 साल की एज से इस गेम को खेल रही हूँ। मैंने इसमें यूनिवर्सिटी, स्कूल नेशनल, ओपन्स नेशनल, वुमेन्स नेशनल, सभी नेशनल खेल चुकी हूँ मैं, और ये सब मैंने जिमनास्टिक में ही अचीव किया है। और जिमनास्टिक एक ऐसा गेम है जिसमें 4 अपरेटस होते हैं, 4 अपरेटस गर्ल्स के लिए होते हैं, 6 अपरेटस बॉयज के लिए होते हैं। जिमनास्टिक वैसे तो एक बहुत फ्लेक्सिबिलिटी वाला गेम है, जिसे मतलब कम एज से आप स्टार्ट करते हो तो ही आप इसमें आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत जरूरत होती है। बॉडी पूरा फ्लेक्सिबल रहेगा तभी आप जिमनास्टिक कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ आपके अंदर बहुत पावर, स्टेमिना और बहुत सारी चीजें हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ती है, क्योंकि जिमनास्टिक गेम बहुत रिस्की भी होता है। इसमें स्टंट करने के साथ साथ चोट लगने का भी डर रहता है। आपका माइंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। जब आप कुछ भी स्टंट करते हैं या फिर कुछ जंप करते हैं तो उसमें आपका माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कब कहाँ कैसे मूव करना है।
0: बहुत सही बात कही अनु जी। देखिए, जब हम अपने शरीर में तालमेल बिठाना सीख जाएंगे तो स्वाभाविक है कि वो काम बहुत ही अच्छा होगा। बहुत अच्छी बात बोल रही हैं आप। और भी हम जानना चाहेंगे कि अगर हमारी कोई सखी आपकी तरह गेम्स टीचर या ट्रेनर बनना चाहती है तो उसे क्या करना होगा।
1: सबसे पहले तो शालिनी जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इस फील्ड में बहुत मेहनत है और साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जब तक खुद से इंटरेस्टेड नहीं होगे तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल सही।
1: इसीलिए मतलब जैसे इसको आपने जैसे पहले कभी कोई गेम में आपका इंटरेस्ट हो या फिर आपने कुछ गेम खेल रखे हो या जिस गेम के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज हो, जानकारियां हो, तो उस गेम में आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे बीपीएड होता है, बीपीएड कोर्स है जिसको करने से आपको है ना तो स्पोर्ट्स के हर गेम के बारे में नॉलेज मिलती है। मेन गेम जैसे आपका कुछ भी हुआ, खो खो हुआ, कबड्डी हुआ, जिम्नास्टिक क्यों ना हुआ।
0: बहुत बढ़िया अनु जी, आपने हमारी सखियों को इतने सारे कोर्सेज के बारे में बताया जिनकी वजह से वो आगे चलकर एक अच्छी ट्रेनर या गेम्स टीचर बन सकती हैं। अब मैं आगे आपसे ये जानना चाहती हूँ कि गेम्स की फील्ड में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं या हम कुछ कर रहे हैं तो क्या हम अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं।
1: क्यों नहीं शालिनी जी, छोटे से लेवल से भी आप इस चीज की शुरुआत कर सकते हैं। और हम सब मिलकर एक छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर खोलते हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चे आते हैं, थोड़े बहुत बच्चों से स्टार्टिंग होती है, भले से 4 बच्चे आ रहे, 2 बच्चे आ रहे, धीरे धीरे वो चीज चल के बढ़ती है।
0: बिल्कुल।
1: और धीरे धीरे आपको रिजल्ट भी मिलेगा, आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। जैसे कि हर स्कूलों में स्पोर्ट टीचर की डिमांड, सभी को मतलब खेलों में अब रुचि आने लगी है, बच्चों का इंटरेस्ट भी ज्यादा खेलों की तरफ बढ़ रहा है, जिससे कि आपकी धीरे धीरे करके अर्निंग शुरू होने लग जाएगी और आप इसमें माहिर हो जाएंगे।
0: तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि खेल हमें स्वस्थ तो रखते ही हैं, साथ ही साथ हमारी जेब को भी हरा भरा रखते हैं ना। आखिर में आप हमारी सखियों के लिए क्या कहना चाहेंगे।
1: अब मैं सखियों से यह कहना चाहूंगी कि अब वो समय नहीं रहा है जब कहा जाता था खेलोगे कूदोगे होंगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होंगे नवाब। अब वह समय है, जितना महत्व पढ़ाई का है उतना महत्व खेलों का भी है। अब आप भी चुप मत रहिए, अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को निखारिए, और आप भी अगर किसी गेम में रुचि रखती है या इंटरेस्टेड है तो आगे बढ़िए।
0: बहुत अच्छी बातें कही अनु जी ने हमारी सखियों से। हम भी चाहेंगे कि सखियां अपने अरमानों को, अपने सपनों को पूरा करें, चाहे तो गेम्स टीचर के रूप में। अनु जी, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

सखियों, अब बात रूप लावण्य की। व्यस्त जीवन शैली में अक्सर अपने पैरों की देखभाल करना हम भूल जाते हैं, जबकि वे दिन भर हमारे शरीर का भार सहते हैं और बाहरी परिस्थितियां से लड़ते रहते हैं। पैरों का प्राकृतिक स्थान उन्हें आराम देता है सखियों, थकान कम करता है और स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। तो आज जानेंगे रूप लावण्य में पैरों को सुकून देने

वाले फुटबार। सखियों, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद के अनुसार तलवों में अनेक तरह की नाड़ियों का जाल होता है जो शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़ी होती हैं, और यही कारण होता है कि पैरों के माध्यम से बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनका अवशोषण हो पाता है। सही देखभाल से रक्तचाप सुचारू रहता है, तनाव भी कम होता है और हाँ, शरीर को आराम मिलता है। अगर आप थकान दूर करना चाहते हैं ना सखियो, तो टब में 2 बड़े चम्मच ग्रीन टी या टी बैग ले सकते हैं और गुनगुने पानी में उन्हें 5 से 10 मिनट डालकर छोड़ दें ताकि उनके पोषक तत्व उसमें घुल जाएं। अब इसमें आप आधा कप नमक डालें और 1/4 कप बेकिंग सोडा डालें, 5 बूंद पेपरमेंट ऑयल की डालें और पैरों को 15 से 20 मिनट तक इसमें डुबा कर रखें। और अगर आप चाहते हैं कि आपका रक्त संचार सुचारू हो, तो गुनगुने गुनगुने पानी में आधा कप समुद्री नमक, 1/4 कप बेकिंग सोडा, 5 बूंद पेपरमेंट ऑयल और थोड़ी सी कद्दूकस की हुई अदरक मिला लें और पैरों को लगभग 15 मिनट तक इसमें भिगो कर रखें। और अगर मकसद हो क्लींजिंग का, कि आप पैरों को साफ करना चाहते हैं, तो गुनगुने पानी में 1 कप सेब वाला सिरका लें, आधा कप समुद्री नमक डालें, 1 बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा डालें और 5 बूंद किसी भी तेल की डाल सकते हैं। अब पैरों को 15 से 20 मिनट तक इसमें भिगो कर रखें। इसके नियमित इस्तेमाल से रक्त संचार तो बेहतर होगा ही सखियो, शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उन तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति सुधरेगी, साथ ही तनाव कम होगा, अनिद्रा और मानसिक थकान को भी राहत मिलेगी। लेकिन ध्यान रखें सखियों, यदि पैरों में कोई खुला हुआ घाव या संक्रमण है तो फुटबाथ बिल्कुल ना करें और अधिक गर्म पानी का उपयोग भी ना करें। मधुमेह के जो मरीज हैं वे चिकित्सक की सलाह लेकर इसका उपयोग कर सकते हैं। और हाँ, किसी भी तेल या सामग्री से एलर्जी हो तो उसे भी शामिल ना करें। सखियों, अगर आप फुटबाथ लेती हैं तो फिर देखें कि कैसे आपके पैर कोमल मुलायम खूबसूरत तो दिखेंगे ही, साथ ही साथ आपको चुस्त दुरुस्त भी रखेंगे।

और अब रुख करते हैं फूड जोन की तरफ। फूड जोन में आज हम बात करेंगे बच्चों और बड़ों की पसंदीदा चटनी, सेजवान चटनी की। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं होममेड सेजवान चटनी। सखियो, इसके लिए आपको चाहिए सूखी लाल मिर्च 15 से 20, आप चाहें तो काश्मीरी और तीखी मिर्च मिली जुली ले सकते हैं, बारीक कटा हुआ लहसुन आधा कप, बारीक कटा हुआ अदरक 1/4 कप, तेल आधा कप, सोया सॉस 2 बड़े चम्मच, सफेद सिरका 1 चम्मच, शक्कर 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, और हाँ काली मिर्च का पाउडर 1 छोटा चम्मच। अब सबसे पहले सखियो, दोनों तरह की लाल मिर्च को आधे घंटे के लिए गर्म पानी में भिगोकर रख दें ताकि वे नरम हो जाएं। अब इन्हें पीसकर पेस्ट बना लें। कढ़ाई में तेल गर्म करके लहसुन और अदरक को गुलाबी होने तक भून लें। इसमें मिर्च पेस्ट मिलाएं और धीमी आंच पर तेल अलग होने तक चलाते हुए पकाएं। सोया सॉस, सिरका, शक्कर और नमक डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। 2 से 3 मिनट तक पकाएं और अंत में काली मिर्च पाउडर डालकर मिलाएं। अब इस चटनी को ठंडा करें और ठंडा करके जार में भर के फ्रिज में रख दीजिए। आप चाहें तो इस चटनी को 1 महीने तक लगभग स्टोर कर सकते हैं। देखिए ना, कितने आसानी से तैयार हो गई होममेड सेजवान चटनी। अब चटपटी चटनी के बाद हो जाए सगी एक प्यारा सा मीठा मीठा गीत।

पहुंचाने का काम करता है। पर्याप्त आयरन होने पर शरीर में ऊर्जा का स्तर बना रहता है, दिमागी कार्य क्षमता बेहतर होती है और हाँ, प्रतिरक्षा प्रणाली भी मजबूत होती है। वहीं अगर इसकी कमी हो जाती है ना सखियो, तो कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभार कुछ सामान्य से कारण जैसे संतुलित आहार का अभाव, आयरन युक्त खाद्य पदार्थों की कमी या इसके अलावा महिलाओं में अत्यधिक मासिक स्त्राव, गर्भावस्था के दौरान बढ़ी हुई जरूरत, बार बार खून की कमी या पेट की समस्या के कारण भी आयरन का सही अवशोषण नहीं हो पाता। और सखियों, कुछ लोगों को ये समस्या अनुवांशिक या लंबे समय तक चलने वाली बीमारी के कारण भी हो सकती है। सांस फूलने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, धड़कनें तेज होती हैं, इसके अलावा जो मानसिक एकाग्रता है वो भी कम होने लगती है, सिर दर्द होता है, त्वचा पीली पड़ने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं और भी कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं। आयरन की कमी से हम सभी जानते हैं कि एनीमिया भी हो सकता है सखियों। ऐसा ना हो सकियो, इसलिए हमें अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। खान पान में अगर आप मांसाहारी हैं तो रेड मीट, कलेजी, मछली व अंडे अच्छे स्रोत होते हैं आयरन के, और अगर आप शाकाहारी हैं तो चना, राजमा, लोबिया, सोयाबीन, तिल, दाल, हरी सब्जी, कद्दू के बीज, गुड़, खजूर व किशमिश ले सकते हैं। और हाँ, रोज सुबह नाश्ते में गुड़ या सूखे मेवे जरूर शामिल करें, सलाद में नींबू डालकर खाएं और प्रोस्टेट फूड से दूरी बनाकर रखें। आयरन का सही अवशोषण जितना महत्वपूर्ण है उतना ही जरूरी है विटामिन सी। तो सखियों, काम की ये बातें जरूर याद रखिएगा, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। फिलहाल चलने का समय हो रहा है, तो बता दें आपको कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थी डॉक्टर प्रीति छड़ीदार, और अब दें अनुमति अपनी सखी शालिनी सोनी को। नमस्कार।

श्रोता बहनें अभी सुन रही थी उनका अपना कार्यक्रम महिला सभा। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता।
3: सड़क पर पैदल चलते समय रखें हम कुछ बातों का ध्यान।
4: हमेशा सड़क के किनारे बनी पटरियों पर ही चलें।
3: सड़क पार करने के पूर्व दाएं और बाएं अवश्य देख लें।
4: तेज गति से आ रहे वाहन के सामने से निकलने की भूल ना करें।
3: सड़क पार करते समय मोबाइल पर बात न करें।
4: चौराहे पर हमेशा ज़ेब्रा क्रॉस से ही सड़क पार करें।
3: हम रहेंगे अगर सावधान, राह हो जाएगी आसान।
5: एक भाई जरा देख।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। प्रस्तुत है लोक संगीत, कलाकार है कालू सिंह चोपड़ा और साथी।

0: काज वारा काज बनायो रे मोहन मंदरियो।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम का अगला लोकगीत।
2: हे जी गगन मंडल।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आपने कालू सिंह चोपड़ा और साथियों के गाए लोकगीत सुने। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। ये प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया जा रहा है। प्रस्तुत है सुगम संगीत, कलाकार हैं श्रुति कलवे।

पेश है फिल्म संगीत। आरंभ कर रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए गुलजार के लिखे गीत से। संगीत खयाम का है और फिल्म है थोड़ी सी बेवफाई।

और अब पेश है कार्यक्रम का ये गीत। फिल्म है मुकद्दर का सिकंदर। लता मंगेशकर के गाए इस गीत को लिखा है अनजान ने और संगीत कल्याण जी।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 65 पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन, टेनिस स्टार विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और गायिका अलका याग्निक का नाम शामिल है। शाम 5 बजे शुरू होने वाले इस समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत भारत के तेजी से विकसित और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था बनने में प्रेरक बल रहा है। कल नई दिल्ली में एक मीडिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के प्रति प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में जो भी सिद्धियां देश की रही हैं, उनके मूल में राष्ट्रप्रथम की भावना ही केंद्र में है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही हैं, उनके मूल में हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास राष्ट्रप्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूँ।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लिए 5,365 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। बैठक में किसानों को राहत देने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने से जुड़े फैसले भी लिए गए। इसके साथ ही भोपाल मेट्रो परियोजना की लागत को बढ़ाकर 10,033 करोड़ रुपए करने की भी मंजूरी दी गई, जो पहले 6,941 करोड़ रुपए थी। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज प्रदेश सहित पूरे देश में भाजपा द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का सपना एक देश, एक प्रधान और एक विधान था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 हटाकर साकार किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य सरकार आगामी मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसके लिए प्रदेश भर से 10 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अल नीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में कम वर्षा की स्थिति में जरूरी तैयारियों, वैकल्पिक फसल योजनाओं और किसानों के हितों की रक्षा पर चर्चा हुई। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन 20 जुलाई की रात तक लिए जा सकेंगे। मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इच्छुक मुस्लिम समुदाय के लोगों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है। आवेदक हज कमेटी की वेबसाइट या हज सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जुलाई के अंतिम सप्ताह में डिजिटल रैंडम चयन प्रक्रिया में चयनित यात्रियों को 10 अगस्त तक 1,52,300 रुपये की अग्रिम राशि जमा करनी होगी। प्रदेश में राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जो कि 25 जून को भोपाल में आयोजित की जाएगी। इसमें राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारी और सभी जिलों के नोडल अधिकारी शामिल होंगे। उन्हें छात्रवृत्ति चयन प्रक्रिया और पंजीयन से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को हर साल 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में मानसून प्रदेश में दस्तक दे सकता है। विभाग ने आज जबलपुर, मंडला, दमोह और उमरिया जिलों में हीट वेव यानी लू का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा कलेक्टर ने जिला पोषण समिति की बैठक में गर्भवती महिलाओं का 100% पंजीयन करने के निर्देश दिए। छिंदवाड़ा में परिवहन विभाग ने निजी स्कूलों में अवैध गैसकेट और अनफिट वाहनों के संचालन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। और शिवपुरी में मोहर्रम पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सद्भावना समिति की बैठक में सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हुई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार

0: अधिकार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा, हुर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: मैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है। तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सीख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
0: ये कार्यक्रम आज FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूठ जैसे एक सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
0: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
4: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं रहे।
0: इस अवसर पर गृह मंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
4: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
0: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा ये संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
5: नाफेड ने एक प्रकार से नाफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये 4 पहलों की शुरुआत की। तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरो मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
6: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
7: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
6: They all constitute an important threat for us.
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रेर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फॉरेंसिक

0: साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। SIT के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनेनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनेनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार तीसरे दिन भी बारिश हो रही है।
2: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश होने से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का आरंभ कर रहे हैं फिल्म राजनीति के गीत से। इस गीत को लिखा है समीर ने, संगीत आदेश श्रीवास्तव का है और आवाज आदि श्रीवास्तव रोसेली और शशि की।

फिल्म राजनीति का ये गीत सुनवाने की फरमाइश हमें लिख भेजी थी अनिल कवचाले, सुषमा, आरती, सबीहा, रूपाली, श्वेता, पूजा, सीमा और उनके सभी साथियों ने गोमाश्ता नगर इंदौर से। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की भी यही फरमाइश थी। लक्ष्मण रैकवार, विनीता रैकवार, वैशाली, अनरथ, हल्ले, लल्लूर, ऋषि और रैकवार परिवार के सभी सदस्यों ने अपनी फरमाइश बंडा बेलई सागर से भेजी थी। और अब पेश है कार्यक्रम का अगला गीत जिसे सुनवाने की फरमाइश की है गोला बाजार बक्सर से जीत प्रसाद, आशीष कुमार, सतीश कुमार, आयुष और आयुषी ने। गोला बाजार बक्सर से ही श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने। पटेल नगर मलौट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू। तो पेश है आप सबकी पसंद पर राहत फतेह अली खां और तुलसी कुमार के स्वर में इरशाद कामिल का लिखा गीत। संगीत प्रीतम का है और फिल्म है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई।

शफकत अमानत अली की आवाज में आप सुन रहे थे निरंजन आयंगर का लिखा गीत। इस गीत को संगीत से संवारा था शंकर एहसान लॉय ने और फिल्म थी माई नेम इज खान। फरमाइश करने वाले श्रोता थे अंबेडकर चौक खुरई से परमानंद आर्य, सौरभ गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू, डुंडुन और उनका पूरा परिवार। हनुमानगढ़ राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेस नायक, शोभा नायक और उनके सभी साथी। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसू और तासू, मयंक शुक्ला, राशि शुक्ला, पंकज शर्मा, साधना शर्मा और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने कोला रोड भोपाल से अपनी फरमाइश हमें भेजी। तो आप सबकी पसंद के इस गीत के बाद बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर और सुनते हैं शंकर महादेवन और अलीशा मेंडोसा की आवाज में जावेद अख्तर का लिखा गीत। संगीत एक बार फिर शंकर एहसान लॉय का है। फिल्म है कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। इस गीत को सुनवाने की फरमाइश हमें लिख भेजी है मनमोहन राजावत, राज मधु, राशि रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने। खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार और मोहम्मद हसनैन। ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े। जिला खंडवा ग्राम छैंगा से अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, भूपेंद्र, झवर, तनुश्री, आरोही और कान्हा ने इस गीत की फरमाइश की है। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहते हैं यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मुस्कान और जितेंद्र धर्मेंद्र मालाकार। बिलहरी बड़खेरा से संतोष सिंह ठाकुर, अवधेश कुमार दुबे, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, बारेलाल, मुन्ना खां, सुमित, सुनील और उनके सभी साथी। तो पेश है आप सबकी पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश का आखिरी गीत अब आप सुनेंगे राहत फतेह अली खान और साथियों की आवाज में। विशाल ददलानी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है विशाल शेखर ने। फिल्म है अनजाना अनजानी और इस गीत को सुनवाने की फरमाइश हमें लिख भेजी है भाटापारा दतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और छविंद्र कुमार वर्मा ने। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल, जयवीर, अमनदीप से ने मोहाली चंडीगढ़ से, कालका से शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल की फरमाइश हमारे पास आई है। राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतना, रोशनी, बेबी प्रियांशी ने शाहू नगर यवतमाल से फरमाइश भेजी है। बलिया नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की फरमाइश है। गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी, प्रांजल और गाजीपुर के शेरपुर कला से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय भी यही गीत सुनना चाहते हैं। इसी गीत को सुनना चाहा है राजेश सावले पाटिल, राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश ने छत्रपति संभाजी नगर से। तो सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत

0: राहत फतेह अली खां और साथियों की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म अनजाना अनजानी का गीत। इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में 2026 वर्ष के लिए 65 पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था बनने में प्रेरक बल रहा है। कल नई दिल्ली में एक मीडिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के प्रति प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लिए 5,365 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। बैठक में किसानों को राहत देने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने से जुड़े फैसले भी लिए गए। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज प्रदेश सहित पूरे देश में भाजपा द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अल नीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए बैठक की। इस बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा समाप्त करने से पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं सांध्यकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों की। आज के इन मुख्य कार्यक्रमों में शाम 5 बजे से आप सुनेंगे माननीय

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान करने हेतु नागरिक अलंकरण समारोह के आयोजन का सजीव प्रसारण। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीआरटी शाम 6 बजे आप सुनेंगे। 7 बजे

मिनट पर फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे। उर्दू कार्यक्रम कहकशा होगा रात 9:30 पर। अपनी पसंद के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुना जा सकेगा रात 10:00 और 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इसके अंतर्गत सलीम अल्लाह वाले का तबला वादन सुना जा सकेगा। ये थे सांध्यकालीन सभा के कुछ मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। दिन के 3:01:50 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा यही समाप्त होती है। शाम 5:00 अपने कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा। ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है लोक संगीत।

राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में मौजूद हैं। ये अवसर केवल पुरस्कार वितरण का नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में असाधारण योगदान देने वाले उन व्यक्तित्वों के प्रति भारत की सामूहिक कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है जिन्होंने अपने कार्य, समर्पण और उत्कृष्ट उपलब्धियों से देश का गौरव बढ़ाया है। 2026 के लिए कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। प्रथम नागरिक समारोह जो 25 मई को आयोजित किया गया था, आज इसका दूसरा समारोह है जिसमें 67 विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा जिसमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 57 पद्मश्री शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं और सूची में विदेशी एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई श्रेणी के 6 व्यक्ति और 16 मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्तकर्ता भी शामिल हैं। श्रोताओं, राष्ट्रपति भवन का गणतंत्र मंडप आज अपनी पूरी भव्यता के साथ सुसज्जित है। भारतीय कला, स्थापत्य और लोकतांत्रिक परंपराओं का अद्भुत संगम इस मंडप में दिखाई देता है। भव्य झूमर, आकर्षक सज्जा,

0: है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, और अपने स्थान की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री सबको अभिवादन स्वीकार करते हुए, सबको नमस्कार करते हुए और अपनी जगह पर बैठते हुए, सभी लोग उनके साथ खड़े हो चुके थे और अब सब अपने स्थान पर वापस बैठ चुके हैं। नितिश,
1: ए वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी फ्रॉम गणतंत्र मंडप राष्ट्रपति भवन। इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ ऑनरेबल प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल कन्फर द पद्मा अवार्ड्स 2026 एट द सेकेंड सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी ऑफ दिस ईयर। द प्रेजिडेंट विल कन्फर 65 पद्म अवार्ड्स इंक्लूडिंग 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण एंड 56 पद्म श्री। Instituted in 1954, these awards are announced on the occasion of the Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinguished and is of work of distinction, and it is given for distinguished and exceptional achievements in various fields and disciplines, including art, literature, education, sports, medicine, social work, science, and engineering, public affairs, and trade and industry.
0: और नितिश, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर सभी लोग अपनी अपने स्थान से उठ गए हैं क्योंकि माननीय उपराष्ट्रपति का आगमन हो रहा है। सीपी राधाकृष्णन अभी यहाँ आगमन हुआ है उनका गणतंत्र मंडप में। सभी को नमस्कार करते हुए,
1: Well, the first citizen of the nation, Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, will be honoring the most distinguished Indians for their exemplary work in various fields. What a proud moment, Shalini, for any citizen when his or her work is recognized by the nation. Proud are the family members of the recipients who are seated here to cheer their family members when the nation is giving to reward their dear ones. A day like this comes once in lifetime.
0: Indeed, बिल्कुल सही कहा नितिश। यही वो क्षण होता है जब वर्षों की साधना, सेवा और उपलब्धियों को राष्ट्र की सर्वोच्च मान्यता प्राप्त होती है। ये सम्मान न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि का प्रतीक है बल्कि उस क्षेत्र विशेष के महत्व और उसकी राष्ट्रीय स्वीकार्यता को भी का भी परिचायक है। श्रोताओं, पद्म पुरस्कारों की विशेषता यह है कि इनमें भारत के महानगरों से लेकर दूरस्थ गांवों तक के वो लोग शामिल होते हैं जिन्होंने बिना किसी प्रचार प्रसार के समाज सेवा, लोक कला, जनजातीय संस्कृति, शिक्षा, चिकित्सा और मानवीय कल्याण के क्षेत्र में असाधारण कार्य किए हैं। यही कारण है कि पद्म पुरस्कार भारत की विविधता और समावेशी विकास की भावना का जीवंत प्रतिबिंब माने जाते हैं। हर पुरस्कार के साथ एक प्रेरक जीवन यात्रा जुड़ी होती है नितिश।
1: Absolutely.
0: इन सम्मानित व्यक्तियों ने अपने अथक परिश्रम, नवाचार, सेवा और प्रतिबद्धता से देश को नई ऊर्जा प्रदान की है। आज का ये समारोह भारत की उस भावना का उत्सव है जिसमें उत्कृष्टता को पहचान और सम्मान दिया जाता है।
1: Well, Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. The awards are given in various disciplines and the fields of activities that include art, social work, public affairs, science and engineering, trade and industry, medicine, literature and education, sports, civil service, etc. Padma Vibhushan is awarded for exceptional and distinguished service, Padma Bhushan for distinguished service of high order, and Padma Shri for distinguished service in any field. The awards are announced on the occasion of Republic Day every year. And the bugler announced the arrival of Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu.

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की धुन सभागार में मौजूद महार रेजिमेंट सेंटर के मिलिट्री बैंड द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैंड मास्टर सूबेदार बीपी कुरुंग के नेतृत्व में।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2026 के अलंकरण समारोह की कार्रवाई आरंभ की जाए। धन्यवाद।
0: और अब औपचारिक रूप से एक स्वीकृति ले गई माननीय राष्ट्रपति से कि आज विधिवत
1: पद्म विभूषण
0: की शुरुआत की जा रही है।
1: श्री पी नारायणन, साहित्य एवं शिक्षा।
0: नारायण जी के नाम से लोकप्रिय श्री पी नारायण राष्ट्रवादी पत्रकारिता के दिग्गज और एक महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक आयोजक हैं, जिन्होंने केरल में कभी हाशिए पर रहने वाली विचारधारा को व्यक्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।
2: Beyond journalism, Sri Narayanan made significant contributions as a scholarly author and a prolific translator. His work as a translator includes the works of V.D. Savarkar, M.S. Galwalkar and Deendayal Upadhyay from English and Hindi into Malayalam.
0: बहुत ही गौरव का क्षण।
1: न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त के टी टॉमस लोक कार्य।
0: न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त के टी टॉमस भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। आपको आपराधिक कानून, पुलिस सुधार और निजी व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए काफी जाना जाता है। न्यायमूर्ति टॉमस को वर्ष 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें अन्य पुरस्कारों में भी सम्मानित किया जा चुका है और बहुत सारे उन्होंने पुरस्कार दिए मिल चुके हैं।
2: दिस इज राइट। टॉमस इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ क्रिमिनल लॉ, पुलिस रिफॉर्म्स एंड फाइट अगेंस्ट करप्शन इन प्राइवेट प्रोफेशनल एजुकेशन फील्ड्स। ही इज रिसीविंग द पद्म विभूषण फ्रॉम ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू।

0: पद्म भूषण डॉक्टर विजय अमृतराज खेल टेनिस।
1: डॉक्टर विजय अमृतराज भारत के महान टेनिस खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने 14 साल की उम्र से जूनियर स्पर्धाओं में विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करना शुरू किया और फिर ओपन इवेंट्स में गए। लगातार 20 वर्षों तक डेविस कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने का सम्मान मिला है, जिसने टीम को 2 बार फाइनल में पहुँचाया है। एक ऐसी उपलब्धि जो भारत के ओपन युग में इतिहास में एक बेजोड़ एग्जाम्पल मानी जाती है। अपना पुरस्कार लेते हुए
0: डॉक्टर SKM महिला नंदन समाज सेवा।
1: SKM कंपनी समूह के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर SKM मलियानंदन एक प्रसिद्ध उद्यमी होने के साथ विभिन्न सामाजिक कल्याण ट्रस्टों के संस्थापक और एक उपभोक्ता कार्यकर्ता भी हैं।
2: Dr. Melanandan has received several awards and honors, Padma Shri Award for Social Work in 2013, National Productivity Awards, he got it for 8 times, and National Safety Awards 2 times, Agriculture and Processed Food Products Export Promotion Awards 5 times.
1: अपना पुरस्कार ग्रहण करते हैं।
0: श्री ममूटी कला फिल्म अभिनय।
1: ममूटी एक भारतीय फिल्म अभिनेता और निर्माता है जो दक्षिण भारतीय भाषा के सिनेमा में है, लेकिन मुख्य रूप से मलयालम फिल्म उद्योग में काम करते हैं। 5 दशकों के करियर में श्री ममूटी ने 400 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें मुख्य रूप से मलयालम के साथ साथ कई तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी की कई फिल्मों में उन्होंने काम किया है।
2: Clad is in a formal band gala. Shri Mamuti is widely respected as a goodwill ambassador for numerous social causes also and the patron for several
0: Shri initiatives. Vellapalli Nateshan Lok Karya.
1: Shri Vellapalli Nateshan Kerala ke pramukh rajneetik neta aur pratishthit vyakti hain. Shri Nateshan ne के मार्गदर्शन में शिक्षा योगों का सबसे स्थायी योगदान रहा है। श्री नारायण ट्रस्ट के माध्यम से इस नेटवर्क में स्कूल, कॉलेज और तकनीकी केंद्रों सहित संस्थानों की संख्या 40 से बढ़कर 130 हो गई है।
2: एंड श्री नटेशन आल्सो इंट्रोड्यूस्ड फैमिली यूनिट्स एट द शाख लेवल, एक्सटेंडिंग द ऑर्गेनाइजेशंस रीच इनटू हाउसहोल्ड्स एंड प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म फॉर वीमेन्स लीडरशिप, एजुकेशनल सपोर्ट, सेविंग्स प्रमोशन, सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी कोहिजन बियॉन्ड केरला। SNDP units were established in Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, Delhi and the Gulf. Receiving the Padma Bhushan from Honorable President.
0: Dr. Datta Treyodu Nori, Chikitsa Oncology.
1: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रशस्त ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, अग्रणी चिकित्सक और महत्वपूर्ण बुद्धिजीवी नेता हैं। 4 दशकों से अधिक के अपने करियर के दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क में विश्व प्रसिद्ध कॉर्नल मेडिकल सेंटर और में ऑन्कोलॉजी के प्रोफेसर और अध्यक्ष के साथ ही कैंसर केंद्र के निदेशक के पद पर कार्य किया है।
2: डॉक्टर नोरी हैज एक्सटेंडेड हिज एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस टू वेरियस गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस टू एस्टैब्लिश कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर्स इन नियरली 2000। In early 2000, he helped the government of Andhra Pradesh.
0: Shri Shibu Soren, Marnopranth, Lok Karya, unki patni, Shrimati Rupi Soren.
1: Shibu Soren ko Marnopranth ye award diya ja raha hai, jo unki patni lengi aur maane Rashtrapati niche utarte hue unko ye padak pradan karne ke liye पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। श्री सोरेन का 4 अगस्त 2025 में निधन हो गया था।

0: उन्हें श्रद्धा पूर्वक बिशोम गुरु के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रमुख आदिवासी जननेता, सामाजिक सुधारक तथा झारखंड आंदोलन के मुख्य शिल्पकारों में से वो एक थे।
1: For millions, Sri Soren was more than a political leader. He was a custodian of memory, resistance,
2: Shrimati
1: and hope.
2: Alka Yajnik, Kala, Parshv Gayan.
0: और अब नाम बुलाया गया है अलका याग्निक का, जो भारत की एक प्रख्यात पार्श्व गायिका है और कला के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित कलाकार है। माननीय प्रधानमंत्री को नमस्कार करते हुए झुककर प्रणाम कर रही हैं। हम देख पा रहे हैं 4 दशक से अधिक की उल्लेखनीय गायन यात्रा में उनका मधुर स्वर, कलात्मक उत्कृष्टता और निरंतर समर्पण ने भारतीय सिनेमा की सांस्कृतिक विरासत को अत्यधिक समृद्ध किया है।
1: Born on 20th of March 1916 in Kolkata, West Bengal, Shrimati Yajnik embarked upon her musical journey with a strong classical foundation that shaped her distinctive artistic sensibility and vocal identity. Her most famous song was Ek Do Teen.
0: बहुत सारे उनके गाने हैं जो अति
2: पद्म श्री
0: हैं।
2: श्री नूरुद्दीन अहमद, कला निर्देशन।
1: Now we move on to Padmashri awardees. And Shri Nuruddin Ahmed is a visionary art director, sculptor and set designer who has refined the visual landscape of Ahamiya art and culture through his pioneering work in mobile theater, films and television. The works
0: आप एक दूरदर्शी कला निर्देशक, मूर्तिकार और सेट डिजाइनर हैं जिन्होंने मोबाइल थिएटर, फिल्म और टेलीविजन तथा स्मारकीय सार्वजनिक चित्रों में अपने अग्रणी कार्य के माध्यम से असमिया कला और संस्कृति के परिदृश्य को पुनः परिभाषित किया है। पुरस्कार ग्रहण करते हुए
2: श्री तिरुवरूर भक्त वसलम, कला मृदंगम।
0: श्री तिरुवरूर भक्त वत्सलम प्रतिष्ठित मृदंगम कलाकार हैं और कर्नाटक संगीत की काल्य वाद्य परंपरा के सबसे विशिष्ट कलाकार हैं। श्री भक्त वत्सलम ने 9 वर्ष की आयु से ही अपनी माता के साथ संगीत समारोह में जाना प्रारंभ कर दिया था। और इनके साथ एक खास बात जो मैं बताना चाहूँगी अपने श्रोताओं को कि इनके असाधारण संगीत प्रतिभा के कारण आकाशवाणी ने उन्हें एक अत्यंत दुर्लभ और विशिष्ट सम्मान प्रदान किया। उन्हें बीच की बी हाई श्रेणी को पार करते हुए बी ग्रेड से सीधे ए ग्रेड में पदोन्नत कर दिया गया, जो उस समय अत्यंत असामान्य उपलब्धि मानी जाती थी। इसके कुछ ही समय बाद उन्हें प्रतिष्ठित ए टॉप ग्रेड भी प्राप्त हुआ। अपना सम्मान
1: Shri Tiruvarar Vatsalam was rooted in Tanjore style. And
2: Dr. Krishnamurthy Balasubramanyam, Vigyan Evam Engineering.
0: अब नाम पुकारा गया है डॉक्टर कृष्णमूर्ति बालसुब्रमण्यम का, जो एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अपने योगदान के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं और एक संस्था निर्माता भी हैं। आपने IIT कानपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और प्रतिष्ठित एल्टन फेलोशिप से सम्मानित होने पर सीधे PhD करने के लिए मैकमास्टर यूनिवर्सिटी कनाडा में स्कूल ऑफ मेटीरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग।
2: श्री ब्रिज लाल भट्ट, समाज सेवा।
1: Shri Brijlal Bhatt is known for his distinguished social service promoting peace and harmony after his exemplary contribution during active service in Jammu and Kashmir. Under his payback stage of life now, Shri Bhatt is now working as Chairman Administrative Committee, Shri Ramakrishna Mahasammelan Ashram Vivekanand Kendra, Nagdandi, Anantnag, Kashmir. Clad in the Bandgala two-piece suit, receiving the Padma Shri from the president.
2: Shri Tarun Bhattacharya, Kala Santur.
0: श्री तरुण भट्टाचार्य जी का, जो प्रख्यात संतूर वादक हैं जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई पहचान दी है और शततंत्री वीणा वादन शैली में नए परिवर्तन की आधार शिक्षा रखी है। उनकी नई तकनीकों और तरीकों ने शततंत्री वीणा को एक व्यापक रूप से सीखा और प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र बना दिया है।
1: श्री भट्टाचार्य इज क्रेडिटेड फॉर हैविंग क्रिएटेड न्यू हिंदुस्तानी क्लासिकल रागस, राग गंगा बेस्ड ऑन स्वच्छ गंगा अभियान। And also having created
2: Shri Jyotish Devnath, Kala Hatkargha Bunai.
0: और अगला नाम श्री ज्योतिष देवनाथ का, जो पारंपरिक हथकरघा बुनाई और मलमल और जानदानी साड़ियों में विशेषज्ञता प्राप्त एक प्रतिष्ठित प्रतिपादक हैं। ये बंगाल के समृद्ध वस्त्र परंपराओं के प्रमुख शिल्पकार हैं जिन्होंने अपना जीवन भारत की सबसे बारीक और ऐतिहासिक रूप में महत्वपूर्ण

0: बुनाई विरासतों में से एक को संरक्षित करने और पुनर्जीवित करने के लिए समर्पित किया है।
1: Beyond his personal artistry, Shri Devnath has made significant contribution as a mentor and
2: Dr. Jogesh Deori, Krishi.
0: एक प्रसिद्ध रेशम उत्पादन विशेषज्ञ है जिन्हें रेशम उद्योग विशेष रूप से एरी रेशम में अपने अग्रणी योगदान के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है।
1: Absolutely, Dr. Deori is Eri silk pioneer credited with modernizing traditional Eri silk rearing methods. He's a strong advocate for Eri silk ahimsa, a non-violent silk, viewing it as a sustainable future for Assam's economy and rural youth. I think he's wearing the Eri silk.
2: Shri Biklea लाडकिया डिंडा कला लोक संगीत।
0: अगला नाम श्री डिंडा, आप एक प्रतिष्ठित आदिवासी लोक संगीतकार हैं और बालवंडा गांव तालुका जवार के प्रतिष्ठित तरपा कलाकार हैं। उन्होंने 7 दशकों से अधिक समय से अपना जीवन आदिवासी सांस्कृतिक विरासत के अभिन्न और पवित्र अंग तरपा संगीत को प्रशिक्षित करने में संरक्षित करने में बिताया।
1: Well, in addition to being a master performer, Shri Dhinda has served the tribal community as a bhagat, that is a traditional...
2: Dr. Amida Fernandez, Chikitsa, Neonatology.
0: प्रसिद्ध न्यूनेटोलॉजिस्ट में से एक डॉक्टर अर्मिडा फर्नांडिस को भारत में न्यूनेटोलॉजी, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण और समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य में उनके अग्रणी योगदान के लिए जाना जाता है।
1: डॉक्टर फर्नांडिस वाज इंस्ट्रूमेंटल इन मार्केटली रिड्यूसिंग द हाई मोर्टेलिटी रेट अमंग प्री टर्म एंड सिक न्यूनेटल्स एट LTMG हॉस्पिटल थ्रू लो कॉस्ट सस्टेनेबल इनोवेशंस। Clad in a green sari, she is proudly receiving this award from Honorable President
2: Dr. Chandramouli Gaddamunugu, Vigyan Evam Engineering.
0: आप एक भूतपूर्व उत्कृष्ट वैज्ञानिक, परियोजना निदेशक, आकाश रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद DRDO के कार्यक्रम निदेशक हैं।
1: Despite numerous hurdles over a demanding journey spanning more than 3 decades, Dr. Chandramouli remains steadfast in his focus, inspiring teams across diverse organizations, resolving complex technical challenges for surface-to-air missile technology.
2: Dr. Prem Lal Gautam, Vigyan Evam Engineering.
0: डॉक्टर प्रेमलाल गौतम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार के कुल अधिपति हैं। एक प्रख्यात पादप प्रजनक शिक्षक, मार्गदर्शक, अनुसंधान प्रबंधक, संस्था निर्माता हैं।
1: डॉक्टर गौतम वाज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ अ डजन इंप्रूव्ड क्रॉप वैराइटीज, पायनियर्ड नेशनल सिस्टम ऑफ प्लांट जर्मप्लाज्म रजिस्ट्रेशन, एक्सेलरेटेड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्लांट वैराइटीज।
2: डॉक्टर राजा स्थापति कलियप्पा गौंडर कला कांस्य शिल्प।
0: अगला नाम कांस्य कला के प्रसिद्ध शिल्पकार हैं जिन्हें पद्मश्री से नवाजा जा रहा है। अपने कौशल को अगली पीढ़ी के साथ साझा करने के लिए डॉक्टर गौंडर ने अपने संस्थान में युवा पीढ़ी के लिए प्रशिक्षण कक्षाएं शुरू की हैं।
1: And due to Dr. Gonder's avid interest in arts, he also started focusing on preserving the old temples, which was struggling due to financial stress and left without maintenance. He renovated more than 100 temples which were left to perish and rebuilt them, and finally conducted Kumbh Abhishekam. What a great achievement.
2: Dr. Padma Gurmed, Chikitsa, Sowa Rigpa.
0: डॉक्टर पद्मा गुरमेद राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान लेह के संस्थापक निदेशक और लद्दाख अमची सभा लेह लद्दाख के अध्यक्ष हैं। वे आयुष चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत सोवा रिगपा चिकित्सा पद्धति को औपचारिक मान्यता दिलाने तथा लद्दाख एवं अन्य हिमालयी क्षेत्रों में इसके व्यवस्थित विकास के अग्रदूत में से एक माने जाते हैं। राष्ट्रपति महोदय से पद्मश्री ग्रहण करते हुए एक अत्यंत गौरव का पल।
2: श्री अशोक कुमार हल्दर, साहित्य एवं शिक्षा।
1: श्री अशोक कुमार हल्दर इज ए नोटेड इंडियन राइटर एंड सोशल थिंकर फ्रॉम मालदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। इन एडिशन टू बुक्स, श्री हल्दर हैज ऑथर्ड अप्रॉक्सिमेटली 3,000 आर्टिकल्स।

0: articles published in leading newspapers of West Bengal and Tripura. His first walk up to the Prime Minister, Shri Narendra Modi, and is now walking slowly to receive his Padma Shri award.
1: उन्होंने अपना जीवन साहित्य और सामाजिक चेतना तथा मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित किया। पद्मश्री माननीय राष्ट्रपति के कार्यक्रम में पहले द्वारा लेते हुए श्री अशोक कुमार हनगवा।
2: डॉक्टर सुरेश हनगवाड़ी, चिकित्सा हीमोफीलिया।
0: डॉक्टर सुरेश हनगवाड़ी, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ कर्नाटका हीमोफीलिया सोसाइटी देवनगिरी KHS, is a distinguished medical professional, visionary institution builder, and a tireless advocate for persons with hemophilia and rare bleeding disorders in India. Himself being suffering from severe hemophilia B, he transformed personal adversity into a lifelong mission of service, dedicating over four decades in improving diagnosis, treatment, rehabilitation and dignity for thousands of affected people.
1: Mananiya Rashtrapati Dr. Suresh Hanagwadi ko Padma Shri se sammanit karte hain.
0: A proud moment for his family members who are all standing up and cheering.
2: Dr. Charan Hembram, Sahitya Evam Shiksha, Santhali.
1: Shri Charan Hembram, एक संथाली शिक्षाविद और सांस्कृतिक कार्यकर्ता है जिन्होंने उड़ीसा में संथाली भाषा साहित्य और संस्कृति के प्रचार पर प्रसार और संस्थागत विकास में असाधारण योगदान दिया है। कई सरकारी और साहित्यिक पत्रिकाओं में उनके लेख भी प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने संथाली ऑडियो एल्बम के लिए गीत भी रचे और आज भी संथाली साहित्य और संगीत विरासत में योगदान दे रहे हैं।
0: श्री हेमराम प्लेड अ ट्रांसफॉर्मेटिव रोल इन संथाली एजुकेशन, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टेन्योर एज सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ संथाली एजुकेशन ओडिशा अंडर AS ECA. Rai Rangpur from 1992 to 2004.
2: Dr. Shubha Venkatesh Iyengar, Vigyan Evam Engineering.
1: डॉक्टर शुभा वेंकटेश अयंगर एक प्रख्यात वैज्ञानिक है जिनके काम ने भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी परिदृश्य को बदल दिया है। उनका करियर स्वदेशी नवाचार की शक्ति का प्रमाण है जो राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के प्रति गहरी प्रतिबद्धता से प्रेरित है।
0: Receiving the Padma Shri, Dr. Iyengar, most significant innovations are Drishti, visibility measuring system, and aviation weather observation system, which have enhanced the safety of all Indian international airports as they are mandatory
2: Shri
0: equipments.
2: T.T. Jagannathan, Marnoprant, Vyapar Evam Udyog, Unke Putra, Shri Mukund Thatte.
1: Shri Jagannathan ko Marnoprant. पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है जब उनके पुत्र रिसीव करेंगे। 9 अक्टूबर 2025 को श्री जगन्नाथन का निधन हो गया था। आप भारत की सबसे बड़ी रसोई उपकरण और कुकवेयर कंपनी टीटी के प्रेस्टिज लिमिटेड का नेतृत्व 5 दशकों से अधिक समय तक उन्होंने किया था।
0: As chairman of the TTK Group, Shri Jagannath built a reputation for quality, innovation,
2: संत निरंजन दास जी आध्यात्म।
1: और अगला नाम पुकारा गया है पद्मश्री के लिए संत निरंजन दास जी, जो विश्व प्रसिद्ध डेरा सचखंड पल्लान के वर्तमान आध्यात्मिक प्रमुख हैं और उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में श्री गोविंद रविदास जन्मस्थान मंदिर सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं।
0: सिंस अगस्त 9, 1994 संत निरंजन दास जी हैज बीन लीडिंग डेरा सचखंड पल्लान। हिज टेन्योर हैज बीन मार्क्ड बाय अनपैरेलल्ड कंट्रीब्यूशंस टू सोशल वेलफेयर। He oversees the Sant Sarvandas Charitable Hospital in Jalandhar, a 150-bed multi-speciality facility providing affordable care.
2: Professor Vijayanathan Kamakoti, Vigyan Evam Engineering.
1: IIT Madras Chennai ke nideshak Professor Vijayanathan Kamakoti सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को मुख्य उत्पादों में बदलने हेतु अपने करियर को समर्पित करने के लिए जाने जाते हैं, जो आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
0: In the academic realm, Shri Kamakoti has guided around 20 PhD and 30 MS by research scholars. He has published over 200 extensively cited papers in international
2: journals. Professor Mangala Kapoor, साहित्य

0: एवं शिक्षा शास्त्रीय संगीत।
1: अगला नाम पुकारा गया है प्रोफेसर मंगला कपूर का। आप एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका संगीतज्ञ शिक्षाविद हैं। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संगीत में म्यूजिक में पीएचडी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया और कई साल लगभग 30 वर्षों से अधिक समय तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सेवा की और वर्ष 2019 में संगीत विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हैं।
2: Professor Kapoor has made significant contributions to Indian classical music through performance and research. She is the author of the 5 books on music, including her autobiography, Seerat.
1: Professor Mangala Kapoor, माननीय राष्ट्रपति से पद्मश्री ग्रहण करते हैं।
0: Dr. Ashok Khade, व्यापार एवं उद्योग।
1: अगला नाम डॉक्टर अशोक खाड़े का। आप डीएलएस ऑफशोर लिमिटेड के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक, जो व्यापक रूप से एक अग्रणी टेक्नोक्रेट उद्यमी के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने भारत की स्वदेशी अपतटीय इंजीनियरिंग क्षमताओं को सुदृढ़ करने और विदेशी संविदाकारों पर निर्भरता को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
2: डॉक्टर खाड़े बिगेन हिज प्रोफेशनल करियर इन
0: 1975
2: मुंबई,
0: साहित्य एवं शिक्षा,
2: ही वर्कड इन स्ट्रक्चर डिजाइन एंड क्वालिटी कंट्रोल।
1: और अब अगला नाम खोकलोवा। डॉक्टर खोकलोवा को भारतीय भाषा शास्त्र विभाग एशियाई और अफ्रीकी अध्ययन संस्थान मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी रूस में आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वे इंडोलॉजिकल अध्ययन में उनको उनके योगदान के लिए दुनिया भर में वो प्रसिद्ध हैं।
2: At present, Dr. Khokhilova is teaching different linguistic courses at Moscow
0: Dr.
2: State University,
0: Prabhakar,
2: which are very popular among students, Hindi
0: Kore,
2: at BA
0: Sahitya
2: and MA in Punjabi.
1: आप एक दूरदर्शी नेता, एक विख्यात शिक्षाविद और ग्रामीण उत्थान के लिए एक अथक योद्धा हैं। डॉक्टर कोरे का जीवन देश की स्वावलंबन और शैक्षिक उत्कृष्टता की यात्रा का दर्पण है।
2: Among his most significant achievements is the establishment and development of 2 universities, KLE Academy and Higher Education and Research, KHER, and KLE Technological University.
0: श्रीमती पखिला लेखथेपी, कला करबी गीत।
1: श्रीमती पखिला लेखथेपी असम की करबी गीतों के प्रसिद्ध गायिका हैं। वर्ष 1978 में उन्हें आकाशवाणी गुवाहाटी में गाने का अवसर मिला, जहां उन्होंने करबी आधुनिक और लोकगीत प्रस्तुत किए। उन्होंने दूरदर्शन गुवाहाटी में भी करबी आधुनिक गीत प्रस्तुत किए।
2: श्रीमती लेखथेपी स्टार्टेड कंपोजिंग ओन सॉन्ग एंड लिरिक्स ऑन करबी मॉडर्न सॉन्ग इन द ईयर 1975 फॉर करबी यूथ फेस्टिवल्स। शी गॉट फर्स्ट प्राइज फॉर हर ओन कंपोजिशन लिरिक सॉन्ग इन करबी यूथ फेस्टिवल इन 1976। अटायर्ड इन अ ट्रेडिशनल
1: पारंपरिक परिधान में, असम के परिधान में, माननीय राष्ट्रपति के समक्ष अपना पुरस्कार ग्रहण करते हुए और उनके परिजन उनके लिए ताली बजाते हुए।
0: श्री रामा रेड्डी मामिदी मरणोपरांत सहकारिता, उनकी पत्नी श्रीमती श्यामला रेड्डी।
1: श्री रामा रेड्डी मामिदी को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है, जो उनकी पत्नी माननीय राष्ट्रपति से ग्रहण करेंगे। आप भारत में व्यापक रूप से आधुनिक सहकारी कानून के मुख्य निर्माता के रूप में जाने जाते थे।
2: श्री मामिदी's achievements have transformed rural livelihoods, established 585 thrift and credit cooperatives benefiting over 2.69 lakh members in Telangana with an annual turnover of 570 crore. श्री मामिदी passed away on 26th October 2025. And the award is
0: Shri
2: received by her
0: Ra
2: wife.
0: Vesu Mani, civil seva.
1: Shri RVS Mani, एक सुपर परिचित सिविल सेवक हैं। श्री मणि ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दी। अपने कार्यकाल के शुरुआती दौर में ही उन्हें चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं का सामना करना पड़ा। श्री मणि एक निष्ठावान सरकारी सेवक के रूप में पूरी तरह से राजनीति निरपेक्ष रहकर कार्य किया।
2: Shri Mani has written 5 books of national importance and has worked as a sincere government servant in an apolitical manner. Credits were given to him for handling several sensitive cases without falling prey to any vested interest.

0: आप वर्तमान मोहिनी अट्टम शैली के पीछे की दृष्टि और प्रेरणा है, चाहे वो इसकी सुंदरता, वेशभूषा, केशभूषा, वाद्य यंत्र, यहाँ तक कि प्रस्तुति पैटर्न का तरीका हो, जो आज मोहिनी अट्टम की पहचान बन चुका है।
1: श्रीमती मेनन from the young age recognized the power of art as a nation's vital soft power and developed her journey to using classical dance as a medium for peace, unity, inclusion and human development.

0: श्री व्लादिमीर मिस्ती वरिशवली मरणोपरांत खेल कुश्ती कोच, उनकी पत्नी श्रीमती मरीन सारिया।
1: 23 जून 2025 को इनका निधन हो गया था और मरणोपरांत व्लादिमीर मिस्तविश्वली को ये पद्मश्री सम्मानित किया जा रहा है, जो एक फ्री स्टाइल कुश्ती कोच थे। उनकी पत्नी ये सम्मान ग्रहण करते हुए माननीय राष्ट्रपति के कार्यक्रम द्वारा।
2: He is remembered as one of the greatest coaches in the world of freestyle wrestling, having trained numerous Olympic medals.
0: Shri Maganti Murli Mohan, Kala, Film, Abhinay.
1: Shri Murli Mohan, एक बहुआयामी व्यक्तित्व हैं जिन्होंने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है और 85 वर्ष की उम्र में भी बहुत सक्रिय रहते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के सदस्य रहे और आंध्र प्रदेश राज्य फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में भी आपने कार्य किया।
2: In 1973, श्री मुरली मोहन entered the film industry and recently completed golden jubilee of his film career. He received numerous honors and played lead roles in over 350 films.
0: श्री मोहन नागर, समाज सेवा।
1: मध्य प्रदेश के जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष और भारत भारती शिक्षा समिति बैतूल के सचिव श्री मोहन नागर को मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और शैक्षिक जागरूकता बढ़ावा देने के लिए व्यापक रूप से पहचाना जाता है।
2: श्री नागर has had led several landmark campaigns. In 2006, he undertook a padyatra to advance education and environmental protection, mobilizing local communities to institutionalize Jal Mahotsav, a river festival in the Machala River catchment area. Dr. Punni
0: Murti Nateshan, Pashu Chikitsa.
1: Dr. Punni Murti Nateshan, a pratishthit Pashu Aushadh Vigyani, शिक्षाविद और ट्रांसलेशन वैज्ञानिक है। उन्होंने 4 दशकों से अधिक के शिक्षण, अनुसंधान और प्रसार कार्य के माध्यम से भारत में एथनो वेटरनरी चिकित्सा को उन्नत किया है।
2: A nationally and internationally acknowledged expert, Dr. Nateshan has served as a trainer and consultant to organizations such as Department of Animal Husbandry and Dairying.
0: Kala Ikat Bunai.
1: और अगला नाम पुकारा गया है श्री सरत कुमार पात्र का। आप एक प्रसिद्ध हर कलाकार शिल्पकार हैं जो इकत बुनाई में अपने योगदान के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। श्री पात्र द्वारा अतिरिक्त पाना तकनीक से बुने हुए कोणार्क वर्ष एक उल्लेखनीय कृति है।
2: श्री पात्र कोणार्क टेक्सटाइल यूजिंग एक्स्ट्रा वेफ्ट टेक्निक इज अनदर रिमार्केबल वर्क। ही सक्सेसफुली डेवलप्ड नियरली 50 शेड्स यूजिंग नेचुरल डाइज। His efforts in creating human figures and calligraphic art based on some famous literary arts. An eminent handloom craftsman who is widely known for his contribution in ikat weaving.
0: Shri Simanchal Patra, Kala Lok Rangmanch.
1: श्री सीमांचल पात्र लोक रंगमंच की दुनिया के एक प्रसिद्ध हस्ती हैं। उन्हें कला जगत में भारत के एक प्रसिद्ध लोक रंगमंच प्रहलाद नाटक की भीष्म पितामह के रूप में जाना और सम्मानित किया जाता है। ये नाटक अपने जीवंत संगीत, नाटकीय कथ्यों और सशक्त पात्रों के लिए जाना जाता है।
2: Born on 7th July 1927, श्री पात्रा hails from a poor rural family. And as per family tradition and culture, he is inclined to Vaishnavism. Shri Patra, from the age of 7, learnt Sakhi Nata, said to be precursor of classical Odissi dance, where male boys act as female Sakhi, from Guru Shri Narsingh Pradhan.
0: Guru Sangyu Sang Ponganar, Kala Lok Kala.

0: गुरु पोंगनर नागा वादिर वेलफेयर कल्चरल क्लब के सह संस्थापक हैं। वो इसकी स्थापना के बाद से लोक नृत्य, संगीत और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए महासचिव के रूप में कार्यरत हैं। और आप सुन पा रहे हैं वो, क्योंकि अपने पारंपरिक परिधान में यहाँ पधारे हैं तो सभी लोग तालियां बजाकर स्वागत कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत सा परिधान है नितिश, पारंपरिक परिधान है, और इन्हें इनकी असाधारण उपलब्धियों और एओ नागा लोक कलाओं के अभिनव योगदान के फलस्वरूप यह प्रसिद्धि मिली है।
1: गद्दे बाबू राजेंद्र प्रसाद, कला अभिनय।
2: श्री गद्दे बाबू राजेंद्र प्रसाद इज ए फेमस तेलुगु फिल्म एक्टर। For over four decades, starting with his debut in 1977, Shri Gadde Babu graced more than 286 films across six languages, even stepping into international waters. His genius lies in his special touch, versatile roles in family stories, social messages and comedy that
0: सभी
2: hit home, blended
0: सभी
2: with skills like
0: करते हुए नितिश वो सभी को घूम के उन्होंने घूम घूम के नमस्कार किया और अब माननीय राष्ट्रपति के पास पहुंचे हैं मुस्कुराते हुए। और पर्दे के पीछे नम्र मेहनती और बिना किसी फिल्मी गॉडफादर के अपने मध्य वर्गीय संस्कारों से जुड़े हुए श्री गद्दे बाबू
1: सुश्री सविता पूनिया, खेल हॉकी।
2: Ms. Savita Punia, the former captain and the current goalkeeper of the Indian women's national field hockey team, is one of India's most acclaimed sports personality. With an unprecedented 308 international caps, she is the first Indian woman goalkeeper to achieve this extraordinary milestone, exemplifying enduring resilience, skill and commitment. Truly the wall.
0: भारतीय महिला राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम की पूर्व कप्तान और वर्तमान गोलकीपर सुश्री सविता पूनिया।
1: श्री कबीन्द्र पुरकायस्त मरणोपरांत लोक कार्य, उनके पुत्र श्री कनद पुरकायस्त।
0: अगला नाम श्री कबीन्द्र पुरकायस्त, जिनको मरणोपरांत ये सम्मान दिया जा रहा है। 7 जनवरी 2026 को आपका निधन हो गया था। आप असम के एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व थे।
2: श्री कबीन्द्र पुरकायस्त ब्रीथ हिज लास्ट on 7th January 2026 and his son is receiving the Padma Shri on behalf of his father.
1: Shri Bhagwan Das Raikwar Marnoparant Khel Bundeli Martial Art, unki putra Shri Rajkumar Raikwar.
0: Agla puraskar bhi Marnoparant Shri Bhagwan Das Raikwar ko diya ja raha hai, jo unke putra माननीय राष्ट्रपति से ग्रहण करेंगे। श्री भगवान दास रायकवार पारंपरिक बुंदेली मार्शल आर्ट्स और लोक कलाओं के संरक्षक तथा गुरु के रूप में व्यापक रूप से सम्मानित हैं।
2: श्री भगवान दास रायकवार इज वाइडली रिस्पेक्टेड एज ए पेट्रन एंड टीचर ऑफ ट्रेडिशनल बुंदेली मार्शल आर्ट्स एंड फोक आर्ट्स इंक्लूडिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ वेपन ट्रेनिंग एंड मूवमेंट प्रैक्टिसेस।
1: प्रोफेसर के रामस्वामी, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग।
0: प्रोफेसर के रामस्वामी कर्पकम अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि एक मानित विश्वविद्यालय है, के कुलपति कुल अधिपति चांसलर हैं। वो कृषि जैव द्रव्य के रूपांतरण, भारत में एनरोबिक माइक्रोबायोलॉजी के संस्थापक तथा प्राकृतिक खेती की दिशा में मृदा जैविकी के पुनरुद्धार के लिए कार्यरत हैं।
2: As a member of planning commission, Professor Ramaswamy pioneered the traditional agriculture through
1: Shri
2: Madhavan Ranganathan,
1: Kala Abhinay.
0: और अब नाम पुकारा गया श्री माधवन रंगनाथन का, और आप सुन पाएंगे श्रोताओं की तालियों की गड़गड़ाहट आप तक भी पहुंच रही होगी। और माधवन सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री के पास पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नमस्कार की मुद्रा में, और अब माननीय राष्ट्रपति की ओर कदम बढ़ाए हैं अपने पद्मश्री को ग्रहण करने के लिए। माननीय प्रधान राष्ट्रपति उनको ये सम्मान दे रही हैं। उनको मैडी के नाम से जाना जाता है, एक सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और लोकप्रिय व्यक्ति हैं।
1: श्रीमती रंजनी एवं श्रीमती गायत्री, कला कर्नाटक संगीत।
2: श्रीमती रंजनी एंड श्रीमती गायत्री आर एमिनेंट कर्नाटक म्यूजिशियंस रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर सस्टेन्ड कंट्रीब्यूशन टू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एज अ परफॉर्मिंग ड्यूओ फॉर नियरली फोर डेकेड्स।
0: श्रीमती रंजनी और श्रीमती

0: गायत्री को भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए तमिलनाडु सरकार ने कलाई मा मणि पुरस्कार, समागान मंथरा पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार उन्हें हासिल हो चुके हैं। प्रतिष्ठित कर्नाटक संगीतकार हैं जिन्होंने लगभग चार दशकों से
1: श्रीमती गायत्री
0: गायन का कार्य कर रहे हैं और बहुत प्रतिष्ठित है इस क्षेत्र में।
2: Shrimati Gayatri along with Shrimati Ranjani have received numerous honors in recognition of their contribution to Indian classical music, including the Kalai Mamami Award from the government of Tamil Nadu.
1: Dr. Anil Kumar Rastogi, Kala Natya Kala.
0: Dr. Anil Kumar Rastogi, kalakar, ek vigyanik aur ek parupkari ka anokha mishran hai. डॉक्टर रस्तोगी ने लखनऊ विश्वविद्यालय से जैव रसायन में एमएससी की डिग्री प्राप्त की और बाद में सूक्ष्म जीव विज्ञान में पीएचडी की।
2: डॉक्टर रस्तोगी हैज बीन वर्किंग इन द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री फॉर 64 इयर्स, हैविंग स्टेज अराउंड 1000 शोज ऑफ 100 प्लेज ऑल ओवर द कंट्री। ही स्टेज्ड हिज 100th प्ले बियॉन्ड द कर्टन इन दिसंबर 2025।
1: प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र नाथ रॉय, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग।
0: प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र नाथ रॉय रसायन विज्ञान के प्रोफेसर, उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय में विज्ञान और कला संकायों में पूर्व डीन और अलीपुर द्वार विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति हैं।
2: बियॉन्ड एकेडमिया ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोशल वर्कर, पर्टिकुलरली फॉर द एफर्ट्स इन अपलिफ्टिंग द कॉमन पीपल। ही हैज डोनेटेड ऑन सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्कूल्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज पेरेंट्स for the development of the society.

0: श्री सतीश शाह मरणोपरांत कला अभिनय, उनके भाई श्री अरविंद मामनिया।
1: श्री सतीश शाह उनको मरणोपरांत ये सम्मान दिया जा रहा है। उनका निधन 25 अक्टूबर 2025 को हो गया था। सतीश शाह रंगमंच, टेलीविजन और सिनेमा में भारत के सबसे सम्मानित और लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक थे, जो अपनी बेमिसाल कॉमिक टाइमिंग, बहुमुखी प्रतिभा और गहरे मानवीय भावों के प्रदर्शन के लिए जाने जाते थे।
2: His roles in the films like जाने भी दो यारो, मैं हूं ना, ओम शांति ओम एंड numerous other mainstream and parallel films।
0: प्रोफेसर प्रतीक शर्मा, चिकित्सा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी।
2: You'll be remembered by many. Next is Professor Pratik Sharma. He's a professor of medicine at the University of Kansas School of Medicine and holds the Lennox Blaylock Endowed Professorship at the Kansas University Cancer Center.
1: प्रोफेसर शर्मा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, एंडोस्कोपी और जीआई कैंसर क्षेत्र में एक विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं। उन्होंने गैस्ट्रोएंट्रोलाइटल रोगों के और कैंसर के रोगों के
0: गुरुनाथ शर्मा
1: के लिए अपना
0: खेल क्रिकेट।
2: The man in blue and also in whites when he plays test cricket today can be seen wearing a formal black bandgala two-piece suit walking up to the president to receive Padma Shri.
1: बिल्कुल, और भारतीय खेल में उनके उत्कृष्ट योगदान को देखते ऋषि शर्मा को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इन्हें अर्जुन पुरस्कार और भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी प्राप्त है।
2: As captain of the international team, Shri Sharma had led India to significant global triumphs, including ICC Men's T20 World Championship 2024.
1: अगला नाम सरदार इंद्रजीत सिंह सिद्धू। आप पंजाब पुलिस से उप महानिरीक्षक के रूप में सेवानिवृत्त एक प्रेरणादायक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्हें व्यापक रूप से एक झाड़ू योद्धा के रूप में जाना जाता है। उन्होंने स्वच्छता के प्रति अपनी मौन लेकिन शक्तिशाली प्रतिबद्धता के लिए राष्ट्रव्यापी प्रशंसा हासिल की है।
2: बॉर्न ऑन 6 जून 1938 इन विलेज गगरपुर डिस्ट्रिक्ट संगरूर पंजाब, श्री सिंधु स्टिल वॉकिंग टॉल टू रिसीव हिज अवार्ड। He joined the Punjab Police as an inspector in 1963. In 1981, he was promoted to the Indian Police Service, IPS.

0: श्री रघुपत सिंह मरणोपरांत कृषि, उनकी पत्नी श्रीमती प्रेमवती।
1: श्री रघुपत सिंह को मरणोपरांत

0: पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। इनका निधन 1 जुलाई 2025 को हो गया था। आप एक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे और पारंपरिक बीजों के संरक्षण और प्रचार के लिए आपको जाना जाता है। मुरादाबाद जिले के समथल गांव में आप जन्मे थे।
1: श्री सिंह पास्ड अवे ऑन 1 जुलाई 2025। ही वाज आल्सो एक्टिव इन सोशल लाइफ। ही कंटेस्टेड द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस फ्रॉम चंदौसी कॉन्स्टिट्यूएंसी एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इन 1980 एंड 1985 बट डिड नॉट विन। लेटर ही वॉन द इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द ब्लॉक पंचायत बिलाड़ी इन 1995 एंड अगेन इन 2020।
0: श्री रघुपत सिंह जी की धर्मपत्नी ये सम्मान ग्रहण करते
2: हैं। श्री खेमराज सुंदरियाल कला हथकरघा बुनाई।
0: उत्तराखंड के सुमरी गांव के एक साधारण परिवार में जन्मे श्री सुंदरियाल ने सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान श्रीनगर उत्तराखंड से हथकरघा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा हासिल किया। खेतों की जुताई से लेकर भारत में वस्त्र परिदृश्य को बदलने तक की उनकी यात्रा अद्वितीय दृढ़ता, अनुशासन और उत्कृष्टता के प्रति समर्पण को दर्शाती है।
1: श्री सुंदरियाल आर्टिकुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड हट्टा टेक्निक इन पंज दरी लूम फॉर रिप्लेसिंग पंजा एंड इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी ऑफ वीवर्स। Also in 1980, he introduced polyester yarn in hand loom under Petrofil project.
2: Dr. Budhari Tati, Samaj Seva.
0: माता शंखिनी महिला उत्थान केंद्र हिरनार के अध्यक्ष डॉक्टर पुथरी ताती आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षित करने और उन्हें स्वरोजगार में आत्मनिर्भर बनाने के अपने निरंतर प्रयासों के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक सेवा गतिविधियों में भी भाग लिया है।
1: डॉक्टर बुधरी विद द हेल्प ऑफ सोशल सपोर्ट स्टार्टेड ट्रेनिंग फॉर वीमेन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बाय कंस्ट्रक्टिंग ए परमानेंट वीमेन्स ट्रेनिंग सेंटर बिल्डिंग इन बारसू by building the Hiranar Women's Upliftment Center. They are working to empower women with self-reliance.
2: Dr. Kumarasamy Thangaraj, Vigyan Evam Engineering.
0: Dr. Thangaraj ke anuvanshik adhyan ने पहली बार यह स्थापित किया कि अंडमान जनजातियां प्रथम आधुनिक मानव हैं जो लगभग 65,000 साल पहले अफ्रीका से बाहर चले गए थे। यह प्रारंभिक मानव प्रवासन के स्पष्टीकरण में एक बड़ी सफलता है।
1: डॉक्टर कुमारस्वामी थंगराज इज द सीएसआईआर भटनगर फेलो एट द सीएसआईआर सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद।
2: मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा उनकी पत्नी श्रीमती हीरामणि टूडू।
0: श्री रविलाल टूडू को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। आपका निधन 4 जून 2026 को हो गया। आप वर्धमान पश्चिम बंगाल से संथाली साहित्य के लेखक थे जिन्होंने संथाली नाटक और भाषा संरक्षण में बहुत योगदान दिया है। उनकी धर्मपत्नी पद्मश्री माननीय राष्ट्रपति से लेते हुए।
1: Shri Tudu was awarded with Sahitya Academy Award in 2015 for his play Parsi Khate in the Santhali language category. In addition to his national recognition, he received the Banga Bhushan Award from the Government of West Bengal in 2022, honoring his significant contribution to Santhali literature and culture.
2: Shri Naresh Chandra Dev Verma, साहित्य एवं शिक्षा।
0: और अब पद्मश्री में अगला नाम पुकारा गया है श्री नरेश चंद्र देव वर्मा का। आप त्रिपुरा राज्य में साहित्य, भाषा, संस्कृति और सामाजिक विषयों के क्षेत्र में अत्यंत प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति हैं जिनका प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से व्याप्त है। इन क्षेत्रों में उनके योगदान ने संपूर्ण समुदाय पर एक गहरा और चिरस्थायी प्रभाव छोड़ा है।
1: At present, Shri Verma serves as the president of the Kokoborok Sahitya Parishad, a leading literary organization dedicated to the promotion and development of the Tripuri language.
2: Shri Shashi Shekhar Vempati, Sahitya Evam Shiksha.
0: श्री शशि शेखर वेम्पटी डीप टेक फॉर भारत फाउंडेशन के सह संस्थापक हैं। इससे पहले वो भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती के सीईओ के रूप में कार्य कर चुके हैं। इन्हें दूरदर्शन और आकाशवाणी के आधुनिकीकरण में इनके क्रांतिकारी नेतृत्व के लिए अपार प्रसिद्धि प्राप्त है।
1: एज द यंगेस्ट सीईओ ऑफ प्रसार भारती बिटवीन 2017 टू 2022 श्री वेम्पटी रोज टू द चैलेंज बाय लॉन्चिंग द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स।
0: श्री चिरंजी लाल यादव उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के प्रसिद्ध पीतल उत्कीर्णक हैं। आपने विदेशों में भी अपनी कला का प्रदर्शन किया है। वर्ष 2010 में ढाका बांग्लादेश गए और 2015 में उन्होंने भारत सरकार के हस्तशिल्प निर्यात वर्धन परिषद के माध्यम से फ्रैंकफर्ट जर्मनी में अपनी कला का प्रदर्शन किया।
1: श्री यादव सर्वड एज मास्टर क्राफ्ट्समैन फ्रॉम 1980 टू 1982। ही हैज टॉट ब्रास एनग्रेविंग टू 30 चिल्ड्रन इन पुरी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा। ही आल्सो ट्रेन्ड 10 चिल्ड्रन इन कार्विंग वर्क इन 2011 थ्रू द ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की धुन सभागार में मौजूद नमहा रेजिमेंट सेंटर के मिलिट्री बैंड द्वारा प्रस्तुत बैंड मास्टर सुबेदार बीपी गोरुंग के नेतृत्व में।
1: और व्हाट अ वंडरफुल इवनिंग फॉर द रिसिपिएंट्स व्हेन दे केम टू दिस हॉल दे वर स्टैंडिंग टॉल बट नाउ दे आर वेयरिंग दोस मेडल्स ऑन देयर चेस्ट व्हाट अ प्राउड मोमेंट।
0: गर्व के पल होते हैं नीतीश ये और ज़िंदगी ये मेमोरीज रहती हैं। और अब माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गणतंत्र मंडप से बाहर प्रस्थान करते हुए सभी को नमस्कार करते हुए
1: एंड ऑफ कोर्स द रिसिपिएंट्स विल नाउ स्टे पुट फॉर अ सेरेमोनियल फोटोग्राफ विद ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
0: इस समय हम देख रहे हैं सभी लोग अपने अपने स्थान पर पुनः बैठ गए हैं। सभागार का वातावरण गर्व प्रेरणा और सम्मान की भावना से ओतप्रोत है। आज सम्मानित सभी विभूतियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। और इसी के साथ वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों के दूसरे नागरिक सम्मान समारोह का सफलतापूर्वक समापन हुआ। यह समारोह राष्ट्र की ओर से उन महान व्यक्तित्वों को नमन है जिन्होंने अपने कर्म और योगदान से भारत को समृद्ध बनाया है। आकाशवाणी की ओर से सभी सम्मानित विभूतियों को हार्दिक बधाई। आप सुन रहे थे राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से पद्म पुरस्कार समारोह 2026 का सीधा प्रसारण। तकनीकी प्रमुख श्री जितेंद्र भरूथी के साथ तकनीकी टीम के सदस्य थे शक्तिधर ध्यानी, अशोक कुमार मिश्रित, सुमित कटियार और हेमराज मीना। ओबी इंचार्ज थे मधुलिका श्रीवास्तव। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार। और अब अपने साथी कमेंटेटर नीतीश अरोड़ा के साथ मैं शालिनी मित्तल आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रपति भवन से भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमा में उपस्थिति में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव विवरण दे रहे थे शालिनी मित्तल और नीतीश अरोड़ा।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज, शाम के 6:10 और 14 सेकंड, और ये वक्त है आपके प्रिय प्रोग्राम सदाबहार गीतों का।

जिंदगी के सफर में जब फूलने फुलाने की बात चली है तो जिंदगी जीने के लिए कभी कुछ भूल जाना बेहतर होता है तो कभी कुछ याद रखना। कहते हैं इन रास्तों में कि जिंदगी के रास्ते खत्म नहीं होते, मंजिलें वही हैं जहां आपकी ख्वाहिशें थम जाएं। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है सदाबहार।

0: जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
1: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा, पर कोसी को हम कैसे बचा सकते हैं?
0: आमा, इसका जवाब तेरे पास है।
1: मेरे पास?
0: हाँ, तेरे पास। आमा, तुम इन सबको बताओ कि कोसी नदी बनी कैसे है?
1: कोसी बनी कैसे? ये कैसा सवाल है? क्या तुम नहीं जानती कि हमारे पेनाथ जंगल के बांज बुरांज के घने पेड़ प्राकृतिक जल को संचित करते हैं और उसी से कोसी का जन्म हुआ?
2: और क्या?
1: है।
0: बिल्कुल ठीक। ऐसे में अगर हम जंगल काटेंगे तो कोसी में पानी घटेगा या बढ़ेगा?
2: घटेगा।
1: अब हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई।
3: खाली हमारे समझने से क्या होता है? हम अकेले क्या कर सके हैं?
0: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
1: चलो, इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
2: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो
0: चलो चलो
2: चलो, जल्दी चलो, सबको बताते हैं।

और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांवों में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, खीराकोटा, कांटली आदि गांवों में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। पहला गीत भूल भुलैया फिल्म से, आवाज अरिजीत सिंह की, समीर का गीत और प्रीतम का संगीत।

अरुणिता कांचीलाल और शाश्वत सिंह की आवाजों में अब सुनिए सीतारमन फिल्म का ये नगमा, कुमार का गीत और संगीत विशाल चंद्रशेखर का।

कार्यक्रम का अंतिम नगमा आर्टिकल 15 से, आवाजें यसीर देसाई और आकांक्षा शर्मा की, रश्मि विराग का गीत और पीयूष शंकर का संगीत।

0: गीत के साथ ही चित्रपट संगीत संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, वक्त है अंतराल का।
1: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 MHz पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से।

खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहे उस वक्त।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
1: 870-001-4242।
2: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से हैं। ये पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और पार्श्व गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किए गए। सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए काम करने का आह्वान किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के स्नातक दाखिलों के परिणाम आज घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस साल प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार किया। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर्स के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक एलपीजी कैरियर, एक कच्चा तेल टैंकर

0: नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
1: भारतीय नौसेना के आधुनिक स्टेल्थ युद्धपोत INS उदयगिरी और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के दौरान कल वियतनाम के नारोंग बंदरगाह पहुंचे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच घनिष्ठ और दीर्घकालिक संबंधों तथा बढ़ती हुई समुद्री साझेदारी को दर्शाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप ए में पुर्तगाल का मुकाबला होगा उज्बेकिस्तान से। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा और वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में कल सुबह 7:30 बजे कोलंबिया का सामना कांगो से होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 7:05 हुए हैं। वक्त है कार्यक्रम विवरण का। कार्यक्रम विवरण में पहले सुनिए आज की इस सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में। रात 8 बजे सुनिएगा कार्यक्रम सुर्खियों में। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे रात 8:15 बजे और रात 10 बजे। उर्दू प्रोग्राम कहकशा आप सुनेंगे 9:30 बजे। आज का मुख्य आकर्षण है महफिल समा। 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे सलीम अल्लाह वाले का तबला वादन, ताल तीन ताल। ये थे आज की सभा के शेष कार्यक्रम। और अब हम आपको बता दें कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। पहले जानकारी देते हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। कल 11 बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण होगा जिसमें 11 बजे आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल दोपहर 12 बजे और 2:30 बजे। 12:30 बजे संग्रहालय के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे धारावाहिक भुवन मोहिनी की 6वीं कड़ी। कल दोपहर 1 बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 बजे लोक संगीत, 2:45 बजे सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। ये चारों ही कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

फिल्म संगीत सुना जा सकेगा कल दोपहर 2 बजे, शाम 5:33 पर, 6:30 बजे और रात 8:15 बजे। कल शाम 6 बजे प्रसारित होगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। सुर्खियों में ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल रात 8 बजे। कल रात 9:30 बजे चर्चा का विषय है कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। कल रात 10 बजे सुनिएगा हसन सआदत मंटो का लिखा नाटक हतक, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। कल रात 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे संगीता गोस्वामी का ख्याल गायन राग होगा यमन। ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कल के कुछ मुख्य कार्यक्रम। अब एक नजर डालते हैं आकाशवाणी भोपाल से कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों पर। कल सुबह 7:20 पर सुनिएगा दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। 8:30 बजे सुनिएगा फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। 9:15 बजे सुगम संगीत में हम आपको सुनवाएंगे रमेश पुरी गोस्वामी के गाए गीत। क्षेत्रीय समाचार एकांश भोपाल का कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में आप सुन सकेंगे कल सुबह 9:30 बजे। जिले की चिट्ठी प्रसारित की जाएगी कल सुबह 10 बजे और 10:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम महिला संसार। कल सुबह 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में हम आपको सुनवाएंगे सरवर हुसैन का सारंगी पर बजाया राग नट भैरव। ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कल सुबह के कार्यक्रम। और हम आपको बता दें कि आकाशवाणी भोपाल से कल शाम 7:21 पर ग्राम सभा में आप सुनेंगे डॉक्टर दिलीप जाट से ली गई भेंटवार्ता, विषय है सटीक कृषि।

ये तो उन्नत उपकरणों के खेत बचाव अभियान में भूमिका। और श्रोताओं, हम ये भी बता दें कि आज शाम 7:21 पर आप ग्राम सभा में सुनेंगे डॉक्टर मीना यादव से ली गई भेंट वार्ता, जिसका विषय है सतत कृषि के विकास में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन की भूमिका। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 7:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समा

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए 65 पद्म पुरस्कार। प्रदेश के भगवान दास रायकवाड़ को मरणोपरांत और मोहन नागर को समाज सेवा के क्षेत्र में मिला पद्मश्री सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएएस प्रशिक्षु अधिकारियों को दिया नागरिक देवोभव का मंत्र। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 5,960 करोड़ रुपए की योजनाओं को मिली मंजूरी। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि, बोले धारा 370 हटाकर साकार हुआ एक विधान का सपना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में 2026 वर्ष के लिए 65 पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण, 56 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में पूर्व केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन, टेनिस स्टार विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और गायिका अलका याग्निक का नाम शामिल रहा। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के समाजसेवी मोहन नागर को समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। वहीं प्रदेश के बुंदेली मार्शल आर्ट के जनक भगवान दास रायकवाड़ को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बधाई देते हुए कहा कि समाज सेवा एवं खेल जगत में इनके उल्लेखनीय योगदान ने न केवल मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है बल्कि समाज और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस 2024 बैच के 183 अधिकारी प्रशिक्षुओं से संवाद किया। उन्होंने युवा अधिकारियों से विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने के लिए राष्ट्र निर्माण में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ योगदान देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में श्री मोदी ने युवा अधिकारियों को नागरिक देवोभव का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि हर फाइल के पीछे लाखों लोगों की आकांक्षाएं और समस्याएं जुड़ी होती हैं, इसलिए शासन को संवेदनशील, जवाबदेह और समावेशी बनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 5,960 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 वर्षों तक जारी रखने के लिए करीब 1,740 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में 225 शासकीय माध्यमिक शालाओं को हाईस्कूल और 300 हाईस्कूलों को हायर सेकेंडरी में उन्नयन करने की योजना को सैद्धांतिक स्वीकृति मिली, जिस पर 635 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च होंगे।
1: सुजालपुर में लॉ कॉलेज के लिए एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित करना तथा उसके लिए पदों की स्वीकृति दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग में अगले 3 वर्षों में 315 स्कूलों को हाई स्कूल में उन्नत करना तथा 214 हायर सेकेंडरी के नए स्कूलों को उन्नत करने का कार्यक्रम डिसाइड हुआ है, जो 3 वर्षों के अंदर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा।
0: इसके अलावा किसानों को 0% ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण देने की नई शर्तों को मंजूरी दी गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभावों से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। उन्होंने बताया कि देश में अब तक लगभग 43% कम बारिश हुई है और लगभग 315 जिले सामान्य से कम बारिश से प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें 111 जिले उच्च प्राथमिकता वाले हैं।
2: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है 2 जुलाई तक के सप्ताह में कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। हम जो प्रभावित जिले कितने हो सकते हैं उसका आकलन भी किया गया है और अब तक जो संभावना है 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज प्रदेश सहित पूरे देश में भाजपा द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का सपना एक देश एक प्रधान और एक विधान था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 हटाकर साकार किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य सरकार आगामी मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसके लिए प्रदेश भर से 10 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रदेश कार्य समिति की घोषणा कर दी है, जिसमें 106 सदस्यों को शामिल किया गया है और 41 नेताओं को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। कार्य समिति में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा को जगह मिली है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के स्नातक दाखिलों के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के मुताबिक इस वर्ष परीक्षा में 15 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 11 लाख से ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। भोपाल के आचारपुरा स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में आज 5 दिवसीय आदिरंग शिल्पकार महोत्सव का समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए और उन्होंने जनजातीय शिल्पकारों द्वारा विकसित नवाचारपूर्ण उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन कर शिल्पकारों से संवाद किया। महोत्सव में प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए 140 से अधिक जनजातीय शिल्पकारों ने अपनी पारंपरिक कला और हस्तनिर्मित उत्पादों का प्रदर्शन किया। प्रदेश की पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने आज मंत्रालय में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। मंत्री ने निर्माण कार्यों में देरी और लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए लापरवाह ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन सुविधा से जुड़े विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के तहत कॉलेज लेवल काउंसलिंग राउंड के महाविद्यालय आवंटन जारी कर दिए हैं। इस राउंड में प्रदेश के 129,265 विद्यार्थियों को विभिन्न महाविद्यालयों में सीट आवंटित की गई है, जिनमें 94,703 स्नातक और 34,562 स्नातकोत्तर विद्यार्थी शामिल हैं। विभाग ने विद्यार्थियों से 30 जून तक प्रवेश शुल्क जमा करने का आग्रह किया है। भोपाल में अवैध कफ सिरप निर्माण और सप्लाई नेटवर्क के मुख्य मास्टरमाइंड राहुल कुशवाहा उर्फ सलमान को STF ने तिरुवनंतपुरम से गिरफ्तार किया है। लंबे समय से फरार आरोपी वहां पहचान छिपाकर रह रहा था, जिसे तकनीकी निगरानी और खुफिया इनपुट के आधार पर पकड़ा गया। भोपाल लाकर विशेष न्यायाधीश डॉक्टर मुकेश मालिक की अदालत में पेश किए जाने पर उसे 27 जून तक रिमांड पर भेजा गया है। अब बात करते हैं मौसम की। मानसून की रफ्तार धीमी होने से प्रदेश में सामान्य से 52% कम बारिश दर्ज की गई है। हालांकि आज बड़वानी, खरगोन, नर्मदापुरम और धार जिले में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने जबलपुर, मंडला, दमोह और उमरिया में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश

अनेक जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी के कृषि विज्ञान केंद्र में खरीफ 2026 वर्ष के तहत सोयाबीन की उन्नत खेती पर प्रशिक्षण सह संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सागर की पुलिस प्रशिक्षणशाला पीटीएस में नव आरक्षकों के बुनियादी प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ हुआ। राजगढ़ के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में आईटीआई और 12वीं उत्तीर्ण छात्रों के लिए द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। कटनी कलेक्टर ने अस्पतालों में पर्याप्त एंटीवेनम इंजेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपील की है कि सांप काटने पर झाड़फूंक के बजाय अस्पतालों में इलाज कराएं। अशोकनगर में जनसुनवाई में कलेक्टर साकेत मालवी ने आम जनता की समस्याओं और शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिए। नर्मदापुरम की ग्राम पंचायत उमरिया में आयोजित जन कल्याण शिविर में विधायक प्रेम शंकर वर्मा ने ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण कराया। और किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत मुख्यमंत्री किसान कल्याण डैशबोर्ड की मई 2026 की रैंकिंग में झाबुआ जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए 65 पद्म पुरस्कार। प्रदेश के भगवान दास रायकवार को मरणोपरांत और मोहन नागर को समाज सेवा के क्षेत्र में मिला पद्मश्री सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएएस प्रशिक्षु अधिकारियों को दिया नागरिक देवो भव का मंत्र। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 5,960 करोड़ की योजनाओं को मिली मंजूरी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

जय जवान जय किसान। चौपाल कार्यक्रम सुनबे बारे सगई भैया बहनन खां रूबी बहन की राम राम। और भैया बहनों कैसे हैं आप सब? और भैया हम तो जो ही उम्मीद कराते हैं कि हमारे सगाई भैया अच्छे हों, स्वस्थ हों, और भैया जो कार्यक्रम है आप चौपाल वो सुन रहे हों। कैसे कि भैया जब आप कार्यक्रम को सुनाते हैं और बाकी समीक्षा में बताते हैं, तवही तो जो कार्यक्रम में चार चांद लगाते हैं और हमारे द्वारा जो बताई गई जो हम जानकारी देते हैं बाकी बारे में भी पता चलाते कि भैया हमारे जो भैया हैं वे सही से सुन रहे हैं और भी इनको फ़ायदा भी हो रहा है जानकारियों से। तो भैया आप ऐसा कहीं भैया बहन उनको स्वस्थ हो वो बहुत ही ज़रूरी है। और भैया देखो जैसे मौसम चला थे बा हिसाब से अपन के लाने अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखना चाहिए, है कि नहीं भैया? और भैया देखो आज अपन अपने कार्यक्रम में बात करें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। देखो भैया जे तो अपन सभी जानते हैं कि अपनी जो केंद्र सरकार है बने ऐसी मुलक सी योजनाएँ चला रखी हैं जैसे कहा है कि आप जो देश के लोग हैं बिन को जो है विकास हो और बिन को जो जीवन स्तर है वो बेहतर हो सके। और भैया देखो अब अपन बात करें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की, तो भैया जो एक भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक बहुत ही अच्छी बीमा योजना है जाके तहत कहा है भैया कि जामे एक तो कहा है कि जाके जो प्रीमियम है वार्षिक वो बहुत ही कम है, लगभग जो मान लो भैया के 436 रुपये जामे साल के जमा होते हैं। और भैया जा कहा है कि जो बीमित जो जन व्यक्ति जो जाको बीमा करवाया वो बाको कहा है कि मृत्यु होवे पर बाको जो नॉमिनी हैं बाके लाने 2 लाख रुपया की आर्थिक सहायता करी जाते हैं। और भैया देखो जहाँ में जो है आयु सीमा की अगर अपन बात करें तो वो है 18 से 50 वर्ष के बीच की आयु वाले व्यक्ति जहाँ में भैया आवेदन कर सकते हैं। और भैया ये जो ये कवर है वो 55 वर्ष की आयु तक जारी रखो जा सकते हैं। भैया जहाँ में जो प्रीमियम तो आपने आपको बता ही दो कि 436 रुपया प्रतिवर्ष जहाँ में जमा होते हैं। और भैया कोनू भी कारण से अगर धारक की जैसे मृत्यु बीच में ही हो जाते हैं

तो बाकी जो भी परिवार में माने जो नॉमिनी बना हुआ है बाकी लाने 2 लाख रुपये मिल जाते हैं। और भैया जामे का है कि कोनू भी व्यक्ति जो है पात्र हो सकते हैं। और भैया जामे का है कि एक तो भारत को वासी होना चाहिए वाके लाने। और भैया जामे का है जैसे अगर जामे अपन जय योजना में जुड़ जाते हैं तो जामे का है कि जैसे अपन बैंक खाता है तो बामे अपन को जैसे बार बार किस्त जमा करना नहीं जाना है। अपन अगर जो बैंक से जो कह देते हैं जामे जो ऑटो डेबिट जो फैसिलिटी होते जाने की भैया स्वतः जमा सुविधा, तो भैया बासे भी कहा है कि जो अपनी जो राशि है वो जमा हो जाते है वो तो अपन के लाने बैंक में जाना नहीं पड़ाते। बस जो ही जरूरत है कि अपन के लाने का करना है कि बैंक में जो है अपन के लाने जो ही कहना है कि जामे ऑटो डेबिट फैसिलिटी अपन के लाने दे दे, तो भैया वो बस जो ज़रूरत है कि अपन अपने बैंक खाता को जो चेक करते रहें कि बामे इतनी राशि है कि नहीं, जहाँ बात को अपन के लाने ध्यान रखना है। और भैया देखो ये जो किस्त कटत है वो 1 जून से 31 मई तक के बीच में जो किस्त कट जाते है। और भैया जो नवीनीकृत जामे हो वो हर साल होते है। और भैया जाब्दी के दौरान जो है आप जो है ऑटो डेबिट के माध्यम से या आप अपने बैंक खाते में पैसा जमा करके जो प्रीमियम है बाय जमा कर सकते हैं। तो भैया जो भी हमारे भैया बहन अभी तक जा से नहीं जुड़े हैं तो वो जा से जुड़ जाएं, और जा से जुड़वे के लाने आपको बैंक में खाता होना ज़रूरी है। और भैया आप कोनू भी बीमा कंपनी से निजी या सरकारी बैंक कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं। भैया आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीका से होते हैं, तो भैया आप जो है जाके पोर्टल पे जाके आप जा में आवेदन कर सकते हैं और भैया जाको लाभ ले सकते हैं। और भैया हम जो सोचे थे कि आप जो बात को समझ गए होंगे, और जो भैया लाभ ले रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है, जो नहीं ले रहे हैं वो जा से जुड़ के जेको लाभ लेंगे। और भैया अब हम अपनी चर्चा को इतना ही दे देते हैं विराम। और भैया देखो अब अपन बात करें स्वास्थ्य की, तो भैया अपन देखते हैं कि जब मौसम बदलत है या मौसम में ठंडक हो जाते बास में मच्छरन को प्रकोप बहुत बढ़ जाते हैं, ये तो आपने भी देखो होगा। और भैया देखो मच्छरन से अपन को अपाव बचाव तो करना ही है, संगे भैया आप जो चौपे चौके आप पशु हैं बिनको सोई ध्यान रखना है। तो भैया मच्छरन से बचवे को देखो अपन के लाने तो सबसे अच्छा तरीका जो ये कि अपन जो है मच्छरदानी को उपयोग करें और भैया पूरी बांह के कपड़ा पहने, यानी कि जहाँ तक संभव हो शरीर को ढक कर रखें, जैसे कहा है कि मच्छर काटेंगे नहीं। और भैया देखो अब अपन घर की बात करें तो अब ये जो घर की खिड़की दरवाजे हैं वे सुबह शाम के टाइम पे जो है इनको बंद रखें, और भैया खिड़कियों पे जो है जाली लगवा लें, जैसे कहा है मच्छर अंदर प्रवेश ना कर सकें। और भैया ऐसे ही अब जो पशु हैं बिनकी सार है बामे भी अपन के लाने जो बात को ध्यान रखना है कि बिनकी सार में सुबह और शाम के टाइम पे जो नीम की पत्तियाँ होते हैं बिनको धुआं कर दें, जैसे कहो कि जो मच्छर हैं वे फैलेंगे नहीं। भैया देखो मच्छरन से क्या होते हैं कि मलेरिया हो जाते हैं, अब भैया देखो अपन के लाने मलेरिया हो जाते हैं मच्छरन से, तो भैया अपन को मच्छरन से बचाव तो करना ही है। और भैया देखो वैसे तो जो खतरनाक बीमारी नहीं है पर भैया जो खतरनाक हो सकता है जब जो डेंगू मलेरिया के रूप में बदल जाते हैं, तो अपन को एक तो मच्छरन से बचाव करना है और दूसरा जो है सही तरीका से अपन के लाने उपचार करना है। अब ये देखो अपन बात करें डेंगू मलेरिया की, तो भैया जो जो डेंगू मलेरिया है वो जो है एक मच्छर के काटवे से होते हैं। और भैया ये जो मच्छर है वो साफ पानी में पनपत है, जैसे अपन देखते हैं कि गंदा पानी अपने घर के आसपास या इतने उतने भरो रहते हैं भावे मच्छर पनपत रहते हैं, पर जो जो डेंगू को मच्छर है वो साफ पानी में पनपत है। तो भैया जैसे अपने घर में अपन देखते हैं अपने डिब्बा बाल्टी टंकियाँ घर में भरी रखी रहते हैं, तो भैया अपन को क्या करना है कि बिन को ढककर रखना है, ऐसे कि खुलो छोड़ देंगे तो वहाँ में जो डेंगू मच्छर के लार्वा हैं वे पैदा हो जाएंगे। और भैया देखो जब वे पैदा हो जाएंगे तो मच्छर होंगे तो अपन के लिए काट लेंगे अपन के लाने डेंगू हो जाओ, तो जब बात को अपन को ध्यान रखना है कि घर के जो भी बर्तन हैं पानी के बिन को ढककर रखें, खासतौर से जो बड़ी टंकियाँ होते हैं बिन को। और संगे भैया देखो कि जो अपने छत पे कूलर जो पुराने कूलर रखे रहते हैं कुछ डिब्बा बाल्टी जो और पुराने टायर रखे रहते हैं बिन में भी पानी जमा हो जाते, तो भैया छत की भी साफ सफाई रखें और कहीं पे भी पानी जमा ना होने दें। ऐसे भैया अपने जो अब अभी गर्मी पड़ रही है तो घरन में चलना है कूलर,

तो भैया बा कूलर को पानी भी भैया समय समय पर साफ करा तो रहे हैं। काहे से कि अगर अपन समय पर कूलर को पानी साफ नहीं करेंगे तो बा में से जो है बदबू भी आएगी और भैया बा में मच्छर भी पनपते हैं। तो भैया समय समय पर कूलर के पानी को भी साफ करा तो रहे हैं। जिन सभी बातन को ध्यान रखें, जैसे कि भैया देखो जब अपन जिन सभी बातन को ध्यान रखेंगे तो भैया मच्छर पनपेंगे ही नहीं, और भैया जब मच्छर नहीं पनपेंगे तो अपन भी स्वस्थ रहेंगे, और भैया अपने घर के अलावा अपने आस पास भी जो है स्वच्छता रखें। और अगर जैसे अबे तो पानी इतने नहीं बरसो है और अब पानी बरसेगा तो अपने घर के आसपास कितनों न कितनों सड़क किनारे गड्ढन में जो है पानी भर जाते हैं, तो वहाँ में मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो जी बात को अपन को ध्यान रखना है कि या तो गड्ढन को जो है भरवा दें, और नहीं तो भैया बा को ऐसी जो मच्छर की मारे वाली जो भी दवाई आते हैं बा को छिड़काव कर दें। तो ये ज़्यादा तरह से अपन जो है मच्छरन से बचकर अपन डेंगू मलेरिया से बच सकते हैं। और भैया अब अपन जी चर्चा को इतना ही देते हैं विराम, और अब हो चलो है कार्यक्रम चौपाल से चलवे की बेरा। तो अपन सगे भैया बहन से ले लेते हैं आज्ञा, तो रूबी बहन को देव आज्ञा। राम राम, जय जवान।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: क्या कर रहा है?
2: इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहा
2: है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
1: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: जय जवान जय किसान।
5: किसान वाणी कार्यक्रम सुनवे वाले सगे भैया बहन खां मंगू भैया की और
4: रूबी बहन की राम राम। देखो किसान भैया बहनों, अपन जो है खेती कराते हैं, है ना, और अब टाइम है खरीफ की फसल की बुवाई को, तो भैया अपन देख रहे हैं कि जा टाइम पे अभी बरसात नहीं हुई है, जितने बरसात हो जानी चाहिए अभी बरसात में हो रही है देरी, तो भैया अपन भैया से जो ही कहेंगे कि जैसा में जो है पूरी फसल की जो है वे तैयारी करके रखें, जैसे क्या है जैसे ही बारिश हो अच्छी तो आप जो है बुवाई कर दें, है ना। जिन बातों
5: हाँ, मतलब खेत की तैयारी कर लें, बीज की व्यवस्था कर लें, खाद की व्यवस्था कर लें, बीज उपचार की दवा है भूखों भी अपन लेकर रख लें, मतलब कहने का मतलब यह है कि सब पूरी तैयारी कर लें, और वहाँ में जैसे ही जो है पानी बरस जाए उसके बाद अपन जो वो नहीं कर सका।
4: हाँ वही सही है,
5: मतलब जो है कि अपन पहले से अब बारिश भाई फिर अपन बीज अपने पास नहीं है, बीज उपचार की दवा भी नहीं है, खाद भी नहीं है, तो फिर अपन और
4: देर हो चली जाते
5: हैं, तो समय निकल जाते हैं, उसके बाद फिर पैदावार जो है कम होते, तो ये अपनी की तैयारी अपन जो है इसमें आसानी से कर सकते हैं। चयन कर लें कि अपने पास जैसे चार खेत हैं, तो अपन का ये खेत में कौन सी फसल
4: करना है, काहे से कि बरसात भी कम हुई है जैसा समय।
5: हाँ बिल्कुल सही बात,
4: और आगे को भरोसा नहीं है कितने पानी बरसे हो कितने नहीं।
5: पिछली बार मक्का करी तो मक्का खेत में सोयाबीन कर लो।
4: हाँ वही
5: वाले मक्का कर लो, ऐसा कहा है कि हेर फेर करके जो है अपन खेती करना चाहिए, है ना, हेर फेर करके खेती करके हो जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वह जो है पूरी तरह से बनी रहते
4: हैं,
5: वहाँ में पैदावार भी जो है बिलात अच्छी होते, तो
4: सही
5: जो काम को भाई किसान मेन कराने करना चाहिए।
4: हाँ भैया करना चाहिए, और भैया देखो अब अपन जो है
5: भैया हम एक काम और भी कर सकते हैं भैया,

0: वैसे अपन जो है गड्ढा लगा गड्ढा खोद कर डाल
1: हाँ
0: दें,
1: हाँ
0: खाद की व्यवस्था कर लें, तब तब जाए वो ओबामा जो अपन कौन से गड्ढा में कौन से फलदार पेड़
1: फलदार
0: लगाने
1: पेड़
0: हैं,
1: लगाना
0: क्या
1: है।
0: समय का है कि अपन फलदार पेड़ भी जो है अपनी जो खाली जमीन है या मेड़ पे कहीं भी अपन लगा वो चाहते हैं तो अपन जो है जही समय में फलदार पेड़ भी अपन जो है लगा सकते
1: लगा
0: हैं।
1: सकते हैं, तैयारी बाकी कर
0: तैयारी
1: सकते
0: बाकी
1: हैं
0: आप
1: अब
0: वैसे
1: ऐसे।
0: कर लें, लेकिन है ना ये भी चयन कर लें कि कौन सी जगह अपन कौन सा पेड़ लगाने हैं, लेकिन
1: हाँ
0: लगाएं अपन का फलदार पेड़ औषधीय पेड़ ऐसे
1: और
0: लगाएं, आम है आंवला है नींबू है,
1: जो कि अपने पर्यावरण को भी अच्छा रखें
0: हाँ
1: और
0: और
1: अपने
0: अपने
1: जो
0: दाने भी
1: खेत की
0: फायदा
1: नमी
0: रहे हैं,
1: बनाए रखें,
0: आम है जामुन
1: जामुन
0: है
1: है
0: जो छाए वाले
1: जिन।
0: पेड़ भी लगाएं, तो
1: हाँ
0: ऐसे पेड़ अपन जो है लगा सकते हैं, जामफल है, तो ये सब पेड़ अपने उसे कहा तैयारी कर लें, और तैयारी करने के बाद में अपन जैसे ही बारिश हो जाए पौधा ला के नहीं अपन जो रोपाई कर सकते हैं, और
1: रुपाई
0: पौधा भी अपन चाहे तो अभी भी ला के अपने पास रख सकते हैं, और बाकी का है कि 10-15 जना जो है देखभाल अपन करने हैं समय पर पानी वानी देते
1: पानी गिर
0: रहे,
1: जाएगा तो बरसात में
0: हाँ
1: फिर वहां में सिंचाई
0: बस
1: की जरूरत नहीं
0: हाँ
1: पड़ेगी, अपना ये
0: सिंचाई
1: वहां बड़ बाड़ोगी अच्छी होत रहेगी,
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो जो
1: है
0: किसान
1: ना।
0: भैया के लान देखो जैसा समय में काम जे भी कर वो बहुत उचित है कर
1: हाँ तो
0: सकते
1: भैया
0: हैं,
1: देखो, समय पे काम कर लेंगे तो समय पे अपनी बुआई हो जाएगी और समय पे ही अपन के लाने अच्छा लाभ भी मिलेगा। कैसे कि जो काम अपन समय पे कराते हैं वो अपन के लाने फायदा
0: और
1: देते हैं।
0: किसान भैया खेती करते हैं खेती के संग पशु भी पालते हैं, अब पशुपालन जो कराते हैं उन भैया के लाने जो आवश्यक है कि अपने जो पशुओं में जैसे जे महीना में टीकाकरण होते हैं जो बरसात में हो वाली बीमारी है ना उनको टीकाकरण होता है, गलघोटू है मुंह पका
1: मुंह
0: है
1: पका
0: खुरपका
1: खुरपका
0: है
1: है।
0: सनेला है इनके सबके का टीका लगाते हैं, तो कहा है जई महीना बरसात के पहले लग जाते हैं, तो
1: हाँ
0: बात यह कहा है कि बरसात में जो हो वाली बीमारी पशुओं में नहीं
1: तो
0: होते, तो जो
1: जे
0: काम को
1: भी
0: अपने किसान भैया कर वो
1: कर कर
0: जल्दी
1: सकते हैं
0: जरूरी है
1: जैसे, है
0: ना,
1: ना, जरूरी है
0: दूसरी
1: जो।
0: चीज भाई पशुओं के जो छाप रहे हैं अभी तक तो ऐसे ही हैं
1: हाँ सही
0: गर्मी अभी
1: है,
0: खुले हैं, लेकिन
1: बरसात आ
0: अभी
1: जाएगी तो पानी आएगा तो वो छपरा भी सही कर लें
0: पौधे भी
1: इनकी।
0: छपरे की व्यवस्था अपना वैसे अच्छी कर लें, तो कहा है जिसे पशु अपन जो सुरक्षित रहे वो पशु बीमार नहीं हो वो है ना,
1: और भैया जब पशु सुरक्षित होगा तो बस अपन के लाने उत्पादन भी
0: अरे
1: अच्छा मिलेगा, है ना।
0: बिल्कुल अपने लाने लाभदायक है वो, अपने
1: हाँ
0: नुकसान नहीं होगा, नहीं पशु बीमार होगा तो दूध भी घटे वो और बीमारी पैसा भी लगे वो सब चीज बात है ना, तो जो अपने
1: हाँ
0: जो सब चीज को अपने लाने ध्यान रखना
1: ध्यान
0: है,
1: रखना है। और भैया देखो, आज है मंगलवार और आज के दिन अपने कार्यक्रम को एक विशेष क्रम होते हैं किसान मणि गांव में, जी में किसानों के संगे अपन बातचीत कर रहे थे और भैया जो स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित होते हैं जी में। भैया आज हम अब ग्राम गिरमोरा विकास खंड व जिला शिवपुरी के जो स्थल रिकॉर्डिंग लेकर आए हैं जी में, भैया किसान भैया बहन से बातचीत करी है अपने मंगरू भैया ने, तो भैया अपन सुनाते हैं जो स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित जी कार्यक्रम।
2: ग्राम गिरमोरा विकास खंड व जिला शिवपुरी है, तो अपाई बिलात किसान भैया बैठे हैं जो तनक देर से बतेंगे, इससे पहले सारे किसान भैया से कहते हैं राम राम राम राम
3: राम राम
4: राम राम।
2: तो ये देखो भाई बीच में जो किसान भैया हैं तो अपन सबसे पहले जान लेते हैं भैया को नाम, तो भैया को सबसे पहले नाम बताओ।
3: केशव पाल।
2: केशव जी अपनी उम्र कितनी हो गई?
3: 32 साल।
2: 32 साल अपनी उम्र हो गई, और अपन ने पढ़ाई लिखाई करी?
3: करी थी छोटी 6-7 साल तक,
2: 6-7 साल तक अपन ने जो पढ़ाई करी, उसके बाद अपन जो है आगे पढ़ाई की तरह अपना बड़ा, तो भाई अपन जो है खेती किसानी के काम में कैसे लग गए?
3: खेती किसानी के काम में लग गए, और कोई नहीं है तो बस चक्कर में खेती समान नहीं करते,
2: अब परिवार की परेशानी के कारण
3: है ना।
2: हाँ। तो खेती अपन जो है कै साल से अपन कर रहे हैं?
3: 10-15 साल हो गए।
2: 15 साल से अपन खेती कर रहे हैं, तो खेती में अपन अगर बात करें भाई खेती की जमीन की, तो अपने पास खेती की जमीन कितनी है?
3: जमीन है तो 10 बीघा 10-12 बीघा।
2: 10 बीघा हमारे पास जमीन है, और जहाँ में अपन बात कर रहे हैं सिंचाई की, तो जहाँ में सिंचाई के साधन कहाँ हैं अपने पास?
3: सिंचाई के जब बोर मोर से सिंचाई करते हैं, और
2: बोर अपने पास से चाहिए, और जैसे अपन बात करें जा समय जो अपन देख रहे हैं आषाढ़ी के समय आ रहा है, खरीफ का मौसम आ रहा है, बरसात की अपन फसल है, तो अपन खेतन में जो है कौन कौन सी फसलें लेंगे?
3: सोयाबीन वाबिन यही करते हैं, सोयाबीन है, टमाटर है।
2: सोयाबीन लगाएंगे टमाटर लगाएंगे, तो जाके अपन तैयारी कैसे करेंगे? जैसे अपन सोयाबीन लगाने हैं तो सोयाबीन लगा भी लाने अपन तैयारी कैसे करेंगे खेतन की?
3: तैयारी दवाई मवाई चलते हैं दवाई की
2: नहीं, खेतन की जैसे जुताई करनी है तो वो अपन जो है
3: जुताई मुताई करवा देते हैं, और से करवा देते हैं,
2: तो बाकी लाने अपन जो है जैसे अच्छे सोयाबीन की पैदावार अपन लाने लेने हैं, तो बाको बीज अपन कहाँ से लेके आओ? तो
3: बीज तो रखो रहता जो गांव में करते हैं तो वही बीज खरीद लेते हैं।
2: तो जैसे अपन एक भी बीज अपन एक बीज सोयाबीन की खेती कर ली, बीज अपन ने बीज को बचा के रख लो, और बाकी बाद फिर अपन ने जब सोयाबीन करने हैं तो वह वही सोयाबीन को उपयोग करें तो दूसरा सोयाबीन
3: वही करते हैं,
2: तो एक बार बीज को उपयोग जो है एक बीज को उपयोग अपन क्या बार कर सकते हैं?
3: एक को हो जाता है 8-10 बार तो हो जाता हो।
2: वैसे कहते हैं कि 3 बेर भी जब बीज को उपयोग करना चाहिए, तीसरी बेज के बाद जो है

0: बीज बदल देना चाहिए। बस
1: बदल भी तो वही बढ़िया चंद तो भाई हिसाब से दूसरा भी कर लेते हैं।
0: बस ये कहा कि जैसे अपन एक ही बीज अगर करते रहेंगे तो वहाँ में कहा कि पैदावार कम मिला थे
1: गर्मी में तो पैसे किसी मिसी गए के बाद में पैसे पड़े रहते हैं
0: तो वहाँ में अपन जुताई है पिलाऊ है गोबर की खाद है ये सब काम नहीं करा।
1: अभी तो करते हैं।
0: तो जब अपन ने गर्मी में कौन कौन से खेतन में काम करे
1: गर्मी में जो खाद खाद मत डाल देते हैं देसी खाद
0: खाद डाले अपन ने। हाँ। और जैसे अपन ने बात करें टमाटर की तो टमाटर की अपन तैयारी कैसे करा था
1: टमाटर की जैसे हिसाब से खाद डाल कर जुताई मुताई के चक्कर में हो जाते हैं जुताई करवा के।
0: तो जैसे टमाटर की अपन पौध लगाने हैं तो पौध की अपन बीज कहाँ से लेके आते हैं पौध कैसे तैयार करते हैं वहाँ कैसे लगाओ
1: वो तो बीज ला कर दुकान पर बेच दो पौध हो जाते लगाए तो बाबा का तैयारी कर।
0: जैसे गर्मी ज़्यादा पड़ रहे थे तो गर्मी में कहा है कि बाबा कुछ रोग भी आ जाते हैं कीट भी आ जाते हैं कभी पौध मर भी जाते हैं तो बाकी अपन अच्छे से देखते
1: दवाई में भाई गिर जाते हैं तो दवाई की ऊपर से वो करवाए सही हो जाता है वो
0: तो बाकी बात जैसे अपन अपने खेत में टमाटर लगाने हैं तो बाको लगा भी को तरीका अपनों का रहे तो अपन कौन तरीका से खेतन में लगा
1: खेतन में तो मतलब लग जाता भी तो का तरीको करेंगे
0: नहीं कछू कछू तो का कर तो सीधे खेत में लगा देते हैं कछू डीडन पे लगाते हैं कछू तार बांस पे लगाते हैं तो अपनों कौन सा तरीका रहे
1: अब तो जमीन को रहता जानते रहते
0: जमीन पे जमीन पे तो जमीन पे जैसे अपन लगाते हैं तो वहाँ में जो है बरसात ज़्यादा हो जाता है या जैसे टमाटर को पेड़ लग गए वहाँ फल लग गए फल जमीन से टकरा गए तो बाकी कारण टमाटर खराब भी तो हो जाते
1: हैं और खराब हो जाते हैं दवाई मवाई की स्प्रे कर देना दवाई हिसाब से तो बस सही भी हो जाते हैं।
0: जैसे जमीन से लटक गए वो जमीन पे टमाटर लग गए जमीन से लगे बात तो खराब हो जाता
1: तो खराब हो जाता है फेंकना पड़ता
0: तो वहाँ में अपन नुकसान होता ना
1: नुकसान होता
0: वहाँ अपन तार वहाँ पे अगर लगा दें तो जमीन से टकरा तो नहीं है तो बाकी पैदावार अपने अच्छी मिलाते
1: हैं बहुत अच्छी मिलती है।
0: और तार बांस के जो होते हैं वे इतने लंबे समय तक जो है बाकी पैदावार में लगते हैं
1: लंबे समय तक चलते
0: हैं खेतन की तो जो है
1: खत्म है वो तो खेतन में जानना भी गल भी जाता सड़ भी जाता
0: तो अपन ने लाने तार बांस पे लगाना चाहिए फिर अपन जब खेत में क्या लगा
1: तार बांस में इतने कछू भी लोग लगा रहे हैं और कछू भी बाय हिसाब से लगाते हैं कम भी लगा देते हैं वहाँ जाना वो है
0: लागत ज्यादा
1: लागत ज्यादा
0: जहाँ में खेत में लागत कम लग जाती खेत बारी में तो अपन लाने जो ही काम को करना चाहिए वैसे तो
1: बहुत लोग लगा लगे तार मास पे ही लगा लगे
0: तो अपने किसान भी इनके लाना और बिलात अच्छी जानकारी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया देखो अपने बीच में जो है ये तो किसान भैया हैं तो अपन इंजन से जाना थे इनको नाम तो भैया सबसे पहले अपना नाम बताओ।
2: मेरा नाम साहब सुरेश है।
0: सुरेश जी अपनी उम्र के देखो भाई
2: 62 साल की
0: खेती कै साल से कर रहे
2: खेती तो साहब जिंदगी निकल गई
0: जिंदगी निकल गई भाई तो आप जब बताओ कि जैसे अपन आज से अगर 30-35 साल पहले की बात करें तो बस हमें खेती कैसी होता थी
2: पहले तो कमजोर होती
0: कैसी
2: मतलब कम ही होती अब पैदावार ज्यादा
0: पहले कई कई की खेती होती
2: पहले तो जी वैसी ही होती ज्वार बाजरे हैं गेहूँ है सरसों है जैसी करी करती अरसे हैं और अब ठीक है कि अब
0: और खेती के यंत्र का कहते पहले खेती अपन काय से करते
2: जी अरकुरी बैलन से
0: तो वहाँ में तो मुलाकम बिला समय लगा तो
2: समय लग दू अब समय नहीं लग दू अब नेक में तैयार हो
0: बस हमें पैदावार कैसी होती
2: पैदावार ज्यादा नहीं होती अब ज्यादा हो रही है।
0: अच्छा और जैसे सुविधा की बात करें अपन अपने गांव में जो है कौन कौन सी सुविधा होता थी पहले
2: पहले तो कोई सुविधा नहीं है
0: गांव में सड़कें की बात करें सड़कें कैसी हैं
2: सड़कें भी नहीं है
0: फिर
2: रास्ता है पैदल जाते
0: आवे जावे को का साधन है तो
2: बैलगाड़ी
0: जैसे कोई बीमार दुखी होगा अपन एक गांव दूसरे गांव
2: बैलगाड़ी बैलगाड़ी से ले
0: जाते गाँव में समय ज्यादा लगा तो
2: समय लग
0: और बिजली की कैसी का व्यवस्था रहती है
2: बिजली पहले कहाँ ही ये तो अभी से भाई है 10-20 साल
0: पहले तो बिलात परेशानी आती आज अपने गांव में अपन देखें तो कौन कौन सी सुविधा हो गई है
2: अब तो पूरी सुविधा है अब कोई बात की कमी नहीं है
0: स्कूल आएंगे
2: सब है
0: अस्पताल है
2: सब है
0: आंगनबाड़ी
2: सब
0: आंगनबाड़ी भी है और आवे जावे के लाने
2: मान लग रहे हैं वो फिर सरकार ने तो वो कर दी है नहीं हो रही जी गर्भवती बहुतियाँ होती हैं तो मैंने को जीपे भेज दी थे अभी
0: गाड़ी भेज देते हैं तो आज सुविधा ज्यादा हुआ ही है। और खेती किसानी में बात करें तो खेती किसानी के कौन कौन से यंत्र हैं आपके पास
2: अंत माने
0: खेती किसानी की कौन कौन सी अपने मशीने हैं
2: जी ट्रैक्टर वगैरह चल रहे हैं अब तो मशीन काम चल रहे हैं सब घंटों काम मिनटों में हो रहे हैं
0: तो कहने का मतलब जो है आज की खेती अच्छी हो गई है
2: हाल फिलहाल ठीक है
0: हैं। और अपन जैसे खेती के संग अपन ने कौन कौन से पशु पाल रखे हैं
2: अरे अब तो जी गैया मैया तो निकाल नहीं अब तो जी भैंसा पैसा मान है
0: तो जी अपन ने खेती के संग पशु पालवे से का फायदा होते
2: फायदा तो होता गोबर होगा और उसके बच्चा भी होंगे और फिर दूध भी देगा अपन गाय घी भी बनेगा खाने को मही भी मिलेगा मटा मिलेगा और दूध दही मिलेगा आनंद
0: गोबर
2: गोबर भी मिलेगा कंडी बनेंगे रोटी तो बनाएंगे पकाएंगे
0: तो गोबर अपने में लगाओ, अपने ईंधन को उपयोग कर लो, दूध भी अपने खा पी लाओ, ज्यादा भाव तो बेच भी दो। अब जाके बाद इनको जो गोबर है तो वैसे का जो खाद भी बन जाते हैं,
2: खाद बन जाते हैं, तो ये गोबर गैस बना लाए कई जन ने, तो भी गोबर गैस भी बन जाता।
0: और गोबर को खाद अपन जब खेतन में डाले थे तो कौन सा खाद अच्छा माना था? सरकारी खाद अच्छा माना था?
2: यहाँ से तो कोई नहीं लगता, न तो सरकारी लगे ना कोई लगे, घर की गुबार होगी ना तो ये तो अलग ही ना दिखा हो इसका।
0: तो जाए अपने खेतन में अपन डारा था
2: डारेंगे,
0: तो जैसे अपन ने एक बार अपने खेत में जा गुआर डार दी तो बाकी क्या साल नो काम कर?
2: तीन साल करेंगे।
0: और पैदावार जैसे कैसी होता है?
2: बहुत ज्यादा दूनी होगी।
0: अच्छा, और रासायनिक खाद से अपन जो पैदावार कर रहे थे बाकी कैसी?
2: वो तो एक साल की यही है, दोबारा नहीं होगी।
0: दोबारा फिर भाई मैं नई करेंगे तो फिर नहीं डालने?
2: नहीं डालने।
0: भाई अपन एक बार डाल रहे हो तीन साल में भाई पैदावार लेते रहो
2: लेते हो
0: तो बप जखे, मतलब ग्वार अच्छी चीज है।
2: अच्छी चीज
0: तो आप
2: तो कुछ लगते ही नहीं।
0: तो वहाँ में अपने लान देखो घास हो जाते हैं थोड़ा बहुत, हरो घास सब इनसे तो अपने लाने मिल जाते ना?
2: मिल जाता,
0: लेकिन बाहर से ज्यादा भी अपने लाना दे देते हैं।
2: मेहनत तो करवो नहीं चाहते कजू किसान मेहनत तो करवो चाहते।
0: और दूसरी बात जो है ना कि अपने लाने जैसे शुद्ध चीज मिल जाते
2: हैं, शुद्ध घर की चीज
0: मिल जाते है ना। अपन ने जो खेतन पर पेड़ लगा खा रखे कचू फलदार पेड़ है, कचू छादार पेड़ है, तो अपने पेड़ भी लगाना चाहिए।
2: हाँ, आम जामुन है जी, अपने खाने वाली चीज है, पपीता है, ऐसी जाम फल है, नींबू है, ये अपने काम की चीज है।
0: तो जैसे कहा वो तो एक तो अपन छाया मिल जाते हैं, दूसरी चीज अपने फल मिल जाते हैं, और तीसरी चीज का है पानी भी। अपन देख सके जमीन में पानी भी इनके कारण रहे तो बरसात अच्छी होता है।
2: बरसात अच्छी होगी, पानी पेड़ होंगे तो वर्षा होगी, पेड़ नहीं होते वर्षा कहाँ से होगी?
0: वर्षा होगी तो खेती अच्छी होगी,
2: खेती होगी
0: तो अपने किसान भैया से क्या जो है, जैसे भाई खाली जमीन है मेड़ पे अपन पेड़ लगा सकते हैं ना। तो जो काम को किसान भैया करेंगे तो आगे निश्चित करके आगे पैदावार अच्छी लेंगे, है ना। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी भाई किसान भैया के नाने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सो किसान भैया देखो भाई बीच में जो भैया है तो अपन जाना थे इनसे नाम, तो भैया सबसे पहले अपना नाम बताओ।
3: मेरा नाम विशाल रावत है।
0: विशाल जी भाई उम्र कितनी हो गई?
3: मेरी उम्र हो गई सर 25-26।
0: 25-26 साल हो गए, तो अपन ने पढ़ाई लिखाई करी?
3: हाँ करी, 10वां पास किया था।
0: 10वां पास कर लो अपन ने, अपन ने 10वां पास करने के बाद अपन जो है खेती किसानी में क्यों चले गए? अपन नौकरी की तरफ या कोई और काम धंधो अपन ने काई नहीं करो?
3: अब खेती करना जरूरी था, घर में ऐसा कोई नहीं था जो खेती कर सके।
0: अच्छा, पारिवारिक परेशानी कारण अपन खेती तरफ आ गए। तो अपन जैसे पढ़े हैं और किसान भैया कम पढ़े लिखे रहते हैं, कभी नहीं पढ़े लिखे रहते, तो पढ़े लिखे होवे को अपने लाना का फायदा खेती मिल रहा है?
3: सब फायदा है, जैसे दवाई लेने जाते हैं तो पूरा जानकारी भी सब समझ में आती है उनकी,
0: तो दवाई इनके बने जानकारी मिल जाते हैं। अपन देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे हाइब्रिड बीज आ रहे हैं, अच्छी किस्म के बीज आ रहे हैं, तो बाकी भी जानकारी अपने हो जाते
3: बिल्कुल।
0: और दूसरी बात खेती के जो तरीका है तो कम पढ़ो लिखो आदमी जो है मतलब देर से समझ पाते है या नहीं समझ पाते है, अपन पढ़े लिखे हो भी तो जो सब चीज़ समझ जाते हैं।
3: हाँ बिल्कुल, जल्दी समझ जाते हैं बात,
0: है ना। तो पढ़ा लिखो किसान को वो बहुत जरूरी है,
3: बहुत जरूरी है बिल्कुल, हर एक इंसान को पढ़ना जरूरी होता है।
0: लेकिन अपन खेती कर रहे हैं तो खेती में ही पढ़ो लिखो वो बहुत जरूरी है।
3: जरूरी है सर,
0: कैसे हैं कि अपन बात से ज्यादा जो है अपन पैदावार पर खेत में ले सकते हैं
3: बिल्कुल,
0: है ना। तो अब मैं देख रहे हैं कि जैसे अपने पास खेती की जमीन की बात करें तो अपने पास खेती की जमीन कितने है?
3: मेरे पास 50 बीघे है।
0: अपने पास 50 बीघे जमीन है, और अपन खेती के जो कृषि यंत्र होते हैं, कृषि यंत्र अपने पास कौन कौन से हैं?
3: मेरे पास जो ट्रैक्टर है एक तो, और इसका सामान भी है कुछ,
0: जैसे
3: बोर वगैरह भी है।
0: या वो सामान में है जैसे मैंने बात करें प्लाऊ है, हैरो है,
3: हाँ प्लाऊ है, हैरो है, सिडल है, जैसे पास है, और भी यंत्र आते हैं इसके,
0: तो ये सब अपने पास हैं। और अपन बात करें खेती में सिंचाई की व्यवस्था, मतलब पानी की व्यवस्था अपने पास कहाँ है?
3: पानी की व्यवस्था हमारे पास बोर लगा है, तो ऐसे कोई पाइप वाइप तो गड़े नहीं है, जो लेजम डाल के व्यवस्था बना,
0: तो पानी अपने पास मतलब बोर में अच्छा है,
3: बढ़िया है, पर्याप्त,
0: तो अपनी खेती की पूरी पार जाते हैं,
3: पर जाते बिल्कुल 25-30 बीघा तो बिल्कुल।
0: एक तो अपन ने जैसे बात कर रहे हैं रवि की फसल की, तो राजा की पहले अपन ने कौन सी फसल लगी थी?
3: चार से पहले ये चना सरसों
0: अपने पैदा करी। पैदावार कैसी रही?
3: बढ़िया रही बिल्कुल,
0: अच्छी पैदावार मिली पहला। अब जैसे गर्मी में अपने खेत खाली रहे तो गर्मी में खेतन में अपन ने कौन कौन से काम करे?
3: हमने जो भिंडी टुंडे जैसे आदि और सब कुछ लगाया था,
0: साग सब्जी लगाई अपन ने। तो जैसे हमें अपने खेतन में साग सब्जी लग रही है, पूरी हो गई?
3: बिल्कुल लग रही है, उधर
0: लग रही है। तो बस अपन जो है अतिरिक्त आमदनी मिल जाते हैं। तो जिन भैया के पास पानी है उन्हें गर्मियन में जैसे साग सब्जी है, गर्मियन की गेहूँ हरी मूंग लगाते हैं, बावी लगाना चाहिए तो लगाना चाहिए।
3: हाँ बिल्कुल लगाना चाहिए हमारे पास।

0: ने लगाई थी मूंग।
1: तो जैस्मिन के लाने का फायदा होता है, जैसे अपन सब्जी लगा लें, हरी मूंग लगा लें, फायदा क्या है?
0: बहुत फायदा है सर।
1: क्या बताओ?
0: जैसे भी खेत काली डाली रहती है तो उसमें सब्जी हो जाती है तो बढ़िया
1: आमदनी पहले आने हो जाते हैं, है ना। तो अपन ने जैसे अब खेत खाली रहे तो खेतन में का बहुत गर्मी इनके मौसम में अपन के लाना, जैसे गहरी जुताई करना चाहिए, मिट्टी परीक्षण को काम करना चाहिए, मेड़बंदी करना चाहिए। तो आपने अपने खेतन में कौन कौन से काम गर्मी में करे?
0: जैसे कि प्लाउ चलाया हमने और एक कलैया भी बनाई थी।
1: अच्छा, जैसे प्लाऊ जैसे अपन चलाते हैं खेतन में, तो ये प्लाऊ चलावे को फायदा क्या होता है?
0: जिससे फसल अगली अच्छी होती है, नई मिट्टी आ जाती है और पुरानी मिट्टी अंदर चली जाती है।
1: तो प्लाऊ अपन जो है मतलब खेत में क्या साल में और कब कब चलाना चाहिए?
0: कम से कम 3-4 साल में तो चलाना चाहिए प्लाऊ।
1: चलाना चाहिए। तो जाओ तो नीचे की माटी ऊपर चली जाती, ऊपर की माटी नीचे आ जाती। और दूसरा फायदा जहाँ का होता,
0: जिससे उपजाऊ भी बढ़िया होती है, फसल भी बढ़िया होती है।
1: और जैसे पानी पड़े हो तो जाके भीतर पानी भी सूखे हो,
0: सूखेगा ये पानी,
1: तो अगली जो फसल होगी हमें जो फायदा देगी,
0: है
1: ना। और गोबर की खाद अपन जैसे किसान भैया डाल रहे थे तो भावी गर्मी में आपने डाला हुई है?
0: हाँ बिल्कुल डाला था, बहुत फायदा है उससे।
1: तो अपन ने जैसे अब रासायनिक खाद को उपयोग कर रहे थे, गोबर की खाद को उपयोग कर रहे थे, तो दोनों में से आप कौन सी खाद के लाने अच्छा माना थे?
0: हम गोबर की खाद को सबसे अच्छा माना था।
1: बाकी
0: वो बहुत ताकतवर होता है और 4-5 साल भी चलता है।
1: अच्छा, अपन जैसे रासायनिक खाद डाल रहे थे और गोबर को खाद डालते हैं, तो रासायनिक खाद कितने समय तक चलाते हैं?
0: वो बस एक ही फसल तक चलता है,
1: जो उन फसल पर डाल रहे हैं वही में है,
0: वही में।
1: और गोबर की खाद में और दूसरा कोई खाद डालने की जरूरत नहीं है?
0: बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो ही 3-4 साल बढ़िया रहा।
1: और अपन पैदावार की बात करें तो जैसे अपन गोबर की खाद से जो फसल की पैदावार ले रहे हैं बात अच्छी होगी, रासायनिक खाद से करें वो
0: गोबर की खाद से
1: ज्यादा पैदा
0: अच्छी होती है।
1: तो किसान भैया ज्यादातर रासायनिक खाद की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, गोबर की खाद क्यों छोड़ चले जा रहे हैं?
0: कम है इसलिए।
1: अच्छा, कम हो रही है?
0: कम हो रही है।
1: तो जाको का कारण है कम हो रही है?
0: जैसे कि पशु कम रह गए हैं।
1: तो अपन खेती कर रहे हैं, अपने पास सब साधन हैं, तो अपने लाने पशु तो पालना चाहिए,
0: पालना चाहिए, पर कम से कम पालते हैं अब लोग।
1: तो जाको का कारण है कि क्यों कम का पाल रहे हैं?
0: अब जैसे कि चराने के लिए जगह भी नहीं है कहीं।
1: नहीं, लेकिन चारों तो अपने पास, अगर पास अपने पास जैसे आप ही कह रहे हैं कि हमारे पास 50 बीघा जमीन है, वो 50 बीघा में हम नहीं माने कम से कम 10 भैंस तो मेरी घर है, मतलब खड़ी होकर खा सकते हैं, एक चारों पानी उनके लाने मिल जाते हैं।
0: हाँ, तो ये अब व्यवस्था मतलब कोई चराना नहीं चाहता अब।
1: तो रासायनिक खाद को उपयोग करोगे तो आगे चल के आज जमीन जो है पैदावार कम देगी, धीरे धीरे जाएगी, उर्वरा शक्ति घटत चली जाएगी, बंजर हो जाएगी, फिर अपन के लाने लौट के जगह पे आने हैं, तो फिर जा से कहेगा धीरे धीरे काम को करते रहना चाहिए ना।
0: बिल्कुल सही बात है, करना
1: चाहिए ना। अब जैसे हम अपन देख रहे हैं कि अब बरसात का मौसम आ गया, तो जामे अपन जो है कौन कौन सी फसल लगा भी खेत में तैयारी है?
0: अब जिसमें होगा हमारा सोयाबीन होगा, टमाटर भी होंगे, जैसे मक्का वगैरह भी होगी, बाजरा भी होगा, जैसे धनिया भी होगी।
1: तो जैसे अपन बाजरा की खेती आप करोगे तो बागलान तैयारी कैसे करोगे?
0: बस अभी जुताई करवा देंगे, उसके बाद जब पानी पड़ेगा फिर जुताई हो जाएगी, फिर बो देंगे।
1: तो कहने का मतलब जो है कि अपने लाने जो है सभी तरह की अपन खेती कराते हैं, और मिक्स खेती जैसे अपने करेंगे, ज्वार भी करेंगे, मक्का भी करेंगे, बाजरा भी करेंगे, मक्का भी करेंगे, तो ये सब तरह की अपन मिश्रित फसल क्यों करते हैं?
0: मतलब समझ में नहीं है।
1: मतलब जाके जैसे अपन सब 4-5 फसल करेंगे, हाँ। तो जब अपन क्यों करेंगे, अपन चाहें तो 50 बीघा में अपन ने सोयाबीन अकेले कर रहे हैं, बाजरा अकेले कर रहे हैं, मक्का अकेले कर रहे हैं, टमाटर अकेले लगा लें?
0: नहीं, ऐसा नहीं है, क्यों बाग के ऊपर भी डिपेंड रहता है, जैसे सोयाबीन कम बचा
1: तो दूसरी बात पैदावार

0: तो पूरी का पूरा नुकसान अपने पास आ जाओ है ना।
1: थोड़ा बहुत बाजरा भी लगा लेते हैं तो उससे मतलब नुकसान कम बैठता है।
0: तो अब विशाल जी आपने अपने किसान भैया के लाने बिलात अच्छी जानकारी दी, कहलाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भैया देखो अपने बीच में बिलात किसान भी आए थे तो उनने बताओगे देखो अपन फलदार पेड़ क्यों लगाना चाहिए और इस समय गर्मी में के मौसम में जब अपने खेत खाली रहे थे तो पहलाने जो है गहरी जुताई क्यों करना चाहिए, गहरी जुताई से क्या फ़ायदा होते हैं और मिट्टी परीक्षण को काम भी अपने भैया के लाने करना चाहिए। ऐसी सभी बातें अपने किसान भैया कर रहे हैं, अपना रहे हैं और अच्छी पैदावार ले रहे हैं। और कुछ भैया ऐसे हैं कि इस समय में जो है गर्मी की खेती कर रहे हैं, साग लगाई है, भाजी लगाई है, भिंडी लगाई है, कद्दू लगाओ है, टिंडे लगाए, तो ये सभी जानकारी अपने किसान भैया के लाने अपन दी थे और अपने किसान भैया ने अपने लाना दई और जे भैया को जो है अपने अगले किसान भैया जो भी सुनेंगे ये सब बातन को जो है किसान भैया लाभ लेंगे। और किसान भैया गिरमोरा गांव से वही अपाई चलवे की बेरा तो सगाई किसान भैया से कहत है राम राम
2: राम राम।
3: भैया बहनों अभी अपन सुन रहे थे किसानमणि गांव में किसानों के साथ जो स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम जी में किसान भैया उनसे बातचीत कर रहे थे अपन मंगरू भैया और भैया ग्राम हतो गिरमोरा विकास खंड व जिला शिवपुरी। तो भैया अब ये अपन ने किसान भैया के जो खेती से जुड़े हुए अनुभव सुने तो मिट्टी परीक्षण जो बहुत ही अच्छी बात कही है आपने।
4: क्यों जरूरी है तो बाय जरूरी है कि अपने लाना जो है जो

0: पोषक तत्व की कमी है, तो बाकी अपन जब पूर्ति करेंगे तो बाहर से कहा कि भाई फसल की पैदावार बढ़ेगी, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और पैसा काम में आएगा।
1: पैसा काम में आएगा, नहीं तो अपन है ना, अपन ने पतो नहीं है और अपन डालत चले जा रहे हैं बाहर में पोषक तत्व, जहाँ अपना खर्चा भी बढ़ रहा है
0: और
1: हाँ व्यर्थ जा रहा है। और दूसरा भैया कहा है कि जैसे अपन जैसे रसायनों का अधिक उपयोग कराते हैं तो बाहर से भाई माटी भी खराब हो जाते है ना। तो और भैया आप ही जो सरकार है वो भी जो ही कह रही है कि जो रासायनिक उर्वरक जो खाद है उनको संतुलित मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, है ना।
0: मिट्टी परीक्षण का वो देखो एक तो निःशुल्क
1: हो रहा है,
0: और बाहर में अपन क्या करने हैं, केवल यही करने हैं कि खेत में ऐसे अपन चार पांच जगह से जो है नमूना अपन
1: ले ले,
0: आकार को एक गड्ढा बना ले और नीचे से माटी ले ले, मतलब जो है आधा आधा किलो करीब चार छह जगह की माटी ले ले, वहाँ अच्छे से मीट कर रगड़ के भुरभुरी कर ले, और भुरभुरी करने के बाद वहाँ चार हिस्सा कर ले,
1: चार हिस्सा कर ले,
0: घर में एक साल अपन निकाल ले और जितने का अपने लाने प्रयोगशाला में ले जाने हैं जांच करावे के लाने, वो थैली में बढ़िया
1: और जो प्रक्रिया हो भैया अपन के लाने दो तीन बार करना पड़ता है, है ना।
0: हाँ, दो तीन बार करनी,
1: तब कहीं जाके वो मिट्टी निकलाते हैं, फिर वो थैली में भर के अपन बाय जो है प्रयोगशाला में ले जाते हैं। और भैया जो थैली है वो भी है ना साफ सुथरी होना चाहिए, जैसे अपन ने कोनू तरह की खाद या कोनू पोषक तत्व के माँ में डाल दी तो वो प्रभावित होगी माटी,
0: खेत को नाम, गाँव को नाम, ये सब चीजें जरूर अपना लिखनी है ना। तो जैसे कहा
1: खेत है,
0: चीज है कि जैसे पेड़ की छाए कहीं है तो माटी
1: माटी नहीं ले,
0: किनारे से माटी नहीं,
1: हाँ मेड़ की ना ले,
0: किनारे से नहीं लेने हैं, तो बाकी भी जो है जैसे बीच में से लेने हैं अपन, चार छह जगह
1: घूम फिर के लेने हैं, चार छह जगह
0: से लेने
1: हैं,
0: तो जिस तरह से अपन जो है पूरी माटी को एकत्रित कर सकते हैं।
1: और भैया देखो आप जो किसान भैया बहन की जो जागरूकता के लाने अभियान भी चलाया जा रहा है 1 जून से लेके 30 जून तक, खेत बचाओ अभियान जी में कहा है कि आप जो किसान भैया बहन है इनको जय जागरूकता फैलाई जा रही है इनके अंदर के आप जो खेत की माटी है बाय लंबे समय तक उपजाऊ अपन कैसे बना के रख सकते हैं, और कैसे अपन जो है आप जो देसी खाद है प्राकृतिक खाद है अपन के लाने आप खेतन में बाको उपयोग करना है।
0: हाँ हाँ
1: हर
0: 2-3 साल में एक बार जो है
1: करा लेना चाहिए, सही कह रहे
0: हो, जो है पतो पड़ेगा तो वहाँ से कहा किसान भी है सारे किसान भी जागरूक भी होंगे, है ना, उनकी पैदावार भी अच्छी बढ़ेगी, पैसा भी मिलेगा,
1: पैसा ही मिलेगा। और भैया जब भाई खेत की माटी अच्छी हुई है उपजाऊ हुई है तो अपन के लाने फसल उत्पादन भी अच्छा मिलेगा, गुणवत्तापूर्ण मिलेगा। और भैया जब फसल उत्पादन अच्छा होगा तो अपनी आमदनी भी बढ़ेगी, है ना। तो अपन के लाने जिन सभी बातन को ध्यान में रखना है, तो अपन भैया बहनों से अपन जो ही कहेंगे कि आप जो खेत की माटी है वह जो है बाको परीक्षण करवाएं और अच्छो लाभ लें वैसे। और भैया अब किसान मणि कार्यक्रम को समय हो चलो है पूरे, तो अपन सगे भैया बहनों से ले लेते हैं आज्ञा। तो रूबी बहन और
0: मंगरू भैया का आज्ञा दो,
1: राम राम, जय जवान जय किसान।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।

0: आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि
1: सुरक्षित फसल, निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान।
0: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: आयोजित कार्यक्रम किसान वाणी।
1: यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इसे हम अपने भोपाल केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इस समारोह में कुल 65 पद्म अलंकरण दिए गए। इनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। हर वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। इस वर्ष सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार सम्मिलित हैं। इस वर्ष का पहला नागरिक अलंकरण समारोह 25 मई को आयोजित किया गया। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 66 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सम्मान सम्मिलित थे। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मान दिया जा रहा है। इसके अलावा कुछ पुरस्कार प्रवासी भारतीयों और विदेशी नागरिकों को भी प्रदान किए जा रहे हैं। आइए अब पद्म पुरस्कारों की शुरुआत और उनके सफर पर एक नजर डालते हैं।
1: भारत सरकार ने 1954 में भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की थी। तब से ये पुरस्कार हर वर्ष प्रदान किए जाते हैं। हालांकि वर्ष 1978, 1979 और 1993 से 1997 के दौरान इन पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी। समय के साथ इन पुरस्कारों का स्वरूप विकसित हुआ और आज पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण उच्च कोटि के विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। वहीं पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में पद्म पुरस्कारों की एक विशेष पहचान बनी है। अब इन पुरस्कारों को केवल बड़े शहरों या चर्चित नामों तक ही सीमित नहीं रखा जाता। देश के दूरदराज क्षेत्रों में काम करने वाले अनेक ऐसे लोगों को भी सम्मानित किया जा रहा है, जिन्हें अक्सर अनसंग हीरोज कहा जाता है। पद्म पुरस्कारों की एक और विशेषता ये है कि इनके लिए नामांकन प्रक्रिया आम नागरिकों के लिए खुली है। कोई भी व्यक्ति किसी योग्य नागरिक का नाम प्रस्तावित कर सकता है। स्वयं नामांकन की भी व्यवस्था है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि समाज के विभिन्न वर्गों से प्रतिभाशाली और समर्पित लोगों की पहचान हो सके। प्राप्त नामांकनों पर विचार करने के लिए हर वर्ष एक पद्म पुरस्कार समिति गठित की जाती है। इस समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। समिति में गृह सचिव, राष्ट्रपति सचिवालय के प्रतिनिधि और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। समिति की सिफारिशों पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद अंतिम सूची जारी की जाती है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर युक्त प्रशस्ति पत्र और पदक प्रदान किया जाता है। उन्हें पदक की एक छोटी प्रतिकृति भी दी जाती है, जिसे वे औपचारिक अवसरों पर धारण कर सकते हैं। आमतौर पर एक वर्ष में दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों की

0: पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इनमें अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को मरणोपरांत कला के क्षेत्र में, पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस को लोक मामलों में, प्रसिद्ध वायलिन वादक एन राजम को कला के क्षेत्र में, वरिष्ठ पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व मुख्यमंत्री वी एस अच्युतानंदन को मरणोपरांत लोक मामलों के क्षेत्र में पद्म विभूषण प्रदान किया गया। इस वर्ष 13 हस्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनमें प्रसिद्ध पार्श्व गायिका अलका याग्निक, अभिनेता ममूटी, उद्योगपति उदय कोटक और पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृत राज जैसे जाने माने नाम सम्मिलित हैं। इसके अलावा चिकित्सा, समाज सेवा, कला और लोक मामलों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली कई अन्य हस्तियों को भी यह सम्मान दिया गया। इनमें डॉक्टर नूरी दत्तात्रेयडू, भगत सिंह कोश्यारी, के आर पलानी स्वामी, एस के एम मेलानंदन, शतावधिनी आर गणेश और वेलापल्ली नटेशन शामिल हैं। वहीं पीयूष पांडे, शिबू सोरेन और वी के मल्होत्रा को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इस वर्ष 113 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। कला और संस्कृति के क्षेत्र में अभिनेता प्रोसेनजीत चटर्जी, लेखक शिव संकरी, संगीत साधक तारुण भट्टाचार्य और तृप्ति मुखर्जी को सम्मानित किया गया। वहीं विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में भी अनेक व्यक्तित्वों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर की समाज सेवी डॉक्टर बुधरी ताती को समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पिछले 40 वर्षों से वे आदिवासी महिलाओं और वंचित समुदायों के उत्थान के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के सैकड़ों गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने आदिवासी महिलाओं को सिलाई जैसे कौशल सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आकाशवाणी समाचार ने उनसे विशेष बातचीत की, आइए सुनते हैं उसके कुछ अंश।
1: बुधरी ताती जी, आपका बचपन कैसा था और समाज सेवा की भावना आप में कब जागी, इसके बारे में हमें बताएं।
2: गांव ईरानार में ही मेरा जन्म है। यहां से 2 किलोमीटर दूरी पे तातीपारा में है और बालकाल में हमने माँ के साथ रहते रहे। हम किसान के परिवार के हूँ और गरीब घर की हूँ, तो उस समय लगभग 8-9 साल के थे। तब से माँ बाप के साथ पे माँ के साथ काम करते थे। फिर 8-9 साल के और छोटे थे तभी एक ही दिव्य जीवन संघ घुमर गुंडा, वहाँ पर पैदल पैदल जाते थे, वहाँ काम करते थे सेवा भाव पे। और बचपना में मेरा ऐसा ही आम लोग जैसा है ऐसा ही जीवन बीता है।
1: आपने बस्तर संभाग के 500 से अधिक गांवों में पैदल यात्रा करते हुए लोगों को जागरूक बनाया, अपनी इस यात्रा के अनुभव के बारे में हमें बताएं।
2: इसमें तो उनको जागरूकता लाना है तो हमने पैदल इसलिए घूमे हैं कि जब तक हम उनके पास नहीं जाएंगे, हम उनके समस्या से लेकर उनका शिक्षा से लेकर जो भी करना चाहते हैं, जब तक उनके पास नहीं जाएंगे हमको समझ में नहीं आता है। हम उनके पास जाना है, उनके साथ घूमते हुए ये सब परिस्थिति देखने के बाद बहुत कठिनाई भी आया है। तब हमको समझ में आया कि इनके बीच में काम करना है तो क्या क्या चीज हो सकता पड़ेगा, सब यात्रा में देखने को मिला है।
0: पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध संथाली साहित्यकार रविलाल टुडू को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के नुवारा गांव में जन्मे रविलाल टुडू संथाली भाषा और साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षरों में से एक थे। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से संथाली भाषा, संस्कृति और परंपराओं को नई पहचान दिलाने का काम किया। वे नाटक, कहानी और रेडियो लेखन के क्षेत्र में विशेष रूप से सक्रिय रहे और उनकी रचनाएं आम लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय रहीं। उनके योगदान को देखते हुए उन्हें वर्ष 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और वर्ष 2022 में बंगभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। इस वर्ष उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है। जून 2026 में उनके निधन के बाद ये सम्मान उनके लंबे साहित्यिक और सांस्कृतिक योगदान को श्रद्धांजलि के रूप में भी देखा जा रहा है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी से उनकी बातचीत के कुछ अंश।
3: आपकी एक रचना है परसी खतीर, जिसके लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, इस रचना के बारे में हमें बताएं।
4: किताब एक ड्रामा का है, परसी खतीर। परसी खतीर के लिए ही सब कुछ मिल रहा है। वो तो एक हमारा जो भाषा के लिए आंदोलन था, भाषा स्वीकृति के लिए, जो 8वां तफसील में हमारा भाषा का स्वीकृति मिला है, ये भाषा।

0: आम का जो हिस्ट्री था वही आम ड्रामा का रूप में लिखा है।
1: लेखन के प्रति आपकी रुचि कब से शुरू हुई?
0: वो तो स्कूल लाइफ से, हाई स्कूल में जब पढ़ता था उसी टाइम से हम शुरू किया है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग ड्रामा लिखा है, प्रेजेंट किया है, परफॉर्म किया है पब्लिक अवेयरनेस के लिए।
1: आपके अनुसार मातृभाषा में शिक्षा क्यों आवश्यक है?
0: देखिए, जिसका मातृभाषा नहीं है उसका एडुकेशन भी नहीं होता है। दूसरा भाषा लेके आप एडुकेशन कितना टूट जाएंगे, ये तो संभव नहीं है। इसलिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सबको मातृभाषा से ही होना चाहिए। यही हमारा टारगेट भी था, लड़ाई भी था, काम भी ऐसा ही हम लोग करके आए हैं।
2: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले को जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संयुक्त रूप से पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है। पिछले 3 दशकों से अधिक समय से वे छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के दूरदराज और आदिवासी बहुल इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने, कुपोषण से लड़ने और स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं।
3: डॉक्टर रामचंद्र, ये बताइए कि जब आप बस्तर पहुंचे तो आपने बारसूर में रहना शुरू किया और फिर यहाँ से गतिविधियां शुरू की, कितना चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए और कैसे आप लोगों ने इन चैलेंज का सामना किया?
4: भुजबाड़ में जाना आना तो काफी कठिन ही था उस समय। हमारे साथ कुछ माड़िया आदिवासी लड़कियां थी, उनके साथ ही हम लोग जंगल जाते थे, उनके साथ ही अबूझमाड़ में गए थे।
3: महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा प्रश्न रहता है, शहरी समाज में भी है, फिर आप तो अबूझमाड़ और बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वहाँ आपने क्या देखा?
5: वो क्षेत्र ही पूरा बुनियादी सुविधाओं से वंचित था, तो हम लोग महिला चेतना शिविर जो लेते थे उसमें ये सब बातें रहते। अभी बहुत सारा है क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के बाद बहुत कुछ माहौल बदला है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में सुधार आया है।
2: अशोक कुमार सिंह को कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के पूर्व निदेशक रहे हैं। डॉक्टर सिंह को बासमती और पूसा धान सहित धान की कई उन्नत प्रजातियों के विकास के लिए जाना जाता है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी समाचार से उनकी विशेष बातचीत के कुछ अंश।
6: इस बार आपको साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपके किस योगदान को लेकर इस सम्मान से आपको सम्मानित किया जा रहा है?
7: मुझे जो पुरस्कार दिया गया है इस बार वह विशेष रूप से बासमती चावल के उन्नत प्रजातियों के विकास के ऊपर दिया गया है। बासमती हमारे देश की एक महत्वपूर्ण धरोहर है, इसकी खेती सदियों से हमारे देश में होती आ रही है।
6: इसमें बार बार सुधार की जरूरत क्यों पड़ी?
7: जो हमारी परंपरागत किस्में थी अधिक ऊंचाई होने के कारण गिर जाती थी और उनकी पैदावार बहुत कम होती थी, तो इसको पैदावार में वृद्धि करना, ऐसी प्रजातियों का विकास करना जो अधिक उपज देने वाली हो, एक तो मुख्य लक्ष्य ये था। दूसरा, तमाम तरह की बीमारियां और कीड़े चावल में लगते हैं तो किस प्रकार से हम रोग रोधी और कीट रोधी किस्मों का विकास करें, एक मुख्य लक्ष्य शोध का था।
6: हमारे पर्यावरण के अनुकूल जो पैदावार है उसको बढ़ाने में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं?
7: क्लाइमेट रिजिलियंट वैरायटीज, ये एक विशेष शोध परियोजना है जिसके अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों में और कृषि विश्वविद्यालयों में कार्य किया जा रहा है।
2: आज का समारोह भारतीय खेल प्रेमियों के लिए भी विशेष महत्व रखता है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। रोहित शर्मा ने अपने खेल प्रदर्शन, नेतृत्व और उपलब्धियों से भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम ने 2 ICC खिताब जीते। उनकी उपलब्धियां केवल रिकॉर्ड तक सीमित नहीं रही बल्कि उन्होंने नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को भी प्रेरित किया है। इसी तरह भारतीय महिला हॉकी टीम की अनुभवी खिलाड़ी सविता पूनिया को भी पद्मश्री प्रदान किया गया। भारतीय महिला हॉकी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पद्म पुरस्कार केवल सम्मान नहीं है बल्कि वे राष्ट्र की ओर से उन व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति हैं जिन्होंने अपने कार्यों से समाज और देश के जीवन को बेहतर बनाने में योगदान दिया है, चाहे वह कला का क्षेत्र हो, साहित्य, शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, खेल, समाज सेवा या उद्योग जगत। पद्म पुरस्कार देश के विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पहचान देते हैं। पद्म पुरस्कारों के माध्यम से राष्ट्र ऐसे ही व्यक्तित्वों को नमन करता है और उनके योगदान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। आज के कार्यक्रम सुर्खियों में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी अनिकेत ने।
8: अभी आप सुन रहे थे पद्म पुरस्कार 2026 पर विशेष रिपोर्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा

0: प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
1: सुर्खियों में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हमने लिया है कुदरत फिल्म से, आवाज किशोर कुमार की, मजरू सुल्तान परी का गीत और राहुल देव वर्मन का संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुनिए हरजाई फिल्म का यह नगमा। निदा फाजली के लिखे गीत की धुन बनाई है राहुल देव वर्मन ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए, कुर्बानी फिल्म से, जिसे आवाज दी है कंचन, मनहर और आनंदी। गीत इतिवर का और संगीत कल्याण जी, आनंद।

0: इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 8:42 होने को है, वक्त है अंतराल का।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बद

0: दिल्ली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होगी।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
5: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल।

0: आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूडी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
1: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्दी होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
3: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
1: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ विपक्षीय बैठकें की।
3: ब्रिक्स NSA की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे NSA की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसकी

0: बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
0: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
1: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्से सेक बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीड के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात $1.84 trillion तक पहुँच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
2: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के 2वें समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार

0: वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani, and I'm Saira Mujtaba with the news at 9.

0: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सिक्योरिटी से मुताल्लिक इश्तराक को मुस्तहकम करने और दहशतगर्दी और साइबर सिक्योरिटी जैसे चैलेंजों से निपटने में ब्रिक्स का अहम रोल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने शहरी एजाज से मुताल्लिक दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड अदा किए। सहाफी पी नारायणन, टेनिस के सरकर्दा खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूती और आर माधवन और गुलूकारा अलका याग्निक पद्म अवार्ड हासिल करने वालों में शामिल हैं। हुकूमत ने कहा है कि वो एनिनो की वजह से कमजोर मॉनसून के असरात के इम्कान से निपटने के लिए किसानों की मदद की खातिर पेश की तैयारियां कर रही है। इम्तिहानात के इनका से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए ने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान के नतायज का ऐलान कर दिया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और मगरबी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लंदन में FIH प्रो लीग हॉकी के इफ्तिताही मुकाबले में भारत की मर्दों की हॉकी टीम ने रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 3-4 से हरा दिया है। और फीफा आलमी कप में हाउस्टन में पुर्तगाल का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होने वाला है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि बदलते हुए आलमी मंजरनामे में सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक को मुस्तहकम करने और दहशतगर्दी और साइबर सिक्योरिटी से लेकर उभरती हुई टेक्नोलॉजी से लाहक मुश्तरका चैलेंजों के इजाले की खातिर ब्रिक्स का इंतहाई अहम रोल है। वजीर आजम मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों और सिक्योरिटी के सीनियर अहदेदारान से मुलाकात की। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने इस बात को भी उजागर किया कि भारत की ब्रिक्स की सदारत में हकीकी इश्तराक में पेशरफ, आलमी खित्ते जनूब की तरजीहात की हिमायत और एक महफूज और ज्यादा शमूलियत वाली दुनिया के सिलसिले में इश्तराक को अहमियत दी जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव पर जोर दिया है और अफसरान से जोर देकर कहा है कि वो शहरियों को हुक्मरानी में मरकजी अहमियत दें। आज नई दिल्ली में 2024 बैच के IAS के उन 183 तरबियती अफसरान से बातचीत करते हुए जिन्हें मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में बतौर असिस्टेंट सेक्रेटरी मुंसलिक किया गया है, जनाब मोदी ने नौजवान सिविल सर्वेंट से जोर देकर कहा कि वो विकसित भारत @2047 की जानब भारत के सफर की क्यादत करें। वजीर आजम ने मुल्क की तामीर में खवातीन के बढ़ते हुए रोल को ये कहते हुए उजागर किया कि मौजूदा बैच में 40% से ज्यादा खवातीन अफसर हैं। जनाब मोदी ने नौजवान अफसरों से कहा कि वो मुसलसल मुल्क की तामीर में अपने ताउन का जायजा लेते रहें और अपने ओहदों के बजाय अपनी कारकर्दगी से हासिल होने वाले नतायज से इत्मीनान महसूस करें। उन्होंने इस बात पर एतमाद का इजहार किया कि उनकी तवानाई, सलाहियत और खुद को वक्फ करने का जज्बा भारत को तरक्की की नई बुलंदियों तक ले जाने में एक अहम रोल अदा करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में शहरी एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड अदा किए। मुल्क के आला तरीन शहरी एजाजात में से एक पद्म अवार्ड 3 जुमरों, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के तहत दिए जाते हैं। सहाफी पी नारायणन को अदब तालीम के जुमरे में पद्म विभूषण से नवाजा गया है, जबकि साबिक जज केटी थॉमस को सामाजिक काम के लिए पद्म विभूषण से सरफराज किया गया है। पेश एक रिपोर्ट।
1: इस साल हुकूमत ने कुल 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड शामिल हैं। साबिक टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूती और प्लेबैक्स गुलूकारा अलका याग्निक समेत 7 लोगों को पद्म भूषण से नवाजा गया है। सियासतदान शिबू सोरेन को बाद अजमर्ग पद्म भूषण दिया गया है। 57 अफराद को पद्मश्री अवार्ड से सरफराज किया गया है, जिनमें क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा, अदाकार आर माधवन और प्रसार भारती के साबिक CEO शशि शेखर वेम्पति शामिल हैं। अदाकार सतीश शाह को बाद अजमर्ग पद्मश्री से सरफराज किया गया है। इस मौके पर नायब सदर CP राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के अलावा दीगर सरकर्दा शख्सियात मौजूद थी। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा है कि हुकूमत एनिनो की वजह से कमजोर

आदाब सामेईन, आकाशवाणी के इस खुसूसी प्रोग्राम महफिली समा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपकी दोस्त आफरीन बानो और आज के प्रोग्राम का उन्वान है रहमत खुदा और बंदे की उम्मीदें। सामेईन, जिंदगी एक सफर है। इस सफर में कभी खुशियों के फूल खिलते हैं और कभी गमों के कांटे रास्ता रोक लेते हैं। कभी कामयाबी हमारे कदम चूमती है और कभी नाकामी दिल को बोझल कर देती है। लेकिन एक चीज है जो इंसान को टूटने नहीं देती और वो है उम्मीद। उम्मीद इंसान के दिल का वो चिराग है जो अंधेरी रातों में भी रोशनी देता रहता है। अगर उम्मीद बाकी हो तो वीरान रास्ते भी मंजिल तक पहुंचा देते हैं, लेकिन अगर उम्मीद खत्म हो जाए तो रोशन रास्ते भी अंधेरे लगने लगते हैं। सवाल ये है कि बंदे की उम्मीद का सर चश्मा क्या है, ये उम्मीद कहाँ से पैदा होती है। इसका जवाब कुरान देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنُطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ۔ इसका तर्जुमा है, ए मेरे बंदों, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। गौर कीजिए, ये खिताब सिर्फ नेक लोगों से नहीं बल्कि ये खिताब उन लोगों से भी है जिनसे गलतियाँ हुई, जिन्होंने गुनाह किए, जो जिंदगी के किसी मोड़ पर भटक गए। गोया अल्लाह ताला खुद अपने बंदों को उम्मीद दिला रहा है। सामईन, अगर दुनिया का कोई इंसान हमसे नाराज हो जाए तो मुमकिन है कि वो हमें माफ ना करे, लेकिन अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाजे बंद नहीं करता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदों पर उस माँ से भी ज्यादा मेहरबान है जो अपने बच्चे पर मेहरबान होती है। सोचिए, माँ कितनी मोहब्बत करती है। बच्चा बार बार गिरता है, माँ बार बार उठाती है। बच्चा गलती करता है, माँ फिर भी सीने से लगा लेती है। फिर वो रब कितना रहीम होगा जिसने माँ के दिल में मोहब्बत रखी है। इसी ख्याल के साथ अब वक्त हुआ है आज की पहली कवाली का। मुश्किल कुशा ओरे नूरे खुदा ओरे रंगरेजा। फिल्म है जॉली एलएलबी, शायर हैं जुनेद वासी, आवाजें हैं सुखविंदर सिंह, मुर्तजा मुस्तफा, कादिर मुस्तफा की। समाअत कीजिए।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम कहकशां। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हमने लिया है शान फिल्म से, आवाज मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, आशा भोसले और उषा मंगेशकर की। आनंद बख्शी के लिखे गीत को सुरों में पिरोया है राहुल देव बर्मन ने।

आशा भोंसले, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में सुनिए राम बलराम फिल्म का ये नगमा। गीत आनंद बख्शी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का।

0: इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटें

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रचनी, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं सलीम अल्लाह वाले का तबला वादन, ताल तीन ताल में।

उस्ताद अमीर हुसैन खान साहब दिन करते

दादा दिन ना एक दो दिन जा पाँच एक दो दिन जा पाँच एक दो दिन जा पाँच एक दो दिन जा पाँच दादी दादा दिन ना दा तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक

0: दिल्ली घराने का एक बहुत ही खूबसूरत कायदा उस्ताद अमीर मोहम्मद खान।
1: ना

राधा दोपल्ली फरमाइशी गत तिपल्ली चौपल्ली उसमें एक दुपल्ली दिन्नारा दिन दिन्नारा दिन दिन्नारा दिन दिन्नारा दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सलीम अल्लाह वाले का तबला वादन। तबले पर तीन ताल, वायलिन पर लहरा दिया था प्रवीण शिवलिकर ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 11 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश KT थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
3: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहाँ वर्षा कम रहने की संभावना।
2: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे से को लेकर अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।